0: इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में, पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर पीएम भारद्वाज साहब जुड़े हुए हैं और आज की जो चर्चा है वो बहुत बहुत जरूरी है, आज के परिपेक्ष में भी और पुराने परिपेक्ष में भी, और जो आगे आने वाला समय है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम इस बात को ठीक से समझें, अपनाएं और उसको प्रैक्टिस करें, तभी ये पूरा का पूरा समाज सुरक्षित रह पाएगा, चल पाएगा। सबसे पहले भारद्वाज साहब का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ हैं सर, क्या करते हैं।
1: पहले सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दूंगा समीर जी कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सनातन दर्शन के बारे में, सनातन धर्म के बारे में आज आप ये चर्चा कर रहे हैं। ये इस समय नीड ऑफ द आवर है कि इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। जहां तक सवाल मेरे परिचय का है, मेरा नाम डॉक्टर पीएम भारद्वाज है। मैं भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की चार संस्थाओं का पूर्व एमडी सीएमडी हूं और साथ में मैं नेशनल लेवल पे मोटिवेशनल एवं मैनेजमेंट गुरु भी हूं और मैंने काफी सारे लेख लिखे हैं जिसमें कि सनातन धर्म के, सनातन दर्शन के ऊपर भी मैंने बहुत सारे लेख लिखे हैं
0: जी।
1: और वर्तमान में मैं जयपुर में हूं, मेरा निवास जयपुर में है।
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों आपने जान लिया कि जो भी आज हमारे अतिथि हैं वो अपने विषय में पारंगत हैं, तो जाहिर से बातें हमें हल्की फुल्की बातें नहीं, बिल्कुल क्लियर, गहरी, गुनी हुई, समझी हुई बातों के बारे में पता चलने वाला है। तो शुरू करते हैं भारद्वाज साहब, और सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मेरे सुनने वालों, जितने भी हमारे श्रोता हैं उनके दिमाग में भी आ रहा होगा, बार बार हम लोग सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म सुनते हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल हिंदी में, सिंपल भाषा में हमें समझाइए, ये सनातन धर्म वास्तव में है क्या?
1: देखिए समीर जी, सनातन धर्म सात्वत सत्य है। सात्वत सत्य का मतलब है जो पहले था, अभी है और आगे भी, जो कि अनंत है, ऐसा सत्य है। नैतिकता, आत्मज्ञान और मानव कल्याण पर आधारित जीवन दर्शन है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। समय, स्थान और परिस्थिति, चाहे हम भारतवर्ष में बात करें, चाहे किसी और दूसरे देश की बात करें, और समय, चाहे भूतकाल की बात करें या वर्तमान की बात करें या भविष्य की बात करें, हर परिस्थिति से ये परे है, मतलब हरदम ये सत्य है
0: जी। तो ये धर्म किसी विशेष समुदाय का है या सभी का है, क्या मतलब, इसको थोड़ा सा और समझाइए सर।
1: देखिए, जो सत्य होता है वो तो सभी पे लागू होता है, और सत्य जो है वो हर व्यक्ति के लिए, सत्य तो सत्य है, इसमें किसी जाति का, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, न्यूटन का ग्रेविटी लॉ है। अब ये ग्रेविटी लॉ ऐसा नहीं है कि ये भारतवर्ष के लिए ही है, अमेरिका में लागू नहीं होगा, या ये जो है स्थान की बात करें, अगर पाकिस्तान में लागू नहीं है या चीन में लागू नहीं है, ये ग्रेविटेशनल लॉ हर जगह लागू है। तो इसी तरह से जो सनातन दर्शन है या सनातन धर्म की बात अगर हम करें, ये एक जीवन जीने की पद्धति है और ये हर व्यक्ति के लिए सत्य चीज है और ये सबके लिए लागू है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो।
0: होता क्या है भारद्वाज साहब कि आज तक की डेट में जितना भी मैंने समझा सनातन को या सनातन के शब्द को सुना, हमेशा ये हो जाता है कि साहब ऐसा एक इम्प्रेशन है, ऐसी एक समझ बन गई है समाज में कि सनातन मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म मतलब हिंदू। तो क्या ये सेम है या अलग अलग है सर? क्या हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, क्या है?
1: समीर जी आपने एकदम सही कहा, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें अंतर क्या है। सनातन धर्म मूल जीवन दर्शन है, जहां तक सनातन की बात करें ये तो मूल जीवन दर्शन है, जबकि हिंदू शब्द भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में बाद में प्रचलित हुआ है,

0: लेकिन अगर हम गौर से देखें तो चीज ये एक ही है, अलग नहीं है।
1: ओके, क्योंकि टाइम एंड अगेन सनातन धर्म को किसी और भाषा में या किसी और रिलीजन में या किसी और सामुदायिक ग्रुप में कभी डिस्कस होते हुए नहीं सुना, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब सनातन धर्म की बात करते हुए सिर्फ हिंदू ही पाए गए, तो उसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है सनातन धर्म हिंदू है या आज हम हिंदू लोग सनातन धर्म को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि दरअसल सनातन धर्म की परिभाषा के लिए चक्कर में हमारी जो भाषा होती है वो भी इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है कि लगता है तो हिंदू धर्म है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा।
0: नहीं, आपका सवाल एकदम सही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देखिए एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये एक जो कि पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, ये एक अटल सत्य है पर आधारित है और ये सभी पे लागू है। ये ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं के लिए ये है। और इसको अगर देखिए, मैं एक और चीज मानता हूँ, आज जो विश्व के अंदर अशांति का माहौल हो रहा है, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, वार कई देशों के बीच में हो रही है, अगर इस दर्शन को, इस धर्म को लोग ध्यान से समझेंगे तो हमें इन चीजों से जो भी कठिनाई आ रही है उनसे छुटकारा मिलेगा। सनातन धर्म में इतनी शक्ति है।
1: चलिए, अभी तो मैं अभी आपके इसी बात पर वापस आता हूँ भारद्वाज साहब, बट सबसे पहले तो यही जानना चाह रहा हूं कि ये जो सनातन धर्म, या चलिए इसको हम धर्म ना कह के सनातन रिलीजन कह लें, जिससे बाकी के धर्म के लोग भी इसे कनेक्ट कर पाए, ये किसी एक संस्थापक या एक बुक पर आधारित है, कोई ग्रंथ है इसका कि जहां लिखा हुआ है कि साहब ये सनातन धर्म का ग्रंथ है, ये सनातन धर्म यहां से आया है, इन्होंने बताया है, और ऐसा कुछ है सर?
0: नहीं, एक व्यक्ति द्वारा नहीं है समीर जी, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल तक जो तपस्या की, उन्होंने गहन अध्ययन किया, उनके अनुभव पर ये आधारित है और ये एक व्यक्ति रिलेटेड नहीं है। जो उन्हें सत्य प्रतीत हुआ, उन्होंने देखा कि भाई ये साइंटिफिक भी है और ये व्यवहारिक भी है, इस तरह के सत्य को वो लिखते गए कि भाई इन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। और ये आपने सही कहा, इसको धर्म ना बोल के अगर हम दर्शन शब्द यूज करें, सनातन दर्शन, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड किसी भी हालत में नहीं है
1: जी। तो जैसा दोस्तों आपने सुना, भारद्वाज साहब ने यह बताया कि किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया, किसी एक इंसान द्वारा बनाया गया ये धर्म नहीं है या दर्शन नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि सनातन जो है सिर्फ हिंदुओं का है और किसी का नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हुए सनातन को और बेहतर समझते हैं कि सनातन में मतलब कर्म और धर्म ये कैसे सम्मिलित किए जाएं। कर्म मतलब हम क्या काम करते हैं, किस तरीके से जिंदगी जीते हैं, और किस तरीके से हम किसी ईष्ट देव को या किसी भी जो भी हम जिनकी भी हम पूजा करते हैं अपने आप को संभालने के लिए, तो इन दोनों चीजों को सनातन दर्शन में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे समझा जाता है?
0: देखिए समीर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। रियली आई एम सो हैप्पी कि आपके क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट हैं सनातन दर्शन को लेकर के। अब धर्म की अगर बात करें, धर्म क्या है, तो धर्म का मतलब धारण करने योग्य है और सही आचरण का मार्ग जो दिखाता है वही धर्म है, कि हमारा आचरण सही हो। सनातन के अंदर धर्म को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी गई है, कहा गया है कि भाई हमें धार्मिक धर्म के हिसाब से ही काम करना चाहिए। धर्म का मतलब लेकिन यह सही आचरण से मतलब है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। और कर्म से क्या है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम हमको मिलेंगे। दोनों मिलके, धर्म और कर्म मिलकर के जीवन को बैलेंस करते हैं, संतुलित बनाते हैं, धर्म और कर्म। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम धर्म के हिसाब से कर्म करें और जो हमारे कर्म है वही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करेंगे
1: जी। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सनातन दर्शन में, जैसा आपने बिल्कुल सही शब्द हमें दिया आज, धर्म की जगह इसको दर्शन ही कहा जाए तो अच्छा होगा, तो सभी के लिए क्या ये एक ही रास्ता है सनातन दर्शन, या हम अलग अलग रास्ते भी सनातन दर्शन में चुन सकते हैं?
0: नहीं, देखिए इसमें हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। आपने देखा होगा अगर 10 व्यक्ति बैठे तो जरूरी नहीं है उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति एक ही तरह की हो, उनका नेचर अलग अलग होगा। तो इसमें सभी को उनके नेचर के हिसाब से भी मार्ग दिए गए हैं। कोई भक्ति मार्ग करना चाहे, ज्ञान मार्ग करना चाहे, या कर्म योग करना चाहे, वो सभी मार्ग इसमें दिए हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों चीज इसके अंदर, तीन मार्ग इसमें मुख्य रूप से सनातन दर्शन में बताए गए हैं।
1: तो सबसे पहले तो भारद्वाज साहब, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो तीन चीजें आपने अभी बताई हैं, भक्ति, ज्ञान और तीसरा कर्म, तो थोड़ा सा हमें इन तीनों को भी जरा एक डेफिनेशन या परिभाषित कर दीजिए, थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि मान लीजिए आपकी बात सुनकर मैं कहूं कि चलिए मैं भक्ति मार्ग अपनाता हूं, तो मैं क्या करूं? बात सनातन दर्शन की हो रही है सर। सनातन दर्शन के अंदर, उसके अंडर में कर्म को मैं कैसे भक्ति भक्ति मार्ग को मैं कैसे अपनाऊं, क्या करूं?
0: देखिए भक्ति मार्ग का मतलब यह है कि हम परमपिता परमेश्वर, अब इसमें कोई एक परमेश्वर नहीं है, जो जिसको भी भगवान मानता है वो सभी एक हैं, तो उनको, उनके प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाएं। जैसे कि मीरा का एग्जाम्पल है भक्ति मार्ग के अंदर, तो एक समर्पण का मार्ग होना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, उनको एक सत्य मानना चाहिए कि हाँ भाई भगवान है। ये भक्ति मार्ग के अंदर, उनके अंदर आस्था रखनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान मार्ग में विवेक और आत्मबोध का मार्ग है, इसके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि शरीर और आत्मा ये अलग अलग है, शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा जो है वो हरदम अमर है, कभी भी उसका नाश नहीं होगा, तो ये ज्ञान योग है। और कर्म में निस्वार्थ कर्म का मार्ग, अब कर्म देखिए चक्कर क्या है कि कई तरह के कर्म है, अब कौन सा कर्म सही है कौन सा कर्म सही नहीं है ये मालूम होना बहुत जरूरी है, और कर्म करने के तरीके भी पता होना चाहिए कि कर्म अगर हम करें तो कैसे करें। और ये तरीका भी सनातन में बहुत ही ढंग से समझाया गया है कि निस्वार्थ भाव से आसक्ति रहित होकर के हम कर्म करें और फल की चिंता नहीं करें, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल भगवान को अर्पित करते हुए हम आगे बढ़े। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सफल होंगे और हमारा जो है फिर जो मेन मोक्ष का जो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए किसी भी इंसान का, मानव योनि में उसको जन्म मिला है तो उसको ये ट्राई करना चाहिए कि अंत में जाकर के वो भगवान से ही मिल जाए, यानी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो वो इन तीनों मार्गों से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से और कर्म योग से उसको मिल सकता है, और अपनी नेचर के हिसाब से जो भी मार्ग जिसको सही लगे उस मार्ग में वो आगे बढ़ सकता है।
1: जी तो दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इस बात को समझना कि सनातन दर्शन क्या कहता है। यहां पर भारद्वाज साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक प्यारे से भजन के लिए, और फिर इसके बाद मैं वापस आता हूं आपके पास।
0: जी जी जी।

0: बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए आपने जो पीछे बात कही, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान, हां जी सर, तो इनको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, एक्स्ट्रापोलेट करके इनको पूरे संसार पे फैला दूं, क्योंकि हम लोगों की यही बातचीत हो रही थी कि सनातन धर्म could be used by any religion across the world so that सब लोगों में शांति आ जाए। तो समझ लें, आपने कहा इस बात को कि सब लोग समझ लें, रशिया भी समझ ले, अमेरिका भी समझ ले, ईरान भी समझ ले, इराक भी समझ ले, पाकिस्तान भी समझ ले और वियतनाम भी समझ लें, सनातन को सब समझ लें तो सब शांत हो जाएंगे। तो वही मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि ये कर्म योग, ज्ञान योग और तीसरा जो था सर भक्ति योग, इसको इन सारे विश्व में समझाने के लिए क्या करना चाहिए सर, कैसे इनको बताएं कि साहब ये तीन चीजें हैं, इनको कर लो, हाउ डू वी, क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सर ये अभी यहां बस भारतवर्ष के किसी कोने से ये निकला है सनातन धर्म, जिसको हम समझाने चले हैं कि हम पूरे विश्व को बताएं तो विश्व शांत हो जाए। सो चलिए मान लिया प्रिंसिपली, बट मेथड क्या हो, क्या करें हम, इराक को कैसे बताएं कि साहब ये सनातन धर्म इस्तेमाल करो।
1: जी देखिए, एक तो सबसे बड़ा काम जो आज मैं देख रहा हूँ आपका टीवी भी कर रहा है
0: जी,
1: आज आपने इतने इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर के आज आप ये एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो भी इसको नाम दे, आप ये प्रोग्राम आपने बनाया और इस प्रोग्राम को हजारों लाखों लोग सुनेंगे, तो इसी तरह से इसका जो प्रचार प्रसार है इसके बारे में तरह तरह के लेख लिखे जाएं और बहुत ही सरल भाषा में लिखे जाएं, और जैसे सरल भाषा में ये प्रोग्राम अभी आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाने चाहिए और जिससे कि वो इस मुद्दे को समझ सके। देखिए सनातन धर्म में एक बात कहता है, बहुत छोटी सी बात मैं बोल रहा हूँ, कि सबके अंदर भगवान है और शरीर एक वस्तु की तरह है और आत्मा जो है वो नश्वर है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, अनंत है और वो अमर है। तो अगर ये समझ में आ जाए कि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा है, तो फिर सब झगड़े दूर हो जाएंगे, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सनातन को समझेंगे तो ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी और जब हमें लगेगा कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है तो उस केस में कहीं कभी भी कोई झगड़े की नौबत नहीं आएगी। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद हमारे नहीं होंगे अगर हम सबको अपना परिवार का सदस्य मानेंगे। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में लेख होने चाहिए, मैंने काफी लेख लिखे हैं और कई न्यूज़पेपर के थ्रू, कई सोशल मीडिया के थ्रू इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह का ये पॉडकास्ट आप बना रहे हैं और इसको काफी लोगों को आप सुनवाएंगे तो यही एक तरीका है जिससे कि ये चीज आगे आसानी से बढ़ेगी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हेल्प लेनी चाहिए।
0: हाँ, मेरे दिमाग में यही चीज आ ही रही थी भारद्वाज साहब, क्योंकि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है, उसकी बारे में बातचीत हो रही है, हर व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या तो इस्तेमाल कर रहा है या डर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रस्पेक्टिव में, उसके संदर्भ में और जो आज की टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर सनातन दर्शन के मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है, मतलब क्या रेलिवेंस है, सनातन धर्म एआई के साथ कैसे मिक्सिंग करेगा।
1: देखिए जो भी टेक्नोलॉजी होती है समीर जी, आप भली भांति जानते हैं, वो टेक्नोलॉजी शक्ति देती है, कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका सही उपयोग विवेक, नैतिकता और करुणा से ही संभव है, और यही सनातन कहता है कि आप जो है सही उपयोग करें विवेक से, नैतिकता से और करुणा से। अब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज्यादा फायदेमंद टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी विनाशकारी भी हो सकती है अगर इसका मिसयूज कर दिया गया। और सनातन धर्म कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी के मिसयूज के लिए को रिकमेंड नहीं करता, सनातन धर्म हरदम कहता है जो सत्य है वो करो। और सत्य क्या है, देखिए अब एक बार बताऊं, वायरलेस जैसे बना तो पुलिस के पास आने के पहले वायरलेस जब बना था वो पहले डाकुओं के हाथ में पहुंच गया, तो वो उन्होंने यूज किया सबसे पहले वायरलेस को कि बता, वो लोग ये बात करते थे आपस में कि भाई पुलिस आ रही है हमारे पीछे अब भागो। तो कोई भी अगर टेक्नोलॉजी बनी है वो मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए, शांति के लिए होनी चाहिए, अच्छे काम के लिए होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी जो नेगेटिव पॉइंट है या उसको गलत जगह यूज कर रहे हैं। परमाणु है, अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी पावर स्टेशंस में बिजली भी बना रही है, बिगर बिजली कुछ नहीं हो सकता, और इससे एटम बम भी बन रहे हैं। तो सनातन धर्म कभी भी नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी को विनाश के लिए यूज किया जाए, कभी भी टेक्नोलॉजी को विनाश के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा इस दर्शन में जगह जगह लिखा हुआ है। और पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक परिवार बताया गया है, ये इस धर्म की खासियत है। इसीलिए मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर इस दर्शन को, सनातन दर्शन को सभी देश अपनाएंगे, जैसा आपने भी अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा है, तो एकदम सब जगह शांति फैल जाएगी और जीवन जो है वो सुखी और सफल होगा सभी लोगों का।
0: जी बहुत खूब। होता क्या है भारद्वाज साहब, पूरा संसार हम मनुष्यों से भरा हुआ है और हर मनुष्य के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सारे तो साधु नहीं होते, कुछ तो बदमाश भी होते हैं। और जब से मानव समाज अस्तित्व में आया है तब से ये बुरे लोग और अच्छे लोग बने हुए हैं। लाखों करोड़ों साल गुजर चुके, इंसान ने बहुत कोशिश कर ली कि बुरे लोगों को सीधा बना दिया जाए, लेकिन हुआ कभी नहीं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्के के दो पहलू हैं, जब दिन होगा तो रात भी होगी, और अगर रात खत्म कर दी जाए तो दिन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तब जहां पर इस सनातन दर्शन की हम बात कर रहे हैं कि इसको चारों तरफ फैलाया जाए, तो ये एक तरीके से एकमुष्ट धर्म हो जाएगा पूरे संसार का। ना कोई क्रिश्चियनिटी बचेगी, ना कोई हिंदुइज्म बचेगा, ना कोई बुद्धिज्म बचेगा, ना कोई इस्लाम बचेगा, सिर्फ एक सनातन दर्शन, सनातन धर्म होगा। क्या यही बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं सर, ऐसा ही चाहते हैं हम?
1: हाँ देखिए, हम ये कह रहे हैं जो सनातन में हमने शुरू में एक बात कही कि सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो सत्य है, और जिसमें करुणा भी है, आत्मबोध भी है, आत्मज्ञान भी है, वो सनातन है। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी धर्म को मान रहे हैं, उस धर्म को मानते चलाएं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। ये विवेकानंद जी ने भी कहा था, जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक खास बात कही थी कि हम आपके सभी के धर्मों का हम पूरी तरह से हम उनके, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके विरोध में हैं, आप अपने धर्म को अपनाइए, लेकिन अगर आपको जो हम सनातन दर्शन की बात कर रहे हैं इसकी अगर अच्छाइयां बता रहे हैं, तो जो अच्छाइयां इसमें आपको नजर आए वो अच्छाइयां जरूर अपनाओ। अब मैं बिगर नाम दिए हुए आपको एक बात कहना चाहूंगा समीर जी,
0: जी, जी।
1: कि सनातन में इसके कोई भी ग्रंथ आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी नफरत की भावना नहीं लिखी हुई है कि हमें किसी से नफरत करनी है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आत्मा सभी के अंदर है। यूरोपियन कंट्रीज में सालों तक ये नहीं माना जाता था पुराने टाइम में कि महिला के अंदर आत्मा है। आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है, वो आज ये शो करते हैं कि वो लेडीज को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पहले उनके यहाँ ये तक नहीं माना जाता था कि महिला में आत्मा है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि सब में आत्मा है। और हमारा सनातन धर्म तो ये कह रहा है जीव में निर्जीव में सबके अंदर भगवान को मानना है और भगवान मान करके उनके साथ व्यवहार करना है। अगर हम सब में भगवान मानेंगे तो, और जब भी कोई हमसे मिलने आएगा, जब भी कोई काम होगा, अगर हम मानते हैं भगवान है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। सनातन धर्म इतनी ऊंची सोच के साथ ये दर्शन काम कर रहा है, तो इसको अपनाना तो सबके लिए जरूरी। बाकी वो जिसकी पूजा, जिसको वो प्रेम करना चाहे जिसकी पूजा करना चाहे वो करे, उनके लिए गॉड मे बी कुछ भी, कोई भी गॉड हो सकता है, उसके लिए कहीं मना नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन सनातन दर्शन में। लेकिन ये कहता है सत्य को, और सत्य तो हर जगह एक ही है, सत्य अलग अलग नहीं हो सकता कि अमेरिका में सत्य कुछ और है, जापान में कुछ और है और भारत में कुछ और है, सत्य तो सत्य है।
0: बहुत खूब, विचार करने का विषय है दोस्तों, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, विचार कीजिए, मनन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए जो भरद्वाज साहब ने अभी हमें बताया। लीजिए इस भजन को सुनिए और हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए हम आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर आते हैं कि जब से सनातन दर्शन को, सनातन धर्म को आपने समझा, अपनाया और उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, बदलाव आए? क्या आपको लगा कि अरे यार, ये तो पहले मैं परेशान रहता था, अभी तो बड़ा अच्छा हो गया? क्या क्या चेंजेस आए आपके जीवन में?
1: देखिए, पहले जब मैंने सनातन को ढंग से नहीं समझा था, नहीं पढ़ा था, जीवन आप देखेंगे तो इसमें उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आना स्वाभाविक है, आते ही है। जैसे कि दिन और रात, ये अवश्यम भावी है, दिन है तो फिर रात होगी और रात है फिर दिन होगा, ऐसे ही मानव के जीवन में सुख और दुख के सब आते। पहले कोई छोटी सी भी परेशानी आई तो मैं विचलित हो जाता था
0: जी,
1: लेकिन जब से मैंने सनातन को समझा और चीजों को देखिए, अगर सत्य आपके सामने है, अगर मान लीजिए रात हुई और जिस व्यक्ति को कोई, कई ऐसे भी जीव है जिनको ये पता ही, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है कि भाई रात है तो अब दिन होगा, लेकिन जिसको ज्ञान है उसे पता है ये थोड़े समय के लिए है, फिर दिन आ जाएगा और दिन भी नहीं रहेगा, फिर रात हो जाएगी। तो ये जो है चक्र चलता रहेगा, ऐसे ही सुख और दुख है। तो इसके बारे में सनातन धर्म कहता है कि ये चीजें स्थाई नहीं है, अगर सुख है तो वो भी स्थाई नहीं है और दुख है तो वो भी स्थाई नहीं है। तो जब स्थाई नहीं है तो उस परिस्थिति में हमको अपने आप को ढाल करके, उस परिस्थिति के अंदर हमें संतुलन बना करके, संयम बना करके रहना है, ना कि हम उस ऐसे ही कभी दुख आया, थोड़े से दुख आते विचलित हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने सनातन को समझा, मेरे जीवन में संतुलन आ गया, पॉजिटिव थिंकिंग मेरी हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया और सेवा की भावना। सनातन ये कहता है कि आप दूसरों को जितना हो सके उनको सुख दीजिए, आपको भगवान अपने आप सुख देगा। चार वेद, किसी संत ने कहा है, चार वेद षट शास्त्र में बात लिखी है, दो बात लिखी है इंपॉर्टेंट शास्त्रों में और चार वेदों में, सुख दीजिए सुख लीजिए, दुख दीजिए दुख होए। अगर दूसरे को सुख देंगे आपको स्वयं को सुख मिलेगा, और आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो गड्ढे आप ही को दुख देंगे, आप ही के लिए वो गहरे गड्ढे साबित हो जाएंगे। तो इसलिए सनातन को समझने के बाद मुझे जो है जीवन में संतुलन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सेवा की भावना बहुत मेरे अंदर मजबूत हुई है
0: जी। बहुत खूब। तो ये बिल्कुल क्लियर एक एक्सप्लेनेशन है कि प्रैक्टिकल, देखिए थियोरेटिकल अलग चीज हो गई कि हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली सनातन दर्शन के बारे में, हैं जी, लोगों की हेल्प करो, सुख दो, लेकिन प्रैक्टिकल बात अभी भारद्वाज साहब ने बताई कि जब उन्होंने इन चीजों को अपनाया तो उनके जीवन में क्या बदलाव आए। देखिए दोस्तों, चाहे हम इनको कितनी भी थियोरेटिकल बातें माने, लेकिन जब भी किसी दर्शन को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो आते ही हैं। वही चीज भरद्वाज साहब शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आए। चलिए यहां पर रुककर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक भजन का एक मुखड़ा सुनकर वापस आते हैं भरद्वाज साहब से और विचार विमर्श करने के लिए।

0: बहुत सुंदर। तो ठीक है, अब और प्रैक्टिकल बात करते हैं भारद्वाज साहब। मान लीजिए आपके इस बात, इन सारी बातों को, इन सारी डेफिनेशंस को, एक्सप्लेनेशंस को सुनने के बाद कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए कि ठीक है, ये तो बढ़िया बात लग रही है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, उसे लगे चलिए सनातन धर्म के बारे में पढ़ता हूं और सनातन धर्म को और समझता हूं और सनातन धर्म अपनाता हूं, तो उसको पहला कदम क्या लेना चाहिए?
1: देखिए, सनातन धर्म इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देता है कि पहले स्वयं को जानने की जिज्ञासा। अब स्वयं को जानने की जिज्ञासा को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्वयं हम, मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, और दूसरे क्या हैं, उनको समझे कि भाई वो भी जो है आत्मा है, और परमात्मा के थ्रू हम सबके अंदर परमात्मा भी है, हम उसी के अंश हैं। तो स्वयं को जानने की जिज्ञासा हो और प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए। हम ये चिंतन करें, लोग क्या हो गया, एक बहुत एक अंधी दौड़ के अंदर दौड़ है, उनको समय ही नहीं है सोचने का। किसी कई जगह मैंने ये भी देखा, उनसे पूछा जाए भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पता लगा कि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। पता लगा कि वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक नैतिक अनैतिक टेंशन में रह करके बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अनैतिक कार्य भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, तो उनका जो है एकदम बीमारियों ने जकड़ लिया। अब पैसा, अगर आप भारतवर्ष की बात करें, आज अगर कोई भूखा है उसको खाना खाना है तो खाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत, आज भी अपन भले ही महंगाई का युग बोले जो भी बोले, आज भी उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गलती से वो स्ट्रेस में काम करके, अनैतिक काम करके कहीं हॉस्पिटलाइज हो गया, तो समीर जी मैंने खुद ने देखा है कई अपने दोस्तों के केस में कि एक एक इंजेक्शन लाखों रुपए के, आजकल मेडिकल खर्चा इतना हो रहा है कि जो लाखों रुपए का एक इंजेक्शन भी आ रहा है, इस तरह की भी चीजें हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मचिंतन करें, स्वयं को जानें और प्रतिदिन आत्मचिंतन के लिए कुछ समय निकालें और अंधी दौड़ में नहीं दौड़े, अदरवाइज हमें दिक्कत, हमारी दिक्कत है बढ़ जाएगी।
0: जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है सर। अब होता क्या है भारद्वाज साहब कि आप और मैं जिस उम्र में आ गए हैं, और हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले ज्यादातर लोग भी इसी उम्र के हैं, जिनको अब उन्होंने जिंदगी बिता ली, कमा लिया, खा लिया, बीमार पड़ गए, खुशी हो गई, बच्चे बच्चियों की शादियां कर दी, सेटल हो गए, रिटायरमेंट हो गए, तो अब हमें ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन कोई युवा, समझिए 25 साल का, जो अभी ग्रेजुएट होकर निकला है, हैं जी, किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंसेस में बड़ा विद्वान होकर निकला है, अब उसे तो गाड़ियां दिख रही हैं, उसे तो मॉल्स दिख रहे हैं, उसे तो कपड़े दिख रहे हैं, घड़ियां दिख रही हैं, लड़कियां दिख रही हैं, उसे तो मजे करने हैं। अब उसको हम कैसे समझाएं कि बेटा सनातन धर्म पकड़ लो, है ना, विचार करो, बैठो। वो कहेगा अरे साहब बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे तो पार्टी में जाना है। तो अगर हम उसे और समझाएं तो वो ये कहेगा कि सर ऐसा है, आपने तो अपनी जिंदगी मजे ले लिए, अब जब मेरा वक्त आया तो आप मुझे मजे लेने के बजाय कह रहे हो बैठो, मेडिटेट करो, समझो, मत कमाओ, ज्यादा मत कमाओ। तो 5 मिनट में अगर किसी युवा को सनातन धर्म समझाएं तो कैसे समझाएं सर?
1: जी, नहीं देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया एक सवाल पूछा है, और युवा पीढ़ी भी इसको देख रही होगी, या जो मदर फादर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी उनको बता सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में, धार्मिक में मतलब फिर वही बात कहूंगा कि धर्म में कोई ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहा जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है, मैं सनातन दर्शन की बात कर रहा हूँ। मेरे मदर फादर या मेरे भी जो पूर्वज है वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, तो जब मैंने जन्म लिया तो उन्होंने हरदम कहा कि सत्य का साथ मत छोड़ना, सनातन दर्शन को हरदम ध्यान में रखना। आज अगर मैं चार कंपनियों का चेयरमैन बना, देखिए मैं सेल्फ ड्रम बीट नहीं कर रहा मेरे, तो मैं अगर गौर से देखूं तो बहुत बड़ा एक हाथ है सनातन दर्शन का, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में, अगर मैं ये मानूं कि मैं सफल रहा या मैंने अपने जो है सफल और सुखी हूं मैं या मैं रहा, तो ये आज ये नहीं कि इस एज में मैंने सनातन को पढ़ाया, बचपन से ही मैं देखता आ रहा था मेरे घर में। और मैंने ये कहा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, भाई ईमानदारी बरतनी, आज चेयरमैन के लेवल पे लोग बहुत ज्यादा पैसा भी बनाते हैं और उसके बाद जब फंसते हैं तो आपने देखा होगा, चाहे वो सीवीसी हो या वो सीबीआई हो, उसमें क्या उनकी हालत होती है। तो घर के माहौल में, सनातन दर्शन के माहौल में मैंने देखा कि सत्य को अपनाना है, ईमानदारी बरतनी है, मेहनत करनी है, इन चीजों को ध्यान में रख गलत रास्ते पे नहीं जाना है। तो उसी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिला और उसी वजह से सुखी रहा और सफल रहा, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई उसे बचपन में भी या युवा में भी हमने कोई मौज मस्ती इस तरह की हो जो कि अनैतिक है या जो कि वो अलाउड नहीं थी। सनातन ये कहता है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां भगवान ने आपको दी हुई है आपके शरीर में है, उनका एक लिमिटेड उन्होंने नियम बना रखा है कि जैसे मान लीजिए मैं एक बात करता हूं, ये आपसे कहना चाहूंगा, आपने कहा लड़कियों के पीछे भाग रहे आज का युवा, देखिए भगवान ने भी कहा शादी का सिस्टम बनाया है, आप एक लिमिटेड वे में एक संतान उत्पत्ति के लिए या लिमिटेड वे के अंदर आप उपयोग उस चीज को उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन जो लोग अनैतिक तरह से उस काम को कर रहे हैं उनका जीवन कभी सुखी नहीं हो पाएगा, उनको परेशानियां होंगी। इंद्रिय अगर मान लीजिए हमें रस इंद्रिय भी बनाइए, खाने के लिए भी हमारी है, तो वो अगर जो लोग ज्यादा बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, संयम नहीं बरतते, तो आप देखें कितनी बड़ी परेशानी में जाते हैं, डायबिटीज हो गई और डायबिटीज के बाद कई लोगों के अंग भी काटने पड़ते हैं क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता और वो फिर भी जिन चीजों को डॉक्टर मना करते हैं उनको लगातार खाते रहते हैं। तो मना नहीं है, अपने एक लिमिटेड वे में जितना अलाउड है उस तरह के कर्म करें तो लाइफ में उनको सफलता भी मिलेगी और सुखी भी रह पाएंगे।
0: जी मैं समझ सकता हूँ सर। तो दोस्तों, जो भी हमारे श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है हम सबका फर्ज बन जाता है, आफ्टर ऑल हम अपने बच्चों को एक वैल्यू सिस्टम्स तो देते ही हैं ना बचपन से। तो जैसा भारद्वाज साहब समझा रहे हैं, सनातन दर्शन की भी शिक्षा या कह लीजिए ये परकोलेट डाउन होनी चाहिए, और कुछ तो होंगे बच्चे जो इस बात को समझेंगे, अपने जीवन को आगे लेके जाके ठीक करेंगे, बढ़िया बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हम आज भारद्वाज साहब के साथ यही बात कर रहे थे कि सनातन धर्म किसी एक धर्म का नहीं है, सनातन दर्शन हिंदू नहीं है, सनातन दर्शन पूरे विश्व में सब लोगों के लिए मौजूद है, उसको अपनाकर सभी सुखी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटा, हमें कन्फ्यूजन्स दूर हुए, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त निकाला और हमें कुछ समझाया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, आपने एक बहुत बड़े दर्शन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मेरे विचार रखने के लिए मौका दिया, आपको धन्यवाद एवं साधुवाद।
0: थैंक यू सर।
2: ओम भास्कराय नमः।
0: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। कबीर खान। जब भी हम चक दे इंडिया का नाम सुनते हैं, आंखों के सामने एक ही चेहरा आता है, वो कोच जो चिल्लाता कम था, समझता ज्यादा था, जो देशभक्ति को शोर से नहीं सन्नाटे में लिए हुए एक संकल्प से जीता था, और उस किरदार को जिंदगी दी थी शाहरुख खान ने। कबीर खान ने हमें सिखाया था, देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं, देशभक्ति का मतलब है हर बार, हर हार के बाद अपनी गर्दन सीधी रखना, जीत के बाद विनम्र रहना, और सबसे जरूरी, अफरा तफरी के बीच विश्वास बनाए रखना। कल मुझे कबीर खान बहुत याद आए, इसीलिए नहीं कि दुनिया ने उनका जन्मदिन मनाया, बल्कि इसीलिए कि एक असली कहानी मेरी आंखों के सामने थी। एक नाम, अमोल मजूमदार। सोचिए, एक नौजवान लड़का मुंबई की रणजी टीम में डेब्यू करता है, और पहली ही पारी में 216 रन, वो भी नॉट आउट। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक ऐलान था कि मैं तैयार हूं। लगभग 25 साल तक वो रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। उन्होंने 11,000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास रन बनाए, 30 शतक, हर मुश्किल वक्त में टीम के लिए दीवार बनकर खड़े रहे। टैलेंट था, संकल्प था, आंकड़े भी साथ थे, लेकिन कभी कभी किस्मत अपनी अलग ही कहानी लिखती है। इंडिया की नीली जर्सी उनसे दूर ही रही। सोचिए जरा, जब दुनिया कहती हो ये लड़का देश के लिए खेलना चाहिए, और फिर भी मौका ना मिले, ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसका सपना आंखों के सामने हो और हाथ तक पहुंचकर फिसल जाए। ये कहानी यही मुरझा भी सकती थी, लेकिन नहीं, कुछ लोग सपने टूटने के बाद बिखरते नहीं, वो उन टुकड़ों को ईंधन बना लेते हैं। जब खेलने का सफर धीरे धीरे खत्म हुआ, तब उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं, बस अपनी जगह बदल ली, बैट्समैन से मेंटर बन गए, IPL में बैटिंग कोच, अंडर 19, अंडर 23 के साथ काम, मुंबई टीम के हेड कोच, और फिर आया 25 अक्टूबर 2023, एक नया अध्याय। BCCI ने उन्हें इंडियन वुमेन्स टीम का हेड कोच बना दिया। उस दिन सिर्फ उनका सपना नहीं बदला, एक पूरी टीम का भविष्य बदलने की शुरुआत हुई। फिर आया 2025 का वुमेन्स वर्ल्ड कप, शुरुआत शानदार, श्रीलंका पर जीत, पाकिस्तान पर जीत, देश को लगा इस बार कुछ खास होने वाला है। लेकिन खेल सिर्फ जज्बात से नहीं जीता जाता। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, 3 लगातार हार, विश्वास हिल गया, सवाल उठने लगे, सपना नाजुक लगने लगा। इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद तो लगा कि बस, सेमीफाइनल बस एक पतली सी डोर पर लटका हुआ है। ये वही पल था जहां कहानी टूट भी सकती थी, लेकिन वही, फिर से एक शांत आवाज उठी। कोच ने टीम को देखा, गुस्से से नहीं, शोर से भी नहीं, शांति से, और कहा,
गलतियां बार बार नहीं दोहरा सकते, लाइन पार करनी होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये डर से आजादी का संदेश था। उन शब्दों ने आग जगाई, खुद पर विश्वास आया और फिर जो हुआ वो कहानी का मोड़ था। टीम वापस मैदान पर उतरी डर के साथ।

नहीं, दृढ़ निश्चय के साथ, हर मैच में एक नया जज्बा, हर ओवर में एक नई उम्मीद, और फिर कैप्टन हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में इंडिया ने 2025 का वर्ल्ड कप जीत लिया। ट्रॉफी उठी, आंखों में आंसू थे, देश जश्न मना रहा था, लेकिन जीत के बीच एक चेहरा था, शांत, विनम्र, अमोल मजूमदार। उन्होंने टीम को सिर्फ टेक्निक नहीं दी, उन्होंने टीम को डर से बाहर निकाला। उन्होंने बताया, हार अंतिम सच नहीं है। कबीर खान एक फिल्म का किरदार था, लेकिन यहां कहानी असली थी। कबीर खान ने कहा था 70 मिनट, यहां शायद 70 मिनट नहीं, 70 दिन लगे या 70 साल का सब्र, लेकिन सीख एक ही थी। देशभक्ति सिर्फ जोश नहीं होती, देशभक्ति शांति होती है, जिम्मेदारी होती है, और सबसे बढ़कर दूसरों के सपनों को अपना बना लेना होता है। अमोल मजूमदार खुद इंडिया के लिए नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने एक पूरी टीम को दुनिया जीतना सिखा दिया। कभी कभी खुदा हमें वही नहीं देता जो हम मांगते हैं, वो हमें उससे भी बड़ा देता है। खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इतिहास लिखने का मौका जरूर मिला, और शायद यही असली जीत थी। इस कहानी का सार, जीत तब बनती है जब अहंकार छोटा हो और संकल्प बड़ा, और कभी कभी सबसे बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो खुद स्पॉटलाइट में नहीं होता। कबीर खान ने हमें सिनेमा में भी यही सिखाया था, और अमोल मजूमदार ने जिंदगी में दिखा दिया, और शायद इसीलिए ऐसे लोग देश के दिल में बस जाते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंडियन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कोई भी चाचा जी फॉरवर्ड भेज देंगे ये मैसेज 11 लोगों को भेजो वरना, और नीचे लिखा होगा साइंटिफिकली प्रूवन। इंडिया में रिसर्च का सबसे बड़ा सोर्स है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। What?

सफर बीच का। कभी कभी ना सुबह थोड़ी ज्यादा शांत होती है, जैसे दुनिया ने हल्का सा वॉल्यूम कम कर दिया हो। शहर की आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न, फोन की घंटी, लोगों की भाग दौड़, सब धीरी पड़ जाती है। और उस शांति के बीच एक ट्रेन चल पड़ती है। सोचिए, एक औरत साड़ी में लिपटी हुई, हाथ में किताब, उंगलियां उस किताब के पन्नों के बीच ठहरी हुई, जैसे जिंदा निशान, जैसे कोई याद रुककर बैठी हो। ट्रेन धीरे से पहाड़ों की तरफ बढ़ रही है। सुबह की रोशनी साड़ी के पल्लू पर गिरती है और कपड़े की सिलवटें भी कहानी सुनने लगती है। प्लेटफॉर्म पर हल्का सा कोहरा है, ठंडी हवा, दूर पहाड़ों पर बादल लटके हुए, और वो उतरती है बिना शोर के, जैसे सफर ने उसे हल्का सा छू कर आगे बढ़ा दिया हो। ये कोई तेज रफ्तार सफर नहीं, यहां कोई जल्दी नहीं, यहां सिर्फ बीच का वक्त है। सुबह का पर्दा जब पहाड़ों से उठता है ना, तो लगता है जैसे दुनिया ने पानी के रंग से खुद को रंग दिया हो। दियोदार के पेड़ बादलों में गुम हो जाते हैं, चाय के बागों में शबनम मोती बनकर टिक जाती है, पहाड़ियां कोहरे की पतली सी डोर से जुड़ी होती हैं, और ट्रेन के अंदर अंदर वक्त अलग चल रहा है। चाय के कप की हल्की सी खनक, पहियों की एक समान धड़कन, धक धक धक धक धक धक, जैसे पूरा देश सांस ले रहा हो। कोई कूली आवाज लगाता है, कोई अपनी शॉल का कास लेता है, कोई खिड़की से बाहर देखते देखते खुद में खो जाता है। यहां कोई भाग नहीं रहा, यहां सिर्फ रुकना है, महसूस करना है। स्टेशन्स आते हैं, छोटे छोटे स्टेशन्स, जैसे कहानी के बीच में छोटी सी एक तस्वीर, लैंप की पीली रोशनी, आधे चेहरे, गरम पकौड़ों की खुशबू और बेचने वाले की मुस्कान, जो ठंड से भी ज्यादा गर्म हो। फिर एक सीटी बजती है और वो छोटा सा शहर फिर से कोहरे में लिपट कर पीछे रह जाता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको कि ट्रेन जब छोटे पहाड़ी स्टेशन पर रुकती है तो मन करता है कि बस थोड़ी सी देर वहीं रुक जाएं, बस एक घंटे के लिए ही सही, आप उतर कर किसी और जिंदगी को छू लें। एक गीली सी गली, लकड़ी के धुएं की खुशबू, मिट्टी और बारिश का मिला जुला एक एहसास, दूर कहीं से गिरजे की घंटी की आवाज, प्लेटफॉर्म पर खड़े स्कूल के बच्चे स्वेटर पहने हुए, एक आदमी हाथ हिलाता हुआ जैसे वो आपको पहचानता हो, जैसे आप दोनों का कोई पुराना रिश्ता हो बिना मिले, और आप सोचते हो क्या होता अगर मैं यहीं रह जाती, क्या होता अगर मैं इस शहर की हो जाती। लेकिन सफर रुकता नहीं, एक तेज सी सीटी और ट्रेन फिर से चल पड़ती है। वो शहर पहाड़ों में लिपट जाता है, लेकिन लेकिन दिल में रह जाता है। कुछ जगहें होती हैं ना जो बस पल भर के लिए मिलती हैं, पर उनका असर गहरा होता है, कभी कभी तो मंजिल से भी गहरा। हाँ, शायद सफर का सच यही है, मंजिल जरूरी है पर जो बीच का रास्ता है ना, वो ज्यादा याद रहता है। वो इंतजार, वो खिड़की से बाहर देखना, वो सोचना कि जिंदगी पहुंचने का नाम नहीं है, वो लम्हे जब आप किसी सुरंग से गुजरते हो और अंधेरा पल भर के लिए सब कुछ चुप कर देता है, फिर अचानक रोशनी,
जैसे याद दिलाती हो अंधेरा भी सफर का हिस्सा है। पुल हल्की सी कांप के साथ पार होते हैं, नीचे गहरी घाटी, ऊपर खुला आसमान, और तब कहीं जाकर समझ आता है ये सफर सिर्फ एक जगह का नहीं है, ये सफर अंदर का है। हर स्टेशन एक एहसास है, हर मोड़ एक सीख, हर रुकना एक मौका। जिंदगी भी शायद ऐसी ही है। हम सोचते हैं मंजिल पे पहुंचकर सुकून मिलेगा, पर सुकून तो अक्सर रास्ते में मिल जाता है, एक कप चाय में, एक अनजान मुस्कान में, एक पल के ठहराव में। और फिर धीरे से समझ आता है मंजिल सिर्फ बहाना है, असल खूबसूरती तो सफर में है। वो धक धक, वो कोहरा, वो पहाड़ी शहर जो पल भर के लिए अपना सा लगने लगता है, वो सफर जो हमें बदल देता है बिना शोर किए। और जब आप अपनी मंजिल पर उतरते हो तो आप वही नहीं होते जो चढ़े थे। कुछ यादें साथ होती हैं, कुछ शहर दिल में बस जाते हैं, कुछ चेहरे नाम के बिना अपने हो जाते हैं। और फिर जिंदगी की किसी शांत सुबह में जब आवाजें कम हो जाती हैं तो वही सफर फिर से याद आता है। तब समझ आता है जिंदगी का मतलब सिर्फ पहुंचना नहीं था, जिंदगी का मतलब था चलना, महसूस करना, रुकना और फिर से चल देना। सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत था। जेंटली, धीरे से सफर कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: देसी मिडिल क्लास लग्जरी। इंडियन मिडिल क्लास के पास सब कुछ होता है, बस उसे यूज करने की परमिशन नहीं होती। ड्राइंग रूम का सोफा सिर्फ गेस्ट्स के लिए, नया डिनर सेट सिर्फ खास मौके के लिए। और वो खास मौका कब आता है? जब डिनर सेट का डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है। हम लोग चीजें फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं भाई, और फ्यूचर आता है डीक्लटर करने।

26 नवंबर 2008, मुंबई की एक ऐसी रात जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। शहर रोशनियों से भरा था, लेकिन अंधेरा अचानक बहुत गहरा हो गया। गोलियों की आवाज, लोगों की चीखें, डर का एक भारी सा साया। ऐसा लगा जैसे आतंक ने मुंबई की हिम्मत तोड़ने की हर कोशिश की हो। लेकिन उस अंधेरी रात में एक रोशनी भी थी, एक ऐसा पल जहां इंसानियत और साहस ने डर को चुनौती दी। उस रोशनी का नाम था तुकाराम ओमले। वो मुंबई पुलिस के एक साधारण से कांस्टेबल थे, ना कोई बड़ी कुर्सी, ना कोई बड़ी ताकत। उम्र 54 इयर्स, शरीर अपने बेहतरीन दौर में भी नहीं था, और हाथ में ना बंदूक ना सुरक्षा कवच, सिर्फ एक लकड़ी की लाठी। लेकिन जो चीज उनके पास थी वो किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली थी, उनका संकल्प, उनका फर्ज, उनका देश के लिए जीने और मरने का जज्बा। उस रात जब गोलियां चल रही थी, उन्होंने एक ऐसे आतंकवादी का सामना किया जो पूरी तरह से इक्विप्ड था, हथियार से लैस था, AK-47 लेकर खड़ा था। सोचिए, एक तरफ ऑटोमेटिक राइफल, दूसरी तरफ एक लाठी। अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं ना ऐसे ही दृश्य, लेकिन ये फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये सच था, उस रात का काला सच। जैसे ही उन्होंने आतंकवादी को देखा, उन्होंने पल भर का भी इंतजार नहीं किया, सीधा बढ़े और उस बंदूक की नाल को पकड़ लिया। हाँ, बंदूक की नाल, वो लोहा जो गोली चलाने से तप रहा था, वो लोहा जो मौत बरसा रहा था। उन्होंने उसे दोनों हाथों से जकड़ लिया। गोलियां चल रही थी बिल्कुल पास से, एक के बाद एक उनके शरीर को चीरते हुए। कहते हैं उन्हें 12 से ज्यादा गोलियां लगी थीं, लेकिन सोचिए, हर गोली जो उनके शरीर ने सही वो किसी और तक पहुंचने से रुक गई। हर पल जो उन्होंने उस नाल को पकड़ कर रखा, वो पल देश को बचाने का पल था। खून बह रहा था, शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई। जब तक उनके साथियों ने आकर उस आतंकवादी को काबू में नहीं कर लिया, तब तक वो पकड़, वो हिम्मत, वो दृढ़ता आखिरी सांस तक बनी रही। दोस्तों, ये सिर्फ एक बहादुरी का काम नहीं था, ये इतिहास था। दुनिया भर में बहुत ऐसे हमले हुए हैं, लेकिन शायद ये पहली बार था जब इतने बड़े शहरी आतंकी मामले में एक भारी हथियार से लैस हमलावर को जिंदा पकड़ा गया। और ये मुमकिन हुआ एक निरस्त्र कांस्टेबल की वजह से। उस जिंदा गिरफ्तारी ने सच को दुनिया के सामने रखा, साजिश का चेहरा बेनकाब हुआ, न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर वो उस रात डर जाते, अगर वो एक कदम पीछे हट जाते, तो शायद कहानी कुछ और होती। दोस्तों, हिम्मत का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता, कभी कभी हिम्मत का मतलब होता है डर के सामने खड़े रहना, अकेले, निरस्त्र, लेकिन टूट कर नहीं। श्री तुकाराम ओमले ने हमें ये सिखाया कि देशभक्ति शब्द नहीं होती, वो क्रिया होती है, वो फैसला होता है जो आप उस पल में लेते हो जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल का फासला हो। उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन देश को एक अनमोल चीज दे गए, सच, न्याय की उम्मीद और एक मिसाल। आज हम जब 26/11 को याद करते हैं, तो हम दर्द को याद करते हैं, शहीदों को याद करते हैं, लेकिन उन सब के बीच एक चेहरा जो हमें हमेशा याद रखना होगा, एक हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक साधारण आदमी जो किसी फिल्म का हीरो नहीं था, जो किसी पोस्टर पर भी नहीं था, लेकिन जिसने असली जिंदगी में हीरो होने का मतलब दिखा दिया। उनका नाम लेना ही सीने में एक गर्व भर देता है,
श्री तुकाराम ओमले। उन्होंने हमें दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा काम सबसे साधारण लोग कर जाते हैं और देश उन पर हमेशा कर्जदार रहता है। आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं ना, जब हम अपनी जिंदगी आराम से जी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस रात का वो पल हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा किसी ने अपने खून से लिखी थी और उस लिखावट में एक नाम हमेशा चमकता रहेगा, श्री तुकाराम ओमले, हमारे अमर नायक, हमारे सच्चे वीर और हमारी यादों में सदा जीवित।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। सोशल मीडिया रियलिटी। हम सब बोलते हैं मैं सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती हूँ, फिर 2 मिनट बाद फोन उठा के चेक करते हैं किसी ने हमें मिस तो नहीं किया। सबको पीस तो चाहिए पर नोटिफिकेशन साइलेंट नहीं करते। इनर पीस और ऑनलाइन प्रेजेंस दोनों एक साथ मेंटेन करना, यही मॉडर्न योगा है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

الجيت अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक था भिखारी। रेलवे में सफर करते हुए भीख मांगने के दौरान एक बार एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर बढ़िया पैसा मिल जाएगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, अरे यार, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे पाऊं। सेठ बोला, देखो, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं भाई। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुमको बदले में कुछ दे पाऊंगा। तभी स्टेशन आ गया जहां पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचता रहा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे तो पाता नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा, समझ नहीं आ रही बात। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि चलो, जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ देगा जरूर। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल उठ गया कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में भला क्या दे देगा दूसरे को। ये बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था वो, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे, जंगली फूल थे। उसने सोचा, अच्छा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। तो उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिन बीते, उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे भीख देते ही रहते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो गए तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उन्हें दिए। इस सेठ को यह बात बड़ी पसंद आई। सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल देगा। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर हो सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये पागल हो गया है,
अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक साल गुजर गया। उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम लोग दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूं कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से बस दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। हमारे भारतीय संस्कृति में शायद इसीलिए खुद को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और समझने की बात यह है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तब भी हमें कुछ मिलता है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान है वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचे, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, यदि लोग गलतियों से सबक लेते हैं तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया है मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हस्ती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

मैं बचपन से ही अपने से बड़ी उम्र के लड़कों और लफंगों के साथ रहा। मैं महज 7 साल का ही तो था, लेकिन तकरीबन जवान हो चुके लड़कों से मेरी दोस्ती रही। उनके साथ ही क्रिकेट खेला, अखाड़ों में कुश्ती लड़ी, वर्जिश की। अपने उस्ताद के पैरों और पीठ पर सरसों का तेल मला, कुछ दाव लगाने सीखे और फिर उस्ताद के कहने पर पास के गांव में लगने वाले मेले में आयोजित दंगल में भाग लेने जाता था। उन दिनों 3 रंगों की लंगोट हुआ करती थी, लाल, सफेद और काली। उन 3 रंगों में से मैंने अपने लिए लाल रंग की लंगोट चुनी। लफंगों के साथ जंगल में खूब भटका, ज्यादातर दोपहरें पेड़ों पर गुजारी, कबूतरों के पीछे भागा, तीतर बटेर का पीछा किया, उन्हें कीटनाशक DDT पाउडर खिलाकर मारा, फिर लकड़ी पर सेक के खाया। यही वो दिन थे जब मैंने बीड़ी पीना सीखा, कभी कभी सिगरेट, फिर धीमे धीमे गांव की अंधेरी गलियों में शराब पीना सीखा। देर रात तक गांव की अंधेरी गलियों में बैठकर मैं ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे धुएं के छल्ले बनते हैं, बादलों का धुएं से क्या संबंध है। शायद यहीं से कविताओं ने मेरे भीतर जगह बनानी शुरू की होगी, लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि कविता भी कोई चीज होती है। हालांकि अब भी मुझे नहीं पता कि कविता क्या होती है, लेकिन मैं उसे बार बार लिखकर समझने की कोशिश करता रहता हूं। मैं अब तक वो कविता नहीं लिख पाया हूं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। खैर, मैं असल कहानी पर आता हूं। तो उन दिनों उस नाजुक उम्र में मैंने शराब, सिगरेट और कुश्ती जैसी सारी सख्त चीजें की। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त नहीं की जाना चाहिए थी, लेकिन उम्र हमेशा मुझे अपने से आगे की ओर ही धकेलती रही। मैं उन दिनों जंगल, घास, फूल, कांटे, गायें, बेल, तालाब, कुओं और फसलों की संगत में रहता था। मुझे लगता था एक दिन इनमें से ही कुछ बन जाऊंगा। मैं किसी दिन घास बन जाऊंगा और हवा के साथ रहूंगा। कभी लगता मैं कोई कुआं हो सकता हूं जिसका पानी खेतों में जाएगा। कई बार सोचता था कि हो सकता है मैं बड़ा होकर कोई फूल बन जाऊं जो किसी दिन किसी देवता के सर पर रखा जाऊं, या कोई सुंदर स्त्री के बालों के जूड़े में ठूंस दिया जाऊं। खुले आसमान के नीचे मैं अपने घर की टीन की चद्दरों पर सोए हुए इन्हीं सारी कल्पनाओं में खोया रहता था। कभी आसमान का तारा बन जाता तो कभी जंगल का कोई कांटा। फिर एक दिन मैंने अपने पुरखों से सुना कि मरे हुए लोगों का पेट भरने और उनकी प्यास बुझाने के लिए कौवे छतों पर आते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आपके ही

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था और नाम भी उस

का था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की 3 बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा, ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई। वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की 3 बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में खच्चर वाला आ गया दौड़ता हुआ और खच्चर को मरा पड़ा देखकर हाय तौबा मचाने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत ले आया। दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, बड़ा गरीब हूं, किसी तरह इस खच्चर पर माल लादकर और उसके किराए के पैसों से पेट पालता था। अब खच्चर तो मर गया, अब इसका दाम कौन देगा? राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्या करें अब इसका? मंत्री ने कहा, महाराज आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना, देखिए यही है भेड़िया धसान। जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब? राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों, खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: एकता और ऐश्वर्या,
3: कैसे हो बच्चों? नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, आज तो सब बड़े खुश नजर आ रहे हो।
4: हाँ, भैया।
3: लेकिन ये क्या, ये तुम कुछ छुपा रहे हो क्या?
4: नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे।
3: नहीं, देखो देखो, ये कुशागर और ये निशांत, इनके इनके हाथ में शायद कुछ है। वाह, क्या बात है भाई, है इतने सुंदर फूल। वाह, कितने सुंदर फूल है। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। अच्छा ये बताओ भाई, इन फूलों को तुम लेकर कहाँ से आए?
4: ऋचा के बाग के फूल है।
3: ऋचा के बाग के
5: हैं? हाँ भैया, ये मेरे बाग के फूल हैं।
3: अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद ऋचा, बहुत बहुत अच्छे फूल लेकर आई हो तुम, बहुत अच्छे फूल है ये। अच्छा ये बताओ कि ये फूल तुम लेकर क्यों आए हो मेरे लिए?
5: भैया हम आपको उपहार देना चाहते
3: अच्छा।
5: थे। आप हमें एक कहानी इतनी सुंदर भी तो सुनाते हो।
3: अरे वाह, क्या बात है मेरे शेर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। सचमुच फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, एकता और ऐश्वर्या को भी फूल बहुत सुंदर लगते थे।
5: ये कौन है भैया?
3: वही तो बताने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों, मेरी कहानी का नाम है एकता और ऐश्वर्या, और आज के मेरे अक्षर हैं ए और ए। ए ए
6: ए ए
3: ए ए। हाँ, शाबाश। ए से एकता और ए से ऐश्वर्या, एकता और ऐश्वर्या। तो एकता और ऐश्वर्या दो बहनें थीं, दोनों एक दिन एक बाग में घूमने के लिए गईं।
5: ए से
3: ए से ए
5: ए से एड़ी
3: ए से एड़ी। हाँ तो बच्चों, वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जैसे तुम लेकर आए हो मेरे लिए, है कि एकता उन्हें एकटक देखती रहे।
5: ऐसे एकता
3: ए से एकता
5: एकटक
3: और ए से एकटक। शाबाश। हाँ तो बच्चों, उसने सोचा माली से पूछूं कि उन्होंने इतना सुंदर हर एक गुलाब और हर फूल खिलाया कैसे। हाँ तो बच्चों, फिर एकता और ऐश्वर्या माली को ढूंढने लगी। हाँ तो पता है, माली काका मिले ही नहीं।
5: क्यों?
3: बताता हूँ बच्चों, उन्होंने बहुत ढूंढा तो देखा कि माली काका बाग के कोने में एकांत में बैठे थे। एकांत यानी शांत, खाली जगह। तो ए से
6: एकांत
3: एकांत। शाबाश, ए से एकांत
5: एकांत।
3: तब बच्चों, ऐश्वर्या ने माली काका से पूछा,
7: माली काका, आपने इतने सुंदर फूल और वो भी इतने बड़े बड़े उगाए कैसे?
3: तो माली काका एकदम गुस्सा हो गए और बोले, दूर हटो यहाँ से।
5: माली एकदम से गुस्सा क्यों हो गए?
3: अरे बताता हूँ ऋचा, लेकिन पहले बताओ ए से
6: एकदम।
3: ए से
6: एकदम
3: एकदम। शाबाश। तो गुस्से में ऐट गए माली काका। ऐसे
5: ऐठा।
3: शाबाश
5: भैया, ऐसे ऐसा
4: भैया, ऐसे ऐसे।
3: सही कहा तुमने, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसा। बिल्कुल सही, शाबाश। तो बच्चों, एकता और ऐश्वर्या की बात सुनकर माली काका बोले,
8: अरे ना जाने यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते हैं,
3: मैं इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़ कर ले जाते हैं। मेरी सारी मेहनत पर

0: नहीं फेर देते हैं। हाँ
1: ये तो बहुत बुरी बात है भैया।
2: हाँ बहुत बुरी बात है।
3: मालिक तो दुखी होते होंगे।
2: बिल्कुल होते थे बच्चों।
4: उनको कितनी मेहनत करनी।
3: ऐसा नहीं करना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
4: मैं तो कभी भी फूल नहीं तोड़ता।
2: फूल नहीं तोड़ता, फूल
4: फूल।
2: शाबाश। तो बच्चों तब एकता ने पता क्या किया?
1: बताता हूँ जल्दी।
2: हाँ जल्दी बताता हूँ। तब बच्चों एकता ने एक पेड़ की डाल पर ये लिखकर टांग दिया।
1: क्या भैया?
2: यही कि यहाँ फूल तोड़ना एकदम मना है। और ऐश्वर्या ने भी बाग के बाहर ये ऐलान कर दिया।
1: क्या भैया?
2: उसने ये ऐलान किया कि जो भी फूल तोड़ेगा उस पर जुर्माना होगा, और जिसे बाग देखने आना है उसे टिकट भी लेना होगा।
1: अरे वाह, टिकट लगा दिया।
2: हाँ टिकट लगा दिया।
4: उसकी तो कमाई हो गई।
2: बिल्कुल कमाई हो गई। शाबाश। हाँ। तो बच्चों बताओ, ऐसे
1: ऐश्वर्या
2: ऐनक
1: ऐसा
2: और ऐसे ऐलान, ऐसे ऐलान। हाँ ऐलान कर दिया उसने। तो बच्चों इस तरह से एकता और ऐश्वर्या ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। माली काका की मेहनत भी बेकार नहीं गई और मेहनत का इनाम भी मिला। बताओ कैसे मिला?
1: अब लोग टिकट लेने लगे।
2: बिल्कुल सही।
4: माली काका को भी कमाई हो गई।
2: बिल्कुल कमाई भी हो गई।
1: अब कोई उनका फूल नहीं तोड़ेगा।
2: अब कोई उनके फूल नहीं तोड़ेगा। शाबाश।
4: अब खुश रहते हैं।
2: अब खुश रहते हैं
1: और बहुत सारे फूल खिलेंगे।
2: बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। अब लोग टिकट लेकर बाग देखने आते थे और हाँ फूल भी नहीं तोड़ते थे। इस तरह से न तो फूल टूटते थे और न ही बाग की सुंदरता कम होती थी, बल्कि बाग की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और हाँ साथ साथ मालिका का धन भी कमाने लग गए थे।
4: बहुत खुश हो गए।
1: उनके यहाँ चिड़िया भी आने लग गई।
2: चिड़िया आने लग गई।
1: टूरिस्ट आने लग गए।
4: और उनकी फोटो बाहर छप गई।
2: अखबार में छप गई। यानी उनका बहुत प्रचार हो गया, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए दूर दूर तक। ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,

0: एकांत में
1: बाग का माली था बैठा। पूछा जब ऐश्वर्या ने तो माली थोड़ा सा ऐठा। माली को गुस्से में पाकर दोनों का दिल था बैठा। ऐसे एकांत और ऐसे ऐश्वर्या और

0: एकता और ऐश्वर्या ने पूछा,
1: काका गुस्सा क्यों ऐसे? माली बोला,
2: लोग यहाँ पर आते हैं जाने कैसे कैसे, एक एक फूल को तोड़ फेरते हैं मेरी मेहनत पर पानी जैसे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: तूतुन की रेल छूट गई, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे सभी।
2: अरे लो आ गए बच्चे, आ गए। नमस्ते, आओ चलो अपने बैठो।
3: बच्चों आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो।
4: हम पार्क में खेल रहे थे।
2: अच्छा, तो बहुत मस्ती की होगी तुमने पार्क में, है ना।
3: अच्छा ये बताओ तुम और कहाँ कहाँ मजे करते हो?
4: झूले पर।
2: अच्छा, और
4: सहेली के घर पे, मामा जी।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये बताओ नानी जी के घर कौन मजे करता है?
4: मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाता हूँ।
2: अच्छा,
4: मैं भी जाता हूँ और हम नानी के घर पे खूब शैतानी करते हैं। और उधर मामा जी भी होते हैं हमारे। अच्छा। और मेरी मम्मी भी होती है।
3: अरे वाह। भाई वाह। अच्छा बच्चों पता है तुम्हारे जैसा ही एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना नटखट सा बच्चा था जिसका नाम था तूतुन।
2: क्या नाम था?
5: तूतुन।
3: तूतुन को भी अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारी तरह।
2: हाँ, और नानी के घर से वापस आने का उसका मन ही नहीं करता था।
4: मेरा भी मन नहीं करता आने का। मैं तो सर्दियों में जाता हूँ।
3: तो ठीक ऐसे ही तूतुन का मन नानी के घर बहुत लगता था, बड़े मजे आते थे उसे वहाँ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में तूतुन नानी के घर गया तो छुट्टियां खत्म होने पर तूतुन की मम्मी ने तूतुन से कहा,
2: अरे अरे बेटा तूतुन कहाँ हो, चलो जल्दी से अपना सामान बांधो। हाँ भाई, रेलगाड़ी आने वाली है 5:30 बजे, छूट जाएगी, कहाँ हो तूतुन?
3: और पता है बच्चों 5:30 बजे का मतलब क्या होता है?
2: क्या होता है? हाँ
3: सोचो सोचो। अरे मैं बताता हूँ, 5:30 यानी 5:30 क्या?
5: 5:30।
3: शाबाश,
2: बिल्कुल सही कहा। और फिर पता है क्या हुआ? जाने की बात सुनकर तूतुन बहुत उदास हो गया और सोचने लगा,
6: ओहो हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेलगाड़ी छूट जाए छूट जाए।
2: पर अब क्या हो सकता था, तूतुन को तो जाना था। तो तूतुन अपने मम्मी पापा के साथ 5:15 पर ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तब तूतुन के पापा बोले,
7: अरे भाई तूतुन जल्दी करो। अरे 5:15 बेटा, कहीं ट्रेन छूट ना जाए।
2: और सुनो सुनो आगे सुनो। ट्रेन छूटने की बात पर तूतुन बहुत खुश हो गया और फिर पता है क्या सोचने लगा?
8: लगता है हमारी ट्रेन छूट गई। अरे मजा आ गया, हमारी ट्रेन छूट गई, हमारी ट्रेन छूट गई। अब मैं और भी देर तक नानी के घर रह सकता हूँ।
2: तो बच्चों बताओ, क्या तूतुन की ट्रेन निकल गई थी? हाँ
4: नहीं, क्योंकि ट्रेन तो 5:30 निकलनी थी ना। अभी 5:15 ही तो बजे थे।
3: बिल्कुल सही तुमने बताया ईशान। अब ये बताओ 5:30 का क्या मतलब हुआ?
5: 5:30।
3: शाबाश।
2: और 5:15 का मतलब क्या हुआ?
5: 5:15।
2: बिल्कुल सही,
3: इसी बात पर हो जाए ताली। पर बच्चों तूतुन को ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो रहा था कि उसकी ट्रेन छूट गई।
2: और तब तूतुन के पापा ने तूतुन को बताया,
7: अरे बेटा अभी ट्रेन को आने में 15 बाकी हैं, ट्रेन 5:30 पर आएगी, अभी तो 5:15 ही है।
4: अब तो तूतुन दुखी हो गया होगा। उसे तो जाना होगा,
9: अब तो उसे जाना ही पड़ेगा।
3: अरे नहीं बाबा सुनो तो सही, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
2: हाँ क्योंकि ट्रेन तो आई ही नहीं। उन लोगों को बहुत देर तक वही इंतजार करना पड़ा।
9: अरे ये कैसे हुआ?
3: यही पूछने तो तूतुन के पापा स्टेशन मास्टर के पास जा पहुँचे और बोले,
7: स्टेशन मास्टर साहब ये ट्रेन क्यों नहीं आई अभी तक, हम बहुत परेशान हैं। अब देखो हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है।
4: तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा?
7: स्टेशन मास्टर ने कहा, सर 5:30 का मतलब है 5:30, असल में आपकी गाड़ी 5:30 पर चली गई।
3: क्या?
7: सर देखिए रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 कहा जाता है, यानी 17 घंटे 30 मिनट। क्या मतलब?
5: 17 घंटे 30 मिनट।
7: शाबाश।
4: 17 घंटे 30 मिनट काफी अजीब सा लग रहा है।
2: हाँ, तुम्हारी ही तरह तुतुन को भी 17 घंटे 30 मिनट सुनकर ना अजीब लग रहा था।
4: पर ऐसा क्यों कहते हैं दीदी?
2: ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि रेलवे में 12 नहीं 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग होता है।
3: हाँ, 12 घंटे की घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, इसलिए हमें उसके साथ सुबह, दोपहर, शाम, रात ये सब लगाना पड़ता है। जैसे सुबह के 9 बजे
2: और रात के 9 बजे,
3: सुबह के 5 बजे
2: और शाम के
5: 5 बजे।
3: शाबाश। अच्छा, सुबह के 11 बजे
5: और शाम के 11 बजे।
3: शाम के 11 बजे नहीं बेटा, रात के 11 बजे। बजाओ ताली इसी बात पर।
4: तो तुतुन की रेल छूट गई थी ना? तुतुन को तो बड़ा मजा आ गया होगा।
3: हाँ बच्चों, बहुत मजा आया था। लेकिन अब तुतुन ने 24 घंटे की घड़ी में समय देखना सीख लिया था।
2: हाँ, और पता है 24 घंटे की घड़ी में जब दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 13 घंटे।
3: क्या कहते हैं?
5: 13 घंटे।
3: हाँ, यानी 12 घंटे में 1 घंटा और जोड़ दिया तो हो गए कितने घंटे? 13 घंटे। शाबाश। अच्छा गुड़िया, तुम मेरी घड़ी देखकर बताओ कि इस वक्त कितने बजे हैं?
4: 4 बजे हैं।
3: 4 बजे हैं, बिल्कुल सही। और शाम होने को है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ?
4: शाम के 4 बजे हैं।
3: शाबाश गुड़िया, बजाओ इसी बात पर ताली।
2: हाँ, तो अब ये बताओ 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ?
3: बताओ बताओ।
4: 12, 13, 14, 15, 16 16 बजे हैं।
3: 16 बजे हैं नहीं, 16 घंटे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा बताओ बच्चों, 12 घंटे की घड़ी में शाम के 6 बजे हूँ तो 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा?
5: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे।
3: शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने, 18 घंटे।
2: तो अब ये बताओ शाम के 6:30 हो तो
4: 18 घंटे 30 मिनट।
3: वेरी गुड।
2: और शाम के 7 बजे? हाँ हाँ, सोचो सोचो।
4: 19 घंटे।
3: अरे वाह, शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हैं। वैसे एक बात है, तुतुन भी तुम्हारी तरह बहुत होशियार हो गया था। तो इस तरह हुई कहानी खत्म। बजाओ ताली।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: भूखा अमरूद।

0: Uka Amrud. एक थी ची ची चिड़िया और एक थी गुनगुन गिलहरी। दोनों सहेलियां थी। हाँ बच्चों, एक दिन चींची ने गुनगुन से कहा,
1: चलो गुनगुन अमरूद के पेड़ पर चढ़कर खेलें।
0: तो बच्चों दोनों पहुंची अमरूद के पेड़ के पास और बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम यहाँ खेल सकती हैं?
0: अमरूद ने कहा,
2: हाँ हाँ खेल लो, लेकिन ध्यान रहे मेरी टहनियाँ ना टूटें।
0: चींची चिड़िया हैरान होकर बोली,
1: अरे अमरूद भैया तुम्हें दर्द होता है क्या?
2: और नहीं तो क्या, तुम्हें दर्द होता है ना, वैसे ही हम पेड़ों को भी दर्द होता है।
1: अच्छा अच्छा, हम नहीं तोड़ेंगे टहनियाँ।
0: ऐसा कहकर बच्चों दोनों खेलने लगी। हैं? कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगी। गुनगुन बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम तुम्हारे अमरूद खा लें?
0: ये सुनकर बच्चों अमरूद ने कहा,
2: मैं अभी भूखा हूँ, तुम पहले मेरे लिए भोजन लाओ, यानी मेरे आहार का इंतजाम करो।
0: हैरान होकर चींची ने पूछा,
1: अरे तुम खाना भी खाते हो?
0: तो अमरूद बोला,
2: इसमें हैरान होने की क्या बात है, खाना तो सभी को चाहिए, खाना खाकर ही तो हम बढ़ते हैं। तुम भी तो पहले छोटी नन्नी मुन्नी थी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें दाना ला ला कर खिलाती थी, तभी तो तुम बड़ी हुई और चलने उड़ने लगी।
0: ये सुन बच्चों चींची ने कहा,
1: लेकिन तुम्हारे लिए खाना कौन लाता है?
0: गुनगुन बोली,
1: और भला तुम खाते क्या हो, हमें बताओ तो झटपट तुम्हारे लिए ले आए खाना।
0: अमरूद ने कहा, बच्चों
2: मैं तो मिट्टी से अपना आहार यानी खाना लेता हूँ, जब जमीन में पानी डाला जाता है ना, तो मेरी जड़ें उस पानी को पीती हैं, तने उस पानी को पहुंचा देते हैं पत्तियों तक, पत्तियां सूरज की रोशनी की सहायता से बनाती हैं खाना, मेरा आहार।
0: गुनगुन ने पूछा,
1: अरे भाई प्रकाश यानी रोशनी से कैसे बनता है तुम्हारा खाना?
0: अमरूद का वृक्ष बोला,
2: जैसे मुन्नी की अम्मा अंगीठी में खाना बनाती है ना, वैसे ही सूर्य का प्रकाश है हमारी अंगीठी, उसी की मदद से पत्तियां मेरा आहार बनाती है। और इसके अलावा जैसे तुम सांस लेती हो ना, मुझे भी चाहिए हवा सांस लेने के लिए।
0: तो बच्चों चींची ये सुनकर बोली,
1: लेकिन अमरूद भैया हमें तो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाना आता ही नहीं, हम तुम्हारा आहार कैसे बनाएं?
0: गुनगुन ने पूछा,
1: और शुद्ध वायु कहाँ से लाएं?
0: ये सुनकर बच्चों पास में खड़ा दूसरा अमरूद का पेड़ गाने लगा।

0: पेड़ की ये बात सुनते ही चींची खुश होकर बोली,
1: अरे ये तो बड़ी आसान बात है, गज्जू हाथी तो हमारा दोस्त है। दोस्त अभी लेकर आते हैं उसकी सूंड में भरकर पानी।
0: तो बच्चों झट दोनों पहुंची गज्जू हाथी के पास। उनकी बात सुन गज्जू ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा। फिर वे तीनों चल पड़े अमरूद के पेड़ की ओर। अमरूद के पेड़ की जड़ में गज्जू ने सारा पानी उंडेल दिया, ढेर सारा पानी। बस जड़ों ने पानी ऊपर खींचा, तनों ने पत्ती तक पहुंचाया। सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियों ने पेड़ का आहार बनाया। अमरूद का पेड़ अब भूखा ना रहा और बोला,
2: आओ आओ तुम भी अपनी भूख मिटाओ, लो ये अमरूद खाओ खाओ।
0: चींची चिड़िया, गुनगुन गिलहरी और गज्जू हाथी ने मिलकर बच्चों खूब मीठे मीठे अमरूद खाए।

0: खोलो उसमें निकला बम्बे को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
2: एक तिनका।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: महानगर के एक बस स्टैंड पर संजय अपने पिताजी के साथ बस का इंतजार कर रहा है। संजय स्कूल के लिए बस की प्रतीक्षा में है। बस स्टैंड पर काफी भीड़ है।
1: भाई साहब, आप किस बस में जाएंगे?
2: कौन से नंबर की बस निकली है अभी?
0: संजय पिताजी से पूछता है,
3: बाबूजी अभी तक बस नहीं आई, कहीं स्कूल को देर ना हो जाए।
4: आती ही होगी बस। अरे देखो ना, अपनी बस के इंतजार में लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं।
3: हाँ बाबूजी, ऐसे में सामने से आती बस दिखाई कैसे देगी?
4: हाँ ये तो है।
0: तभी एक युवक उन दोनों के पास आता है और कहता है,
5: आप दोनों बीच सड़क से हटकर फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी।
3: आप कौन हैं?
5: मेरा नाम आदित्य है। आप थोड़ा फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी ठीक है, आओ बेटा आओ, इधर ऊपर आ जाओ फुटपाथ पर।
5: भाई साहब, अब आप भी आ जाइए फुटपाथ पे।
6: रख क्यों? इतने लोग खड़े हैं और तुम हमसे क्यों कह रहे हो भाई?
5: हाँ हाँ, मैं औरों से भी कह रहा हूँ, आप तो आ जाइए।
6: भैया हम यही ठीक है, आप अपना काम,
5: हाँ आप अपना काम करिए। किनारे, थोड़ा किनारे आ जाइए आप। भाई साहब फुटपाथ पे आ जाइए आप। बच्चे अब भी आ जाइए फुटपाथ पे। बहन जी फुटपाथ पे आ जाइए आप।
3: बाबूजी देखिए,
5: बहन जी
3: आदित्य भैया एक एक करके सबको कितनी अच्छी बात कह रहे हैं।
4: हाँ और कुछ लोग उसकी बात मानकर फुटपाथ पर आ भी रहे हैं।
3: पर वो दो आदमी तो अभी सड़क पर ही खड़े हैं।
4: उस युवक ने उन्हें समझाया था पर वो नहीं माने तो क्या किया जा सकता है।
3: लो आदित्य भैया तो चले गए।
0: तभी एक बस इतनी तेज गति से आई कि पीछे हटने की कोशिश में बीच सड़क पर खड़े दोनों आदमी गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई।
7: अरे ये देखो ये क्या क्या हो रहा है? अरे चोट लग गई।
6: नहीं नहीं,
7: कोई उठाओ तो सही, कोई उठाओ तो सही है। अरे खड़े हो जाइए खड़े।
4: अरे अगर आपने उस युवक की बात मान ली होती तो ऐसे चोट तो मान लगती।
7: अरे वो भला आदमी तो कितनी बार समझा रहा था मगर यही नहीं माने, अब लग गई ना।

0: संजय स्कूल पहुंचा। वहां अध्यापिका जी कक्षा में पूछ रही थी,
1: बच्चों कल मैंने आपसे कहा था कि आप ग्रुप बनाकर कक्षा के कमजोर बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या आपने ऐसा किया?
2: हाँ, मैंने तो किया है।
1: रानी तुम बताओ।
3: बहन जी, मेरे साथी रमेश ने पढ़ाने में कोई रुचि ही नहीं ली, इसलिए मैंने भी किसी को नहीं पढ़ाया।
1: रानी, ये तो गलत बात है। देखो, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। हमें केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
3: जी बहन जी।
4: बिल्कुल ठीक, जैसे आदित्य भैया आज बस स्टैंड पर कर रहे थे।
1: आदित्य भैया कौन?
0: तब संजय ने अध्यापिका जी को बताया कि बस स्टैंड पर कैसे आदित्य भैया लोगों को फुटपाथ पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। महानगर की एक सड़क पर अखबार का एक पत्रकार लोगों से बातचीत कर रहा है।
5: भाई साहब।
6: जी, मुझसे कुछ कहा?
5: जी हाँ, आप ये बताइए कि आज के वातावरण को, अपने समाज को अगर अच्छा बनाना हो तो क्या करना चाहिए?
6: मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए समाज में शांति होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए
5: जी,
6: लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समाज में ये सब बहुत ही कम रह गया है। मैं तो कहूँगा सब खत्म हो गया है।
5: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये सब खत्म हो गया है। क्यों बहन जी, आप क्या कहती हैं?
1: अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप भी, आजकल कुछ ठीक भी है क्या? आप छोड़िए भी, हमें क्या करना है इन बेकार की बातों में पढ़कर, हम तो चलते हैं।
7: रुकिए, ये बेकार की बात नहीं है। जब सब कुछ गलत हो रहा है तो यूं मुंह फेर कर मत जाइए, आगे बढ़िए। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश भी इस गलती को सुधारने में काम आ जाए। ये समाज सबका है, इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सबकी ही है।
0: बहाना।

0: उषा जी।
1: जी सर।
0: ये पत्र आज ही भिजवा दीजिए, बहुत जरूरी है ये।
1: सर आज?
0: जी आज।
1: सर आज तो नहीं जा सकता।
0: पर क्यों? अभी बजे हैं सुबह के 10 और डाक जाती है दोपहर को 3:30 बजे, तब तक ये टाइप होकर पोस्ट हो सकता है ना?
1: सर अभी तो ये टाइप भी नहीं हो सकता।
0: पर क्यों?
1: सर अभी तो लाइट ही नहीं है।
0: लाइट नहीं है तो क्या हुआ, इस कमरे में तो काफी रोशनी है, आप बिना लाइट के भी इसे टाइप कर सकती हैं।
1: सर मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए कंप्यूटर नहीं चलेगा।
0: पर इलेक्ट्रिसिटी आ भी तो जाएगी।
1: सर इलेक्ट्रिसिटी तो 1 घंटे बाद आएगी।
0: और क्या?
1: तब तक चाय का
0: तो चाय पीकर लौटने का इरादा नहीं है क्या?
1: सर है तो, पर
0: क्या,
1: तब तक इस कंप्यूटर पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरी बारी आज आएगी ही नहीं।
0: आप इसे शुक्ला जी के कंप्यूटर पर कर लीजिएगा, वो खाली पड़ा रहता है।
1: शुक्ला जी का कंप्यूटर तो पहले ही खराब पड़ा है।
0: चलिए जाने दीजिए उषा जी, आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चाय या अपनी बारी किसी का इंतजार मत कीजिए, आप इस पत्र को साधारण टाइपराइटर पर टाइप करके दे दीजिए। क्या ये हो सकता है?
1: हाँ सर ये तो हो सकता है।
2: काम न करने के इतने बहाने और काम करने का कोई बहाना नहीं। अकड़

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आपके रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह वो उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसको इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
2: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह 2 चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये 2 तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, उनके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब एक
5: क्या फाइलेरिया की दवाई
2: जी
3: नितिन जी, ये एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में दस बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
2: अच्छा।
3: तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा ज्यादा
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
2: जी
5: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज जो उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતેં ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટંટ્યા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम को। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम छाबा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता है, किसान साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं तलहनी फसलों के ऊपर। तो तलहनी फसलों का अगर नाम आया है तो हमारा जो झाबुआ जिला है उसमें अधिकतर हम देखते हैं हमारे यहाँ का किसान जो है मूंगफली की, सोयाबीन की और तिल्ली की खेती करता है।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।
7: किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मूंगफली का हम तेल निकालते हैं, साथ ही हम उसको स्नैक्स में भी खा रहे हैं, बाजारों में छोटे छोटे पैकेट्स में सिंगदाने हमको मिलते हैं, हम उसको रोस्टेड करके भी खाते हैं, साथ ही हम मूंगफली का बटर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मूंगफली से बनी हुई चीज़ों का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आज हम जानेंगे कैसे हम मूंगफली की अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं और कौन सा बीज हमें इस्तेमाल करना चाहिए और मूंगफली की खेती में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए आदि जानकारियों को जानेंगे। तो किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं।
2: हमारे देश में तिलहन की खेती की विशेष भूमिका है क्योंकि हमारे रोजमर्रा के खान पान में खाने वाले तेल का इस्तेमाल खूब होता है। और तिलहनी फसलों की बात जहां तक आती है, हमारे देश में मुख्य तौर पर मूंगफली, सोयाबीन, तिल आदि तिलहनी फसलों की खेती होती है। इनमें मूंगफली की क्या खास भूमिका है, आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि मूंगफली का तेल जहां तेल के रूप में इस्तेमाल होता है, वहीं इसके दाने जो हैं वो नमकीन के रूप में खाए जाते हैं। और साथ ही आपको तो पता ही होगा कि आजकल मूंगफली के बटर की मांग भी खूब बढ़ने लगी है। तो ऐसे में मूंगफली की खेती से किसानों को क्या फायदा हो सकता है, इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किसान क्या करे ताकि उनकी मूंगफली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इन सभी पहलुओं पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ गुजरात से बेहतर जगह और भला क्या हो सकती है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे किसान भी मौजूद हैं जिनसे हम ये पूरी बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करें हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर राधाकृष्णन, साथ ही हमारे साथ है राष्ट्रीय कृषि सलाहकार श्री एस के दलाल, इनके साथ ही विशेष मेहमान डॉक्टर एस डी सावलिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि सहायक तकनीकी अधिकारी हैं, साथ ही डॉक्टर आर ए जाट वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान और डॉक्टर रिंकू डे वरिष्ठ वैज्ञानिक है सूक्ष्म जीव विज्ञान की। और साथ ही बहुत सारे किसान जैसा कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप सभी का स्वागत है अपनी तरफ से और इन सभी विशेषज्ञों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बिल्कुल, और इसी तालियों की गूंज के साथ आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
8: हमारे देश में तिलहन की 7 बड़ी फसलें हैं और मूंगफली का इनमें प्रमुख स्थान है। खाना बनाने में मूंगफली के तेल का खूब इस्तेमाल किया जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। एक अनुमान के अनुसार सरकार को हर साल करीब 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल आयात के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। मूंगफली समेत दूसरी तिलहनी फसलों की उपज में बढ़ोतरी उपज और मांग के अंतर को पार सकती है। सरकार और वैज्ञानिक अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने इस बार मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार बोनस भी दे रही है। दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिक ज्यादा उपज वाले बीज तैयार कर रहे हैं, साथ ही वो किसानों से वैज्ञानिक विधि से मूंगफली की खेती करने पर जोर दे रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार और वैज्ञानिकों की ये कोशिशें रंग लाएंगी और मूंगफली भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभाएगी।
2: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या वजह है कि अनाज के उत्पादन में हमने जो सफलता हासिल की है, तिलहन के मामले में वो बात अभी तक नहीं हो पाई है, क्या वजह है इसकी?
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो, टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
9: तिलहन, जहां तक मूंगफली का बात है, वो रेनफेड है जो बारिश के ऊपर निर्भर है, करीब 80% ग्राउंडनट जो है बारिश की वजह हेल्प से ही उगाया जाते हैं। जो बारिश का जो कमियां आते हैं, जो टाइम पर नहीं आते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम, जो बारिश कम होने का, ये मेजर कारण है। इसके अलावा कुछ कीट वगैरह भी होते हैं जिसका नियंत्रण का अभी अच्छे तकनीक अवेलेबल है। बाकी जो मेजर प्रॉब्लम जो है वो ड्राउट का है, जो कम पानी होने का होता है।
2: बिल्कुल दलाल जी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ये खाद्य तेल आयात जो है, इसे लेकर सरकार को करोड़ों खर्च करना पड़ता है, ऐसे में केंद्रीय कृषि विभाग जो है वो क्या कदम उठा रहा है ताकि जो घरेलू तेल उत्पादन है उसे बढ़ाया जा सके?
10: आपने बिल्कुल सही सवाल किया। भारत के अंदर हम खाद्यान्न तेल जो आयात करते हैं वो उसके ऊपर भारत सरकार का करीब करीब 73,000 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है। हमारी जो पैदावार है, जो तिलहन की फसलों से होता है, उससे जो हम अपने घरेलू तरीके से जो पैदा कर सकते हैं तेल, वो करीब करीब आधा होता है, 50% के करीब हम यहाँ करते हैं और 50% हमको आयात करना पड़ता है। करीब 14-15 के आंकड़ों के मुताबिक 17 KG हर एक इंसान जो है पर कैपिटा कंजम्पशन है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि WHO के मुताबिक 10 KG काफ़ी होता है। तो हमारे यहाँ तेल का जो खपत है बहुत ज़्यादा है, जिसको हम इस माध्यम के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि लोग तेल कम खाएं, ये स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं मूँगफली, जैसे हमने 5,000 करोड़ की पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया है। टोटल हम करीब करीब जो तिलहन फसलों के जो हैं वो 19,800 करोड़ का निर्यात भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को काफ़ी इसके जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च करनी पड़ती है। इसलिए हम लोगों को तेल की कम खपत करनी चाहिए। तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई एक कार्य किए हैं, जिसके अंदर ऑयल पाम एक ऐसा वो हमने निकाला है जिसका पोटेंशियल देश के अंदर करीब 19.33 लाख हेक्टर है, जहाँ पे हम पाम ऑयल जो है वो पैदा कर सकते हैं, जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और हमारे खाने की जिसकी कमी है उसको काफी हद तक पूरा कर सकती है।
2: जी बिल्कुल। तो तिलहन उत्पादन की बात जब हो रही है, राधाकृष्णन जी आप बताएं हमें कि इसमें मूंगफली खास तौर पर इसकी भूमिका कितनी है?
9: मूंगफली का भूमिका बाकी जो तिलहन है, जैसे राई है या मस्टर्ड या सोयाबीन है, उसके तुलना में अभी कम है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो उस क्रॉप के हिसाब से ये तीसरे स्थान पर है।
2: जी,
9: तो ये तीसरे स्थान पर है अभी।
2: और निदेशालय की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है मूंगफली उत्पादन को बढ़ावा देने?
9: ये निदेशालय नया नया किस्में डेवलप करने का, और इसका जो भारत में जितनी जहाँ ग्राउंडनट उगाते हैं और उसमें जो संशोधन चलते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का ये काम मेनली करते हैं। इसके अलावा जो मूंगफली का उगाने में जो भी समस्याएं आते हैं उसको सुधारने का और उसको हल करने का जो तकनीकें वो बनाने का भी हम कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा एक और कोशिश है जो अच्छे गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करने का वो प्रोग्राम, ब्रीडर सीड प्रोग्राम है, वो भी हम करते हैं।
2: जी डॉक्टर दे, ऐसे में आप बताइए कि कुछ खास उपलब्धियां निदेशालय की जो है मूंगफली उत्पादन को बढ़ावा देने की, वो क्या उपलब्धियां हैं?
11: निदेशालय में काफ़ी सारी उपलब्धियां रही हैं, जैसे कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डेवलप किए गए हैं एग्रोनॉमिक रिलेटेड। इसके अलावा जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके द्वारा कंट्री में जितने हमारे कोऑर्डिनेटेड रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ से काफ़ी सारी उन्नत किस्में डेवलप की गई हैं, ग्राउंडनट की वैरायटीज रिलीज हुई हैं, और इस निदेशालय में जो ब्रीडिंग के द्वारा जो अच्छी प्रजातियाँ निकली हैं उसमें से 3 उन्नत ग्राउंडनट की वैरायटीज निकली हैं, जैसे गिरनार 1, गिरनार 2, गिरनार 3, और इसमें इसके अलावा काफ़ी सारे प्लांट प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं, जिसके द्वारा जैसे ग्राउंडनट के जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज पेस्ट हैं, डिजीजेज में जैसे स्टेम रॉट है, कॉलर रॉट है, और इसके अलावा और भी कुछ सॉइल बोन डिजीजेज हैं जिनके कंट्रोल मेजर्स डेवलप किए गए हैं, जिसके द्वारा ये जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं या बीमारियां जो मूंगफली के पौधे में लगती हैं इसका कंट्रोल किया जा सकता है। और मूंगफली में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट्स, कीड़े मकोड़े लगते हैं जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप को, उनके कंट्रोल मेजर्स के लिए भी बहुत सारी नई तकनीकें डेवलप की गई
12: हैं। कीड़े मकोड़ों और रोग बीमारियों के रोकथाम पर आगे बात करेंगे। डॉक्टर जाट से यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो मूंगफली का जो उत्पादन है उसके लिए जो आपने बताया कि जो वैज्ञानिक विधि है वो अगर अपनाया जाए तो वो बेहतर है, तो जो प्रचलित विधि है और जो वैज्ञानिक विधि है इनमें कितना अंतर है?
13: इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारा उसमें पोषक तत्व प्रबंधन। जैसे कि हम किसानों को सजेस्ट करते हैं कि वो 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश दें, लेकिन आमतौर पे किसान क्या करता है कि वो बहुत कम मात्रा के अंदर पोषक तत्व डालता है। साथ ही जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि राइजोबियम, जो क्योंकि ये मूंगफली फसल है तो उसमें राइजोबियम जो बायोफर्टिलाइजर है वो लगाना आवश्यक है, लेकिन किसान या तो लगाता नहीं है या अगर बायोफर्टिलाइजर वो लगाता भी है तो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। तो इसकी वजह से मूंगफली की फसल में पोषक तत्वों की कमी के कारण उपज में काफ़ी कमी आती है। दूसरा, फिर हम उनको बताते हैं कि जैसे खरपतवार की काफ़ी समस्या है, क्योंकि मूंगफली की जो फसल है उसकी ऊंचाई काफ़ी कम रहती है तो इसकी वजह से इसमें खरपतवार की काफ़ी समस्या रहती है। तो हम किसानों को हमारा रिकमेंडेशन है कि भी जो जब वो बुआई करता उस समय पेंडी मेथालिन नामक खरपतवार नाशी आता है उसकी 900 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर उसकी मात्रा हम बताते हैं, लेकिन कई किसान हैं जो वो नहीं लगाते, इसकी वजह से शुरू में ही खरपतवार आ जाते हैं। फिर बाद में हमारा रिकमेंडेशन है कि बुआई के 20 और 40 दिन बाद वो खरपतवार निकाले, या तो जैसे मजदूर लगा के निकाले या इंटरकल्चरिंग करें, लेकिन कई बार किसान वो भी नहीं कर पाता है क्योंकि आजकल मजदूरों की काफ़ी कमी हो रही है, तो उसकी वजह से भी हम मूंगफली की उपज में काफ़ी कमी आती है। तो ये कुछ जो इसके अलावा मूंगफली में एक बड़ा जो मुद्दा है वो है पौध संख्या पर हेक्टर की।
12: अब अच्छा, इसमें तो उसके बारे में हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से जो उत्पादकता है और उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर सावलिया से यहाँ पर मैं जान लूं कि जैसे कि बातचीत में कई बार ये बात आई है जो कीड़े मकोड़े हैं उससे काफी फसल को नुकसान हो जाता है, ऐसे में किस तरह की वैज्ञानिक विधियां हैं जो किसानों को अपनानी चाहिए?
7: ज्यादातर मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप जो पंचामृत पंचगव्य करके जीवामृत है, ऐसी जो घरेलू उत्पादन हो सकता है जो गायों की पालन पोषण के साथ साथ उसको दुगना फायदा होता है, दूध भी मिलता है, अपने चारे का भी सही तरह से इस्तेमाल करता है, गोबर मिलता है, तो अपनी जो जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको भी वो मेंटेन कर सकता है, और खुद अपने हाथों से पंचामृत बना के वो अपने खेत में छिड़काव करने से कीड़े मकोड़े भी कीट आते हैं नुकसान करने वाले उसकी संख्या भी कम कर सकते हैं, उससे नुकसान भी कम कर सकते हैं, और जो ये सब जीवामृत है वो सब वातावरण के लिए अनुकूल है और हेल्थ के लिए अनुकूल है, पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, और जो कुदरती परोपजीवी परभक्षी कीट है लेडीबर्ड बीटल है, क्राइसोपा है, और जो दूसरे कई है उसको भी नुकसान नहीं करता और पूरी मात्रा में उसकी संख्या रहने देते हैं, और ताकि दवाइयां का छिड़काव कम हो
14: और किसान को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम और मुनाफा ज्यादा
12: मिले। हम आगे आपसे और भी जानेंगे। दलाल जी से इस बीच हम जान लेते हैं कि यहाँ बात हो रही है कि जो मूंगफली का उत्पादन है, हमने देखा बातचीत में कि उसमें चुनौतियां काफी है, लेकिन अगर वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाए तो इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। तो किसानों को दलाल जी तभी प्रोत्साहित किया जा सकता है किसी भी खेती से ज्यादा जोड़ने के लिए, अगर उसे उसमें फायदा नजर आए। तो किसानों की आय दुगनी करने की जो बात हो रही है उस दिशा में, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो मूंगफली की जो खेती है वो कितना फायदा पहुंचा सकती है किसानों को?
10: देखिए, जैसे राधाकृष्णन साहब ने बताया कि मूंगफली तीसरे नंबर की फसल है, जो तिलहन की फसलों के अंदर हम सबसे पहले सोयाबीन लेते हैं जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है देश में, दूसरे नंबर पे रेप एंड मस्टर्ड आता है, तीसरे नंबर मूंगफली आता है। इसका एरिया भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है कंट्री एज ए होल देखते हुए। मूंगफली की फसल को आपको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार मिनी किट, सीड मिनी किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। हमने 17-18 में करीब 16.11 लाख सीड मिनी किट जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम बांटेंगे किसानों को, ताकि इन मिनी किट के अंदर हम जो है किसान को जो सबसे 10 साल से कम उम्र वाली जो नई ये होती हैं आपकी वैरायटीज होती हैं वो हम देते हैं, ताकि उनको पॉपुलराइज किया जा सके, ताकि ज़्यादा उपज देने वाली जो जो किस्में हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन अगर आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी तो उत्पादन ऑटोमेटिकली उसके जो है बढ़ जाता है। जैसे कि अब जहाँ तक उत्पादन का हिसाब है उसके अंदर उत्पादन गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है देश में, दो नंबर पे राजस्थान आता है, लेकिन उत्पादकता के अंदर राजस्थान ज़्यादा उत्पादकता देता है। तो इसलिए हम वो ये सीड मिनी किट जो है पॉपुलराइज करने के लिए बांटते हैं। दूसरा, हम ICR के करीब 515 जो हमारे KVKs हैं उनके थ्रू फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ताकि नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो बातें बताई जाती हैं काश्तकार को
12: जी,
10: वो अडॉप्ट करे और नई तकनीक के साथ अगर वो खेती करेगा तो पैदावार उसकी बढ़ती है
12: जी बिल्कुल।
10: तो ये
12: पैदावार बढ़ेगी तो फायदा भी होगा, मुनाफा भी होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन, हमें ये बताएं कि बात सिर्फ खेती और उत्पादन बढ़ाने की नहीं है, आय भी प्राप्त करने की है ज्यादा से ज्यादा, तो मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या निदेशालय की तरफ से, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय की तरफ से इसकी भी जानकारी किसानों को दी जाती है कि वो किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकें?
9: वैल्यू एडिशन पर ये निदेशालय बहुत कम काम कर रहे हैं अभी। जैसे जो टेबल प्रोडक्ट्स है
12: जी,
9: लेकिन हम दूसरे जो डायरेक्शन में जो काम कर रहे हैं, जो मूल्यवर्धित वैरायटीयां डेवलप करें
12: जी,
9: जैसे जो हाई ओलिक एसिड वाला, जो ओलिक एसिड जो है जैसे ओलिव ऑयल का जो क्वालिटी है वो ओलिक एसिड से आता है, हम ऐसे किस्म में और डेवलप करने में अभी लगे हुए हैं जिसके ओलिक एसिड कंटेंट उसकी बराबर हो जो ओलिव ऑयल का
12: जी,
9: तो उसी उसमें काफी कामयाबी अभी हुआ है, वो वैरायटी अभी आ जाएगा बहुत ही कम समय में। और दूसरा है जो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो वैरायटीज चाहिए
12: जी,
9: जैसे बड़े दाने का हो या यूनिफॉर्म कर्नल का हो, उसी टाइप का किस्में विकसित करने में भी हम काफी कामयाबी हुआ है, अब उसी डायरेक्शन पर हम काम कर रहे हैं।
7: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना, हमारी सरकार भी मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यों में लगी हुई है। साथ ही हम अपने व्यवसाय, इसको व्यवसाय के तौर पर भी कर सकते हैं और इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है और हम क्या कर सकते हैं ये जानेंगे। उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूंगफली से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: अगर किस्मों की बात करते हैं तो हमारे निदेशालय से जो वेराइटीज है गिरनार 2, ये वेराइटी उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए निकाली गई है। इसी प्रकार से इसी निदेशालय से एक दूसरी वेराइटी है गिरनार 3, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए निकाली गई है। फिर अगर गुजरात की बात करें तो जो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से GG20 वेराइटी है। इसके अलावा एक और अभी नई वेराइटी आई है GJG22। इस वेराइटी के अंदर जो कोलर रोट और स्टेम रोट की समस्या है तो इसमें काफ़ी सहनशीलता है इस वेराइटी में। इसके अलावा फिर अगर एक स्पेनिश जो ग्रुप है बंच ग्रुप, उसके अंदर TG37A वेराइटी है ट्रॉम्बे की, तो वो खरीफ और समर दोनों ऋतुओं में उगाया जा सकता है। फिर ऐसे ही एक और वेराइटी है GJG31, ये भी स्पेनिश ग्रुप वेराइटी है और ये भी किसानों में काफी प्रचलित हो रही है।
2: जी ठीक है डॉक्टर डे, अब आप मुझे ये बताएं और हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को बताएं कि खाद उर्वरक को लेकर के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को।
3: जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मूंगफली एक लिग्यूम क्रॉप है, तो ये जो लिग्यूम क्रॉप है इसमें राइजोबियम का बहुत बड़ा रोल रहता है। राइजोबियम की तरह और भी कुछ सूक्ष्म जीव है जिनका पौधे के न्यूट्रिशन के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसी तरह राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है और इसी तरह से कुछ फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फॉस्फोरस की उपलब्धि को बढ़ाता है पौधे के लिए। तो हमारा यही रोल है कि हम पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचाए। तो इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है जैसे यूरिया है और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, DAP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, इसके साथ साथ अगर हम पौधे को नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराना चाहते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन है, तो इसके लिए राइजोबियम का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग इस निदेशालय में कुछ जैविक खातर या बायो फर्टिलाइजर बनाया है जो पौधे को नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है।
2: राइजोबियम कितनी आती है?
3: इनकी लागत बहुत कम है। एक पैकेट बायो फर्टिलाइजर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 रुपये होती है और लागत के हिसाब से बहुत ही कम कीमत पे ये उपलब्ध होता है, लेकिन इसका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि राइजोबियम और फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो बायोफर्टिलाइजर के पैकेट के द्वारा या लिक्विड बायोफर्टिलाइजर के द्वारा किसानों तक पहुँचाए जिससे उनका लाभ वो ले सकें।
2: जी बिल्कुल, ये तो खाद उर्वरकों की बात हुई डॉक्टर सावलिया। अब कीड़े मकौड़े उनके रोकथाम और निदान की बात करें तो वहाँ भी लागत की बात आ जाती है। रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से कई नुकसान होते हैं, लागत भी ज्यादा होती है, ऐसे में क्या उपाय आप सुझाएंगे किसानों को?
4: मूंगफली में जो फफूंदी रोग आते हैं ज्यादातर वो स्टेम रोट करके और कोला रोट करके आता है, उसमें उसके कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा करके एक दूसरा फफूंद आता है जो किसान का मित्र है। अगर सोने से पहले सीड को ट्रीट किया जाता है उसे और बाद में 30-35 दिन का पाक होता है जब फसल होती है तब ट्राइकोडर्मा या तो इरंडी के खल के साथ या तो जो डीकम्पोस्ट फर्टिलाइजर FIMA फर्टिलाइजर है उसके साथ मिक्स करके जब उपलब्ध मात्रा में भेज बिन पानी हो जमीन में उसी समय दिया जाए और बाद में तो उसका हम रोग की मात्रा कम कर सकते हैं और उसकी वजह से जो किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सब जो ट्राइकोडर्मा वो सब आता है उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, 50 या 100 रुपए के करीब 1 kg आता है और एक एकड़ के लिए पर्याप्त है।
2: बिल्कुल, तो कम कीमत में कम लागत में अच्छा उत्पादन हासिल करने के कुछ आप लोगों ने यहाँ पर विशेष सलाह दी है, उपाय सुझाए हैं। मैं किसानों के पास जाना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। आप लोग मूंगफली की खेती करते हैं, किसी तरह की समस्या या चुनौती आप लोग के सामने होती है तो उसका निदान, उसका हल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर विशेषज्ञ मेहमान मौजूद है उसका हल देने के लिए। तो कौन सवाल पूछना चाहेंगे आप में से? जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और पूछे अपना सवाल।
5: मेरा नाम नारायण जी है, मैं गांव का रहने वाला किसान हूं और वर्षा ऋतु में हमारा मुख्य पाक मूंगफली है और मैं यहाँ 4 साल से सजीव खेती कर रहा हूँ, गाय आधारित सजीव खेती करता हूँ। जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत वो हमारे खेत पे ही तैयार करते हैं और नीम का ऑयल और नीम का अर्क ऐसे वो कोई कीटनाशक आता है और जब हम मूंगफली बोते हैं फावनी में तो उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है। मैं कई सालों से राष्ट्रीय मगफली संशोधन केंद्र से और कृषि यूनिवर्सिटी जूनागढ़ से जुड़ा हुआ हूँ। वो ये सभी लोग है उसका मार्गदर्शन के नीचे ही मैं खेती करता हूँ और मेरे गांव के सभी किसान भाइयों को उसका मार्गदर्शन देता हूँ। परेशानी में ये हम जे पाक तैयार करते हैं, मेरे पास भी है सजीव खेती का पाक, पर अभी कोई लेने के लिए कोई ये भी उसको क्या रिसर्च करने है कि भाई ये पेस्टिसाइड के रासायनिक खातर दवा वाला नहीं है। वो मैं अनुरोध करता हूँ कि ये यहाँ और किसानों को वो परीक्षण कराए और सरकारी तौर पर उसके खरीदी करे।
2: ठीक है, राधा कृष्ण जी क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे?
6: ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस आते हैं उसको पूर्ण रूप से उसका जो रिटर्न मिलना है तो उसका सर्टिफिकेशन का जरूरत है। अभी सर्टिफिकेशन का एजेंसीज तो वैसे कम है और फार्मर को इसके बारे में जानकारी का भी थोड़ा कमी है, तो सर्टिफाइंग एजेंसीज अगर बढ़ जाते हैं और इसका थोड़ा और इसका पॉपुलराइजेशन का जरूरत है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती अभी पिकअप हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आया है, उसके साथ साथ ये भी इम्प्रूव होगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे
2: जरूर। जी चलिए, कुछ और सवाल यहाँ पर जी।
7: मेरा नाम जंतीलाल वेकरिया है, हूँ भरवाड़ा गांव में रहवासी हूँ। मगफली उत्पादन में मेरी बड़ी समस्या है उकसुक का रोग। उकसुक का रोग आ गया बाद उसके इलाज अच्छी नहीं मिलते के उत्पादन के बहुत ज्यादा घाटी पड़ते, तो उकसुक का रोग के लिए क्या नया उपाय है ये हम जानता मांगते।
4: उकसुक का रोग मुख्यतः फफूंद से आता है, उसके लिए एस्परजिलस नाइजर करके फफूंद है जो काली देखने में काली होती है, उसकी शुरुआत तो बीज से ही होती है। वो पहले से किसान भाइयों को ही ख्याल रखना पड़ेगा, जब आप पूरा हार्वेस्ट करते हो तब जो पॉड जो थ्रेसर से थ्रेश करते हो उसी टाइम पॉड टूट जाता है, तो वो फफूंद है वो हवा में भी रहती है और जमीन में भी रहती है। उसके बीज है वो उस टाइम अगर जो डैमेज पॉड है जो भी उसका जो छिलका टूट गया उसी में वो फफूंद घुस जाती है, आपको देखने से पता नहीं चलेगा। वो आप उस वैसे बीज की आप बुआई करोगे तो वो सड़ जाएगा। दूसरा कि आप जो बीज है वो तो बारिश के समय सीधा मार्केट से खरीदते हो, आप गवर्नमेंट एजेंसी से या तो खुद गवर्नमेंट एजेंसी से खरीदो या खुद का बीज रखो, और खुद का बीज रखने में भी आपको तकेदारी रखनी पड़ेगी। छान के अच्छी क्वालिटी के बीज रखो और पूरा उसको पहले सूखने दो। 9% भेज से कम भेज होनी चाहिए, 9% के करीबी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भेज है और आपने गोडाउन में डाल दिया तो उसमें फफूंद आ सकती है। दूसरा, जहां आपने संग्रह किया है वो जगह में बिना भेज वाली मीन्स बिना मॉइस्चर होना नहीं चाहिए और अच्छी तरह से उसको कीड़े भी नहीं लगना चाहिए, उसको सही तरह से रखना है और टाइम टू टाइम उसको फ्यूमिगेशन करना है। और बाद में अच्छी तरह से छीलने के टाइम अगर आप ज़्यादा भेज दे देते हो और मॉइस्चर ज़्यादा देते हो तो भी हवा में से वो लग जाता है, तो उसको कम से कम भेज दे के छिले और अच्छे जो सोइंग के लिए सीड अलग करते हो हैंड पिकिंग करते हो तो उसमें जो भी सीड आपको डिसकलर मिले दूसरा कलर वाला भी मिले तो उसको भी निकाल दो, टूटे हुए सीड को भी निकाल दो। उसका अगर टेस्ट जो मीन्स और लाल कलर वाला जो छाल बोलते हैं वो भी अगर थोड़ा सा डैमेज हो गया तो उसको निकाल दो और अच्छे अच्छे क्वालिटी के सीड ही चुन के रखो और सेम साइज के रखो ताकि।
2: चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं जी, पूछिए।
8: मेंदड़ा तालुका ना बरवाड़ा गांव थी हूँ, खेतूत बोल रहा हूँ। हमारा गांव ने अंदर सौराष्ट्र ने अंदर जूनागढ़ जिला ने अंदर बहुत मुंडा से जीवात आती है, तो ये पान बहुत डोडवा खाई जाए, मगफली का अंदर दाणा खाई जाए, तो आने माटे हमारे क्यों संशोधन करूँ, कई दवा वापरवी, इनो इलाज छू। हमारे गई साल बहु मांडवी में मोटा नुकसान हो गया, मोटा नुकसान हो गया, कोई ઉત્પાદન નહીં મળ્યા, સારા પી બિગડી ગયા, સારા પણ ખાધા દેવાનું ઓળિયા. તો એના માટે હું જાણવા માંગુ કે આના માટે શું કરવાનું,
2: ક્યા વજહ હૈ ઇસકી ઓર ક્યા નિદાન.
9: મૂંગફલી મેં જો બતા રહે વો ઉસમે હિન્દી મેં ગિટાર બોલતે હૈ, ગુજરાતી મેં મુંડા બોલતે ઉસકો. તો વો જીવાત હૈ વો પૂરે સાલ તક જમીન મેં રહેતી હૈ, એક ફીટ સે જ્યાદા રહેતી હૈ. ઉસકા જો જીવન ચક્ર હૈ પૂરે સાલ, એક સાલ લગતા હૈ જીવન ચક્ર પૂરા કરને મેં. ઓર જબ પહેલી બારિશ હોતી હૈ તો પહેલી બારિશ કે બાદ હી ઉસકા જો પુખ્ત હૈ વો જમીન સે બહાર આતા હૈ. ઓર જો ખેત કે અગલ બગલ મેં જો પૌધે પેડ હૈ, ખેજડી હૈ, પીછે નીમ હૈ, બેર હૈ, ઓર દૂસરા જો પેડ હૈ ઉસકે ઉપર વો ઉસકા પુખ્ત હૈ, વો રાત ભર રહેતા હૈ, ચાર પાંચ દિન રહેતા હૈ, ઉસકે પૌધે પત્તિયાં ખાતા હૈ, ઓર વહાં પ્રજનન વો મેટિંગ કરને કે બાદ ચાર પાંચ દિન કે બાદ વો અર્લી સુબહ 5 to 8 o'clock કે બીચ ખેત મેં જાતા હૈ, ઓર 15-20 centimeter ગહેરાઈ તક વો આપણે ઈંડે છોડ દેતા હૈ, એક એક એક એક કરકે કભી એક સાથ દેતા હૈ.
2: ઉપાય ક્યા હૈ, ક્યા ક્યા નિદાન હૈ ઇસ સમસ્યા કા?
9: સમસ્યા કા નિદાન કે લિયે બારિશ હોને કે બાદ તુરંત 3 દિન તક ખેત કે અગલ બગલ વાળે પેડ પૌધો કો દવા છિટકાવ કરે. ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70.5 SL કરકે આતા હૈ, વો 1.5 ml પ્રતિ લિટર, યા તો કાર્બોક્સિલ વો આતા હૈ ઉસી કો સ્પ્રે, યા મોનોક્રોટોફોસ ઉસકો આપકો સ્પ્રે કરના પડેગા. ઓર શામ કે સમય વો લેમ્પ જલા કે, શામ કે સમય લેમ્પ જલા કે ઉસકે નીચે એક બડા સા બર્તન રખ કે ઉસમે પાણી ભર કે કેરોસીન યા મિટ્ટી કા તેલ જો કે કેરોસીન બોલતે હૈ ઉસી કો ડાલ કે રખના પડેગા, તાકિ વો જો જીવ હૈ વો રાત કો લાઇટ કો આકર્ષિત હોતા હૈ ઓર ઉસમે આકે ગિર કે મર જાયેગા. ઓર સભી કિસાનો કો યે સાથ સાથ મિલકે કરના પડેગા, એક દો કરેગા તો ઉસકા કંટ્રોલ નહીં હૈ. ઓર દૂસરા ઉસકા એક ફેરોમોન આતા હૈ, વો હર 15 square meter કે બીચ આપકો ઉસકો લગાના હૈ, તાકિ વો આકર્ષિત હો કે વહાં આયે ઓર ઓર ઉસે ઉસે હમ માર સકતે.
2: ઠીક હૈ, તો બડે પૈમાને પર જબ નુકસાન હો રહા હૈ તો બહેતર હૈ કે સભી કિસાન મિલકે ઇસકા ઉપાય કરે. કુછ ઓર સવાલ ઇધર આપ લોગ જો બેઠે હૈ કુછ કરના ચાહેંગે બતાએ અપને બારે મેં, જબ આપ મૂંગફલી કી ખેતી કરતે હૈ તો ઇસસે ક્યા આપ લોગો કો લાભ હોતા હૈ, ક્યા ઓર સવાલ પૂછના ચાહેંગે.
10: મેરા નામ સમીર વગાસિયા હૈ. હમ જો મૂંગફલી કી ખેતી કરતે હૈ ઉસકી જો લાગત આતી હૈ ઉસકા સમર્થન મૂલ્ય હમકો નહીં મિલતા. સરકાર જો યોજના ચલાતી હૈ 52 કી, ઉસકા લાભ કિસાનો કો કમ ઓર વ્યાપારી કો જ્યાદા મિલતા, ઇસકા ક્યા કારણ હૈ?
2: દલાલજી, યહાં પર આપસે જરૂર મેં યે જાનના ચાહુંગી કે સરકાર ને અભી સમર્થન મૂલ્ય બઢાયા ભી હૈ ઓર હમને દેખા હૈ કે દલહન કો કિસ તરહ સે સરકાર ને બઢાવા દિયા હૈ, વહાં પે ભી સમર્થન મૂલ્ય બઢાને કે સાથ સાથ બોનસ ભી દિયા હૈ. આપકો લગતા હૈ કે ઇસ તરહ કે ઉપાય તિલહની ફસલો કી જો ખેતી હૈ ઉસકો બઢાવા દેગી?
11: જ્યાં તક સમર્થન મૂલ્ય કા સવાલ હૈ, ભારત સરકાર હરેક જો ફસલ હોતી હૈ ઉસકા ન્યૂનતમ સમર્થન મૂલ્ય નિકાલતી હૈ, ઉસમે વૈજ્ઞાનિક જાતે હૈ ઓર જો CPC હમારી હૈ કોસ્ટ પ્રાઇસેસ વાલે, વો ઉસકા મૂલ્યાંકન કરતે હૈ, કિંમત નિકાલતે હૈ, ઉસકે બેસિસ કે ઉપર હમ લોગ જો MSP ઉસકી ડિટરમિન કરતે હૈ. અભી ઇસ બાર હમને જો બોનસ કો મિલા કે 4450 rupees ઇસકા MSP રખા હૈ. યે આપ જો બાત કહે રહે હૈ, યે કિસાન કહે રહે હૈ, યે બિલકુલ સહી હૈ. જબ ફસલ જ્યાદા આ જાતી હૈ તો જો જો ટ્રેડર હૈ વો મૂલ્ય ગિરા દેતા હૈ, તો ઉસ કેસ કે અંદર ભારત સરકાર ને કુછ એક એજન્સી નેફેડ ઓર યે જો હૈ સ્ટેટ વાલો સ્ટેટ કો ભી ચાહીએ કે ઇસકે અંદર જરા સહયોગ દે ઓર સમર્થન મૂલ્ય કે ઉપર વો ખરીદારી કરે.
2: ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણ, બતાએ હમેં કુછ એસે ઉપાય જિસસે કિસાનો કો ઓર જ્યાદા પ્રોત્સાહિત કિયા જા સકતા હૈ મૂંગફલી કી ખેતી કે લિયે.
6: કે તો જહાં તક પ્રોક્યોરમેન્ટ ઓર પ્રાઇસિંગ કા હૈ વો પોલિસી ઇશ્યુસ હૈ ઓર જો પ્રોક્યોરમેન્ટ હૈ સ્ટેટ ઓર નફેડ વગેરા કરતે હૈ કુછ કાફી હદ તક, લેકિન જો પ્રોડ્યુસ જ્યાદા હોતે હૈ ઉસ ટાઈમ પર ખાસ કરકે યે પ્રોબ્લેમ હોતે હૈ. ઓર જો હાઈલી રેમ્યુનરેટિવ જો એગ્રીકલ્ચર હૈ ઉસમે એક ઓપ્શન યે હૈ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કા, કુછ હદ તક ગુજરાત મેં ચલતે હૈ જો એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ એરિયા મેં હૈ યા કોઈ સ્પેસિફિક પર્પસ કે લિયે કોઈ ગ્રાઉન્ડ.

0: का जो पहले बताए गए थे। अफलाटोक्सिन का दो स्टेज में उसका प्रॉब्लम होता है, एक तो जब फसल उगाते हैं, दूसरा उसके बाद वो स्टोरिंग और प्रोसेस में। तो फसल उगाते हैं उसके लिए जो अच्छा एग्रीकल्चर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो पॉपुलराइज भी कर रहे हैं, वो करने से इसका जो मात्रा बहुत ही कम होता है या नील भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो स्टोरेज है, जैसे इसका ड्राइंग है, प्रोसेसिंग है, जैसे इसका शेलिंग का वेटिंग, वेट शेलिंग, ड्राई शेलिंग, उसी चीज़ों पर इसका फर्क पड़ता है। ये एक कॉम्पोजिट चीज है जो इसको फार्मर को और खेती को अलग कर सकते हैं और इंडस्ट्री को अलग कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये खेती और इंडस्ट्री मिलकर करना है। इसलिए मैंने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कोई कंपनी करते हैं तो ये दोनों चीजें साथ में ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर जाट, हमें बताएं, आप पौध संख्या को मेंटेन रखने की बात बता रहे थे, उस जानकारी को आप पूरी कीजिए, कैसे जो किसान है वो जो पौध संख्या है उसको बरकरार रख सकते हैं।
2: जी, जैसा कि मूंगफली में तीन प्रकार की जो किस्में होती है, एक होती है फैलने वाली, दूसरी अर्थ फैलने वाली, और तीसरी होती है बंच टाइप गुच्छे वाली। तो इसमें जो फैलने वाली है उसके अंदर हमारा जो रिकमेंडेशन है कि उसके अंदर जो 60 जो स्पेसिंग है 60x10 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से इसको इसमें बुआई करनी है। दूसरा है अर्ध फैलने वाली किस्में, तो उसकी 45x10 के हिसाब से बुआई करनी है, और उसकी पौध संख्या होनी चाहिए 2,64,000। और जो गुच्छे वाली है उसकी 30x10, उस हिसाब से 3,33,000 पौध संख्या पर हेक्टर में होनी चाहिए। लेकिन इस मूंगफली के अंदर एक तो क्या है कि जर्मिनेशन की समस्या है। आमतौर पे फील्ड में हम देखते हैं कि 75-80% ही जर्मिनेशन होता है जो बीज डालते हैं, तो उसकी वजह से जो पौध संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। दूसरा, मूंगफली के अंदर जो कोलर रोट आता है उसकी वजह से काफी प्लांट्स मर जाते हैं, तो उसकी वजह से और भी पौध संख्या कम हो जाती है। फिर इसके अंदर मूंगफली में जो बीज की साइज है वो काफी वेरी करती है।
1: अच्छा,
2: तो उससे अगर मान लो अगर बीज की साइज छोटी है तो सीड रेट कम हो जाएगी।
1: अच्छा,
2: और अगर बीज उसी वैरायटी का जो अगर दाना बड़ा है तो उसकी सीड रेट बढ़ जाएगी। तो किसान को चाहिए कि जो सीड साइज और जर्मिनेशन परसेंटेज कितना, ये दो बात को ध्यान में रखते हुए बीज की दर निर्धारित करें।
1: अच्छा,
2: तो अगर बुआई से पहले 5-7 दिन पहले आपके बीज में से थोड़े से बीज लेके और उसको जो न्यूज़पेपर होता है उसमें डाल के थोड़ा पानी डालें, और उसको आपको 48 या 60 घंटे के अंदर उसमें कितना जर्मिनेशन परसेंटेज आपको पता चल जाएगा, तो उस जर्मिनेशन के परसेंटेज के हिसाब से और सीड साइज के हिसाब से आप बीज दर का निर्धारित करके उचित जो पौध संख्या है वो खेत में रख सकते हैं। और अगर उचित पौध संख्या होगी तो उसी अनुपात में आपको उपज भी ज्यादा मिलेगी।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो मूंगफली के किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागत की हम बात करते हैं, खाद उर्वरक डालने की बात करते हैं, तो अंधाधुंध न दे करके जिसकी जरूरत हो उतनी ही मात्रा में हम उसका इस्तेमाल करें। इस दृष्टि से अगर देखें तो मूंगफली के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या बनवाना चाहिए, कितना जरूरी है?
3: जी बिल्कुल बनवाना चाहिए, क्योंकि सॉयल हेल्थ कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मूंगफली एक तिलहन फसल है
1: जी,
3: और इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए राइजोबियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है
1: जी।
3: तो जैसे जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनकी तुलना में इसमें नाइट्रोजन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। जनरली 25 किलो नाइट्रोजन 50 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम दें तो हम काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन खाद की उसका कंजम्पशन कम कर सकते हैं। तो सॉयल हेल्थ कार्ड हमने यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दिया है, और हमारी संस्थान की वजह से काफ़ी जो आसपास के गांव हैं उनके फार्मर्स को हमने सॉयल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किया है गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से। और इसमें से जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा भी हुआ है, उनको पता चल रहा है कि उनकी जो उनका जो फार्म है, उनके जो खेत हैं, उसकी फर्टिलिटी लेवल क्या है। और हमें हम ये भी बता रहे हैं कि आपको नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी है, फास्फोरस की मात्रा कम देनी है, और इतनी खाद देने से ही आपके लिए सफिशिएंट है। तो इस हिसाब से

0: भी फार्मर्स को पता चल रहा है कि हमें कितना खाद देना है, और उससे ज़्यादा हम नहीं दें तो हम जो हमारी खाद की पूर्ति भी कम कर सकते हैं और हमारी काफी सेविंग भी हो सकती है। तो ये दोनों तरफ से फार्मर्स
1: ये बात लागू होती है। ठीक है राधाकृष्ण जी, ये बताएं हमें कि बीज की बात अक्सर आई है, कई तरह की समस्याओं के निदान के तौर पर देखा हमने कि बीज अच्छी गुणवत्ता का हो ये बहुत जरूरी है, तो ऐसे में आप क्या सुझाव देते हैं किसानों को, बीज कहाँ से प्राप्त करें और बीज का जब चुनाव करें तो किन बातों का ध्यान वो रखें?
2: बीज जो है जहाँ तक संभावना है सख्यता है आप जो स्टेट का बीज का एजेंसी से खरीदिए, एक दूसरा अगर एक बार आप अच्छे वैरायटी का लिया है आप उसको आगे सीड के लिए जो रखना है उसको प्योरिटी से उसके साथ दूसरे मिलावट ना हो उस हिसाब से करिए और आगे उसको रखिए। ये जो मार्केट में जो आते हैं जो अलग अलग कंपनियों का उस सीड का जो है हमारे पास उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, ये कहाँ से बनाया है क्या बना है कैसे होगा इसके बारे में मैं पता नहीं है। तो जब आप कुछ सीड कंपनियों का भी चलता होगा उसमें अच्छा भी चलता होगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा जो आपके जो सीड जो सर्टिफिकेशन एजेंसी जो बीज निगम है या यूनिवर्सिटी है वहीं से खास करके सीड अपना खरीदिए ताकि आपको अच्छा सीड हमेशा मिले।
1: और किसान क्या बीज उत्पादन पर भी यहाँ पर करते हैं, गुजरात के जो किसान है
2: यहाँ करते हैं और उस पर हमने काफी तालीम भी दिया है किसानों को जी। हर साल हम तो दो तीन बैच को मिनिमम तो करते हैं अच्छा सीड कैसे बनाए और उसको कैसे स्टोर करें इसका हम ट्रेनिंग भी देते हैं।
3: किसान साथियों जैसा कि आपने सुना यहाँ पर ट्रेनिंग्स के माध्यम से भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कैसे नया बीज बनाया जा सकता है, साथ ही आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना और इन जानकारियों का सिलसिला आगे चलता रहेगा। उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छाबवा की आवाज। किसान साथियों, हम सुन रहे थे मूंगफली की खेती को लेकर, मूंगफली की खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों, चर्चा के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और मूंगफली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को।
1: चलती हूँ और अपना नाम बताएं और पूछें अपना सवाल।
2: कपिल वेकरिया मारु नाम। हवे सौथी वधारे प्रश्न मोटो ए है अफ्लाटोक्सिन जे फूग बराबर आपने जे मार्केटिंग में सौथी वधारे नड़े है, तो एक फूग क्यारे आवे, केटलो समय मांडवी सुकोवी, आ ते बधी खेडूतोने खरेखर एटली बधी जाण नथी, तो एक खेडूतोने जाण करे, एक ये प्रश्न है।
1: ठीक है, तो कौन जवाब देना चाहेंगे आप में से?
3: वो किसान जानना चाहता है कि जो अफ्लाटोक्सिन का प्रॉब्लम है, वो अफ्लाटोक्सिन क्या है, वो कैसे आती है, कब आती है और उसको मैनेज कैसे करना है। मैं तो बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि अफ्लाटोक्सिन एक एस्परजिलस फ्लेवस करके एक फफूंद आती है, उसकी वजह से लगता है। वो फफूंद जब लगता लग जाती है तो बीज में वो एक जहर बना देती है और जो खाने के लिए, उसके लग जाने के बाद खाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो वो न आए इसीलिए आपको पहले से ही जो आप खरपतवार करते हैं या तो इंटरकल्चरिंग करते हैं, तभी से किसानों को ख्याल रखना पड़ेगा कि जो पॉड है, मीन्स मूंगफली का जो पॉड है, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। वो जमीन में से भी आ सकती है और हवा में से भी वो फफूंद आ सकती है, तो पॉड डैमेज नहीं होना चाहिए। हार्वेस्टिंग के टाइम भी पॉड डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर डैमेज हुआ तो उसको तुरंत ही अलग करके मार्केट में बेच देना है। और फफूंद हार्वेस्टिंग के बाद,
1: आपका कहना है कि जो दाने हैं मूंगफली के, उसमें किसी तरह का नुकसान उसे नहीं होना चाहिए।
3: देखने से, देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें फफूंद लग गया है।
1: अच्छा,
3: बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा लेकिन अंदर वो जब लग जाता है तो वो अपने आप ही वो पॉइजन शुरू कर देता है।
1: ठीक,
3: तो उसको आने ही नहीं देना। या तो जब आप स्टोर करो, तो पहले से मैंने बता दिया था कि जो 9% से कम नमी होनी चाहिए तभी आप उसको स्टोर कर सकते, तब तक आपको फील्ड में उसको सुखाना है। और सुखाने के टाइम जो गोडाउन है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वो सब ख्याल रखना है। और बीज
1: बचाव ही जो है वो बेहतर उपाय है। चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। एक सवाल आप भी पूछना चाहते हैं?
4: हाँ, मगफली की खेती में हमने मगफली पाकते समय सफेद फूग आती है, उसका क्या कारण होता है ने उसका क्या इलाज है?
3: जो पाकने के समय आप बता रहे, वो पाकने के समय जब मूंगफली में ड्रॉट पानी की कमी आ जाती है और वो उसकी फफूंद है वो जमीन में ही रहती है या तो बीज से आती है, जो ड्रॉट ड्राई स्पेल मार देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ये जो फफूंद है वो ऑक्सीजन लविंग, उसको अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिला और ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो वो बढ़ सकती है। क्योंकि किसान हमारे यहाँ सौराष्ट्र के किसान ज़्यादातर इंटरकल्चरिंग करते हैं और मैंने देखा है कि कभी कभी तो 62 डेज तक इंटरकल्चरिंग करते हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि 50 दिन के बाद मूँगफली में इंटरकल्चरिंग न करे तो अच्छा है। और जब ड्राई स्पेल आता है तो फैला के पानी दे दे, और जैसे जमीन दबी रहेगी वैसे कम आएगी, और सोइंग के बाद आप उसे प्लेंकर चला के जमीन को दबा दे।
1: ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर जाट से मैं जानना चाहूंगी, जैसे बातचीत में बात आ रही है कि जो मूंगफली है उसमें उचित नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ऐसे में सिंचाई को लेकर हमें जरूर बताएं किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अंतराल होना चाहिए या फिर जल की जैसी उपलब्धता है इन क्षेत्रों में जहां पर मूंगफली की खेती होती है, ऐसे में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है?
5: जी, वैसे तो मूंगफली एक सूखा सहन करने वाली फसल है, लेकिन फिर भी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए हमें कुछ ऐसी फसल अवस्थाएं हैं उस समय पे पानी की कमी नहीं आनी चाहिए।
1: जी,
5: तो शुरू में तो जैसे फसल की बुआई है उस समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि उसका जो अंकुरण अच्छे से हो और हमें पौध संख्या सही मात्रा में मिले।
1: जी,
5: फिर उसके बाद में से फूल बनते हैं, फिर सुइयां बनते समय, फली बनते समय और दाना बनते समय, ये ऐसी अवस्थाएं हैं जब जमीन के अंदर जो मॉइस्चर है नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जिससे कि हमें ज्यादा उपज मिले। फिर जैसे इसमें ड्राई स्पेल जब बीच में सूखा आ जाता है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से हम अगर इसमें इरिगेशन देते हैं तो कम पानी में हम ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर इरिगेशन कर सकते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे कुछ और सवाल ले लेते हैं किसान भाइयों से, कुछ और पूछना चाहेंगे आप सवाल? जी आपने बताया था आपके पास और भी सवाल है, तो बता पूछिए अपना दूसरा सवाल।
2: जी आपने आगरी बात थी थोड़ी बार पहला कि तेल आपने आयात करव पड़े से बार थी અને અહીંયા મગફળીનો એરિયો ઘટતો જાય છે, એની પાછળના કારણો એવા કંઈક મને દેખાય છે કે ખાતર અને જંતુનાશક દવા બધું બહુ મોંઘું મળે છે, તો એના માટે સરકારને બે સોલ્યુશન કરવાની જરૂર છે. એક તો જે ગમે દુકાન માંડીને બેસી જાય, ગમે પ્રોડક્ટ લઈને બેસી જાય છે એ બંધ કરાવવું જોઈએ, અને જે એગ્રીકલ્ચરની અંદર ભણેલા વિદ્યાર્થીઓ જે અત્યારે એમનેમ રખડે છે, બેકાર બેઠા છે, એને એને લાયસન્સ આપી અને વ્યવસ્થિત દવાઓ પેસ્ટિસાઇડ જે મળે છે માર્કેટમાં, જે ખાતરો મળે છે એ બોગસ કંપનીના ન હોવા જોઈએ, એવું બધું સરકારે થોડુંક ધ્યાન રાખવું જરૂરી દેખાય છે મને.
3: ઇનકા સવાલ થા કે જો હમારે ગવર્નમેન્ટ બતા રહે, સભી એજન્સીઓ બતા રહે કે હમારા ઉત્પાદન કમ હો રહા હૈ, લાગત જ્યાદા લગ રહી હૈ, તો ઉસકી વજહ એક હૈ કે જો જીસકે પાસ નોલેજ નહીં હૈ એગ્રીકલ્ચર કા, વો લોગ દુકાન માંડ કે મીન્સ વો શોપ ખડા કરકે પેસ્ટિસાઇડ બેચતે હૈ, દવાઈયા બેચતે હૈ, ઓર કિસાનો કો કોઈ મિલતી જુલતી દવાઈયા દે રહે,
1: ઠીક હૈ,
3: તો ઉસકી વજહ સે જો કિસાનો કો લાગત જ્યાદા આ જાતી હૈ, તો ઉસકા સુજાવ હૈ કે ગવર્નમેન્ટ કોઈ એસા વો સુજાવ લગાએ કે જો બીએસસી એજી હૈ વો જિસકો નોલેજ હૈ ઉસી કોઈ લાઇસન્સ મિલે.
1: તો ઇન્હોને જો સવાલ પૂછા હૈ ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણન, ઉસકા ક્યા જવાબ દેના ચાહેંગે આપ?
6: ये जो एग्रीकल्चर इनपुट जो है खास करके केमिकल्स, वो जो है इसका एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसमें कई अच्छे कंपनियां भी है, नए कंपनियां भी है, जो लेस पॉपुलर कंपनियां भी है. अब इसमें जो फार्मर को ये जो मिलते हैं ज़्यादातर ये खरीदी होते हैं जो इनपुट ट्रेड डीलर जो बोलते हैं उसके बेसिस पर है. अभी उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इनपुट डीलर जानबूझ के भी कर सकते हैं, या दूसरा उनका अनजान होने के वजह से भी. तो अभी उसके लिए काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में इनपुट डीलर्स के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया है जो छुट्टी के दिन चलते हैं, जो इसके पूरा जानकारी देते हैं. इसके अलावा अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो इनपुट डीलर्स को इसको ट्रेनिंग देने के लिए. लेकिन ये जो खरीदी है इसमें एक और चीज़ भी है, किसान का जो क्रेडिट है उसे रिलेटेड भी है, तो उसमें भी इनको जो कुछ प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ट्रेडर जो बोलते हैं वो उसको खरीदना पड़ते हैं कई लोगों को. लेकिन इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने का काफी श्रम चल रहे हैं, और दूसरा इसमें कुछ पॉलिसी चेंज भी जहां तक मैं जानता हूं वो सरकार लाने वाला है.
1: जी बिल्कुल, तो सरकारी प्रयासों के बारे में हमें जरूर यहाँ पे दलाल जी बताएं, और साथ ही जो राष्ट्रीय तिलहन मिशन है सरकार का, ये जो बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इसके तहत किसानों को किस तरह की सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके बारे में भी हमें बताएं.
7: भारत में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम शुरू किया गया, NMOP शुरू किया गया 14-15 में. उससे पहले 13-14 का तिलन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने किसानों की मदद से 32.75 मिलियन टन तिलन फसलों की प्रोडक्शन हमारी हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है. उसके बाद जैसा कि राधाकृष्णन साहब ने बताया था कि ये एक, क्योंकि एक शुष्क एक कृषि के अंदर उगाने वाली फसल है, तो ये बहुत ज़्यादा उस पर बारिश पे डिपेंडेंट रहती है. 13-14 के बाद 14-15, 15-16 में बारिश कम रही और टाइम से नहीं आई, इसकी वजह से इसका एरिया घट गया, जो कि 28 मिलियन टन हेक्टर से वो गिर के 25-26 के करीब आ गया. उधर प्रोडक्टिविटी भी गिर गई, क्योंकि सूखा पड़ा तो प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता है वो कम हुई, जो कि 1168 से गिर के ये 968 आ गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारा कट के 25.25 मिलियन टन रहा. इसको रिकवर करने के लिए अभी 16-17 में हमारा फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जबकि हमारी उम्मीद है कि 32.10 मिलियन टन प्रोडक्शन होने की संभावना है.
1: जी.
7: एरिया हालांकि उतना ही है 26, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई है, जो कि 1225 किलो पर हेक्टर हो गई है. इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे जो तिलन की फसलों में उत्पादन है वो थोड़ा बढ़ा है.
1: जी.
7: इसके अलावा जो किसानों को मदद देने के लिए हम सरकार ने डेमोस्ट्रेशन जो है जो हमने चलाए हुए हैं इनपुट से लेके, क्योंकि जैसा कि अभी सभी और विशेषज्ञ बता रहे थे, सीड एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है.
1: जी, जी.
7: किसी भी फसल के लिए तो एक अच्छी किस्म की फसल का बीज होना बहुत जरूरी है, तो इसकी वितरण पे और इसकी प्रोडक्शन के ऊपर ये हमारे इस एनएमओपी प्रोग्राम के अंडर हम इसके अंदर असिस्टेंस देते हैं, सीड एजेंसीज को बढ़ावा देते हैं ताकि अच्छी किस्म की फसलों का बीज चेन के अंदर आ सके और किसानों को उपलब्ध हो सके
1: जी।
7: इनपुट के अंदर हम और इनको प्लांट प्रोटेक्शन की जो दवाइयां हैं, जैसा कि अभी कितने किसान पूछ रहे थे
1: जी, जी।
7: कि उनकी फसल के अंदर बीमारी लगती है, उसको उसका समाधान के लिए हम इसके लिए उसको अनुसंधान अनुदान देते हैं। इसके अलावा मैकेनाइजेशन के लिए
1: अच्छा।
7: हम लोग इरिगेशन के लिए पावर जो स्प्रे वगैरह पंप है उसके लिए भी अनुदान दिया जाता है। इन
1: ठीक है, यानी कि कई रूप में जो सरकार है वो मदद पहुंचाती है किसानों तक, ताकि वो जो मूंगफली की खेती या अन्य तिलहनी फसलों की खेती की तरफ उनका रुझान बढ़े।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ छवा की आवाज़।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिनकी जिंदगी खुद एक कहानी होती है। आज हमारे साथ हैं जयपुर की एक

0: बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। 73 इयर्स की उम्र में भी वो क्लासरूम में उतनी ही एनर्जी, उतने ही पैशन और उतने ही डेडिकेशन के साथ खड़ी रहने वाली एक एजुकेशनिस्ट हैं। फाउंडर प्रिंसिपल, मेंटर और हजारों बच्चों के फ्यूचर की एक आर्किटेक्ट, मिसेस नमिता गीर जी। तो चलिए जानते हैं नमिता जी को थोड़ा और सुनते हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग नमिता गीर जी के साथ। तो नमिता गीर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तनुषा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ होने से।
0: जी मैम, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपके लिए कि आप इतने एक्सपीरियंस से जो आप हेल करते हैं उसके बावजूद आपने हमें आपका समय दिया और आपने ये समय निकाला एसएन रेडियो के साथ इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स।
0: जी तो चलिए शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको ये जो 50 इयर्स का, लाइक 5 डेकेड्स का जो एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में, इतनी जनरेशंस आपके अंडर ग्रो हुई हैं, उनको आपने देखा है आपके सामने, लाइक यू नो वो सीड सो हुआ, वो कैसे यू नो ब्रांच आउट हुआ, कैसे वो पहले शर्ब बना फिर वो ट्री में कन्वर्ट हुआ, तो इट मस्ट हैव बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी टू विटनेस इतने सारे बच्चों की जर्नी ओवर द कोर्स ऑफ 50 लॉन्ग ईयर्स। तो जब आप आज जब हम बात कर रहे हैं तो कभी एक मोमेंट आता है, आई एम श्योर ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जब आप खुद के साथ बैठते होंगे और ये सोचते होंगे कि ये सफर किस तरह से शुरू हुआ था और कहाँ आपकी जर्नी शुरू हुई थी और आज आपको वो मोमेंट्स किस तरह से सुकून देते हैं, किस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं जब आप मुड़ के देखते हैं अपने इस ग्लोरियस सफर को।
1: जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे पैशन था शुरू से पढ़ाने का जी। बच्चे मुझे बहुत पसंद थे, फिर धीरे धीरे वो इतना ज्यादा लगाव हो गया बच्चों से कि फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़ी। बहुत वो मेरे एक अभिन्न अंग बन गए थे मेरे, मुझे बच्चों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं सोचती थी, रात में सोती थी तभी भी मैं सोचती, अच्छा उनको और किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उनके लिए चीज इजी बनाई जाए, कैसे बेटर हुए चीजें जो बच्चे समझे। तो जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत इस बात की खुशी होती है कि आज वो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, सब इतने अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में। अब कभी कहीं बाहर जाती हूँ, कोई बच्चे मिल जाते हैं, पहुंच होते हैं, बोलते मैम आपने पहचाना, आप नमिता मैम है ना, तो इतना अच्छा लगता है। वो मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने, वो मुझे भूले नहीं, तो कुछ तो कहीं मैंने कोई छाप छोड़ी होगी उनको, कहीं मैं समझ में आई होंगी। तो जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो और ज्यादा वो सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते मैम आपको हमारा नाम याद है, कहा इतने बच्चों को भूलती नहीं हो। और जब पेरेंट्स आके थैंक यू बोलते हैं, बोलते मैम आपकी बेसिक फाउंडेशन की वजह से आज हमारा बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा है, तो उससे ज्यादा खुशी और उससे ज्यादा बेटर रिवॉर्ड मुझे लगता है और किसी फील्ड में हो ही नहीं सकता है। आज बच्चों के मतलब आज वो माता पिता बन गए और वो जब अपने बच्चों को मेरे यहाँ एडमिशन किए जाते हैं तो मुझे, मैंने इनके बच्चों को भी मतलब इनको भी पढ़ाया है इनके बच्चों को, फिर वो इतने खुशी से अपने बच्चों को बताते हैं कि ये हमारी भी मैम थी, ये हमारी भी मैम है, तो बहुत खुशी मिलती है।
0: वाह, किस तरह से ये चेंज शुरू होता है, कैसे एक टीचर एक कैटलिस्ट होता है इतने बड़े चेंज का। और एक्चुअली जनरेशंस की जनरेशंस आपने पढ़ाई होंगी, जैसे आपने बताया कि अब वो भी पेरेंट्स बन गए और उनके बच्चे भी आपके स्कूल में आते हैं, तो मैम दिस इज सच एन अचीवमेंट एंड सल्यूट टू योर जर्नी। इतनी खूबसूरत जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड वंस अगेन हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए आप हमारे साथ तत्पर हैं आज के इस एपिसोड में। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत, आज फिर जीने की तमन्ना है, फिल्म गाइड।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक नमिता मैम। आगे चलते हैं मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी जी आगे चलते हैं मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे फाउंडेशंस क्रिएट किए स्कूल्स के लिए, आपने उन्हें सिर्फ मैनेज नहीं किया, उन्हें शुरुआत से बिल्ड किया, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यू हैव क्रिएटेड देम। तो जब आप एक स्कूल खड़ा करते हैं, जब आप उसके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, आप उसकी फाउंडेशनल स्टोन रखते हैं, तो बहुत इमोशनल और बहुत यू नो फिजिकल लेवल पे चैलेंजेस आते होंगे। तो सबसे बड़ा इमोशनल स्ट्रगल क्या रहा आपके लिए, और सबसे बड़ा यू नो एक फिजिकल एक सर्कमस्टेंशियल जो स्ट्रगल था वो क्या रहा? आई एम श्योर बहुत सारे, अनलेस आप अपनी फैमिली के फर्स्ट जनरेशन टीचर हैं या आपकी फैमिली में यू नो देयर हैव बीन टीचर्स इन योर पास्ट, दैट ऑल्सो इफ यू कैन एड्रेस दैट, वॉज इट अ लेगेसी जो आपने कैरी फॉरवर्ड करी, या आप फर्स्ट जनरेशन टीचर हैं अपनी फैमिली के, तो ये किस तरह से सफर बिल्ड हुआ, क्या स्ट्रगल्स थे इमोशनली एंड फिजिकली सर्कमस्टेंशियली, वो अगर हमारे साथ साझा करें।
1: मैं अपने फैमिली की फर्स्ट टीचर थी, और इनफैक्ट मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, इट वॉज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, राजपूत फैमिली, एंड बहुत पर्दा सिस्टम और सब था। और ये सोचा जाता था कि हाँ ठीक है, पढ़ ली, स्कूल कर लिया, उसके बाद में तो शादी करनी है। बट मेरे फादर को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। माई फादर वॉज अ वेरी फार साइटेड पर्सन, वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ू, मैं कुछ करूँ अपना, उनको बहुत उम्मीद थी मुझसे। वो शुरू में किसी ने सोचा नहीं था कि हाँ इस तरह का भी मैं कुछ करूंगी। और 1988 में जब मैंने अपना पहला स्कूल खोला, तो बहुत डिफिकल्ट था उस वक्त, मीन्स सब मुझे डिस्करेज कर रहे थे कि लाइक जॉब कर रहे हो, फिक्स सैलरी आ रही है, व्हाई डू यू वांट टू ओपन योर ओन स्कूल, क्या एडियर स्कूल चलेगा। मुझे लगता था कि नहीं, जब हम मेहनत करते हैं, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो मैं उनको दूंगी, मुझे मालूम है कि बच्चे बहुत इजीली सिलेक्ट होंगे। इट वॉज अ प्री स्कूल, सो उस वक्त सबका मन ये होता था कि हमारी डॉटर है तो एमजीडी में जाए, बेटा है सेंट जेवियर्स में जाए, एसएमएस में जाए, ये उन लोग का टारगेट होता था कि ये स्कूल में जाना है। तो मुझे लगता था जो मैं उनको दूंगी बच्चों को, तो डेफिनेटली मैं पीछे नहीं हट सकूंगी। मुझे मालूम था कि हाँ मुझे आगे ही जाऊंगी मैं,
0: राइट।
1: और फिजिकल चैलेंजेस की जैसे आपने बात की, तो मेरे मदर की हवेली में ही मैंने अपना फर्स्ट स्कूल खोला था। पुराने वो गोडाउन होते थे ग्राउंड फ्लोर पे, उनको सारा डन अप कराना, चूने का काम होता था, इजी था चूने वाले मिलना। मतलब ये सब तो बाद में सीमेंट और ये सब चीज चालू हो गई थी
0: बिल्कुल
1: टाइम पर, क्योंकि सब लोग डिस्करेज कर रहे थे, तो दे वांटेड टू सी कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। तो मैं मई जून की गर्मी में, जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था 1988 में, और मैं दोपहर में जाकर के, सुबह जाके मजदूर ला रही हूँ, चूने वाले के पास जा रही हूँ, सीमेंट वाले के पास जा रही हूँ, इलेक्ट्रिशियंस को बार बार मैं फोन कर रही हूँ, कार्पेंटर से फर्नीचर की तैयारी करवा रही हूँ। तो ये सब चीजें बहुत आसान नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट था। जब मन आप कोई चीज बना लें कि हाँ मुझे ये करना है, तो आई थिंक भगवान भी साथ देता है। और मैं इस चीज को बिलीव करती हूँ, जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको टीथिंग प्रॉब्लम हर उसमें आती है, हर मतलब तो कोई भी आप चीज स्टार्ट करेंगे तो सबके लिए ही है ये बात, ना स्टैंड ट्रू फॉर ऑल, टीथिंग प्रॉब्लम होती ही है, और इनसे घबरा कर अगर हम बैठ जाएं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर अ पार्ट ऑफ इट। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि क्यों, यू नो क्या गारंटी है। मैंने सबको फिर, क्योंकि जब बहुत अच्छा चला, मेरे हर बच्चे का एडमिशन जहाँ वो चाहते थे वो जाता था, तो दैट वाज लाइक यू नो सबको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी कभी।
0: बिल्कुल, आपका काम बोलता था जी।
1: हाँ, पैशन होना चाहिए, जो भी काम करें उसके लिए पैशन होना चाहिए, बेसिकली सबसे बहुत जरूरी चीज है।
0: राइट राइट। और सब लोग सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट देखते हैं, वो ग्लिटर देखते हैं, वो गोल्ड देखते हैं, बट उसके पीछे के जो स्ट्रगल्स हैं, जो उसके पीछे की मेहनत है और जो ग्राउंड वर्क है, जो लिटरली आपको एकदम निचोड़ के रख देता है, जो सिर्फ आपको पता है कि आप उसको कैसे गो थ्रू करते हैं, वो बहुत कम लोग देखते हैं। बट आई थिंक जैसे आपने कहा, डेडिकेशन, पैशन एंड कंसिस्टेंसी, कि मेरा ड्रीम है एंड आई हैव टू फुलफिल
1: बिल्कुल
0: इट। तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल मैम आपकी जर्नी में। अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, 50 लॉन्ग ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू एंड योर पर्सनैलिटी एंड योर डेडिकेशन। सो आगे चलते हैं मैम, आपने फाउंडेशनल लिटरेसी पे बहुत फोकस रखा है आपकी टीचिंग में, आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके लिए बहुत कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। तो किस हिसाब से आप जब एक 4 से 5 साल का बच्चा या उससे भी छोटा बच्चा जब आता है, तो उसकी पर्सनालिटी और उसके कॉन्फिडेंस को किस तरह से फाउंडेशनल लिटरेसी शेप कर सकती है, क्या फायदे होते हैं उसके, अगर आप थोड़ा सा एजुकेट करना चाहें तो?
1: तनुष्री जी, वो 4-5 साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों की जिंदगी में. उनके जो माइंड्स होते हैं, दे आर लाइक स्पॉन्ज. उसमें हम जितना उनको दे सकते हैं, हम लोग शायद दे ही नहीं पाते हैं उस उम्र में. दे आर केपेबल ऑफ लर्निंग 4 to 5 languages एट अ टाइम. इतना उनकी कैपेबिलिटी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है. आज हर जगह स्कूल खुल गए हैं, है ना, पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का, अगर जैसे पेरेंट्स का मन होता है कि हम हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करें, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द आवर,
0: करेक्ट,
1: इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. बाकी हर लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी पे भी मैंने बहुत फोकस किया कि हिंदी की मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए. तो मेरा कोई ठीक है, जो स्कूल में सिलेबस एक प्रिस्क्राइब होता है, बट मैं खेलने के माध्यम से, थ्रू प्ले वे मेथड ओनली, मैं उनको पढ़ाया करती थी, है ना. बिकॉज जब बच्चे को अगर आप बुक लेकर के आप पढ़ाना चाह रहे हो, सपोज प्रेपोजिशन करा रहे हैं, तो कोई सोचेगा प्री स्कूल के बच्चे को प्रेपोजिशन कौन कर पाता है. वो वहीं पे हम नींव उनकी मजबूत कर रहे हैं, हम वहीं पे उनको फाउंडेशन ले कर रहे हैं. तो खेलने खेलने में ट्रायल्स रख देते थे, जंप अक्रॉस, सो दे यू नो विथ योर एक्शन आप बता रहे हो कि अक्रॉस, सो दे नो कि हाँ इधर से उस तरफ चले जाएंगे, तो दैट इज अक्रॉस.
0: हाउ अमेजिंग.
1: यू नो टायर लिया, टायर में से अच्छा गो थ्रू दिस, टनल में से कम ऑन गो थ्रू दिस, तो उनको थ्रू, फिर ये वाली जो प्लेसमेंट है, पोजिशन है, ये पता होनी बहुत जरूरी है. सो इस तरह से खेल खेल में इन्होंने बहुत सुने, और फिर जब सीखते हैं खुद करके, तो वो कभी भूलते नहीं है. हाँ, रोट लर्निंग नहीं हुई है उनकी, उनको याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है. एक प्रिस्क्राइब कोर्स करवाना इज नॉट द क्राइटेरिया, बच्चों के लेवल पर जाकर उन्हें सिखाना पड़ता है. अच्छा डिफरेंट है, हाँ, वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिफरेंट वेज, वेरिड वेज, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सबसे इम्पोर्टेंट वो ही है.
0: जी, और उसके लिए खुद को कितना प्रिपेयर होना पड़ता है, खुद के पास इतने सारे मेथड्स होने पड़ेंगे डिवाइस करने के लिए, कितना दिमाग खुलना पड़ेगा और कितनी मेहनत बिहाइंड द सीन्स करनी पड़ेगी टू एक्चुअली कम अप विद दीज नोवस मेथड्स, जैसे कि आपने बताया कि अक्रॉस समझाने के लिए, प्रेपोजिशन समझाने के लिए, वो बच्चा शायद कभी नहीं भूलेगा अगर वो टायर से अक्रॉस और थ्रू का कॉन्सेप्ट समझ जाए, जो बहुत बहुत सारे लोग गलती करते हैं आज भी, जिनकी इंग्लिश अदरवाइज शायद बहुत अच्छी हो, बट देन प्रेपोजिशन रॉन्ग होते हैं हमारे. तो ये जो नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग है ऑफ थिंग्स, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द एक्सपीरियंस जो आपके पास है मैम. और अगर कोई मेथड, अगर आप कुछ नोवस मेथड हमारे साथ साझा करना चाहें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये कॉन्वर्जेशन, सो इफ वी कैन जस्ट एक्सटेंड दिस आंसर थोड़ा सा.
1: श्योर, हम लोग फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं बच्चों को, तो जैसे पार्क लेके जाते हैं, पेरेंट्स को जनरली लगता है कि नहीं पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट अ पिकनिक. हम उनको लेके जाते हैं तो उनको वहां पे एक्सप्लोर करने देते हैं कि अच्छा पिकअप डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स, तो देखते हैं शेप सबका अलग है, साइज सबका अलग है ना, मोस्ट लीव्स आर ग्रीन. तो ये जब साइंस में आगे क्लास 3 में 2 में पढ़ते हैं, उससे पहले इनको सब आ गया प्री स्कूल में कि लीव्स कैन बी डिफरेंट शेप्स, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, है ना, कौन गार्डन को लुक आफ्टर करता है, कौन पार्क को लुक आफ्टर कर रहा है, क्या इंसेक्ट्स है वहां पर, ट्री, हम बोलते हैं गो एंड हग द यू नो मेक अ लाइक सर्कल अराउंड द ट्री, अराउंड आ गया उनको है ना, हाँ ट्री ट्रंक, तो उनको ट्री ट्रंक मतलब यू नो वोकैबुलरी बिल्ड करना होता है बच्चों की. तो हम कहीं भी जाते हैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि जब ये बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक हम जिंदा हैं, हम कोई समय नहीं है सीखने का, हम पूरे समय सीखते हैं
0: बिल्कुल,
1: तो उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो जैसे हम कार में जा रहे हैं बच्चों को बोलते हैं ओके देखो दिस इज अ बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के प्रॉप रूट्स होते हैं. तो जब तक जब उनको देखते हैं तो अब बुक्स में पढ़ने से ये सब चीजें नहीं आती है,
0: नहीं आ सकती जी,
1: इतना अच्छे क्लियर मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता इतना.
0: बिल्कुल
1: तो इस तरह से मेरे फील्ड ट्रिप्स भी मेरा बहुत एक यू नो बड़ा वो रहा है, ले जाने से उनको बहुत सीखने को मिलता है. तो जब उनके कोर्स में जब ये सब चीजें आती हैं तब तक उनको ऑलरेडी पता होती है वो चीजें,
0: तो फिजिकल वर्ल्ड में उसको फील कर चुके
1: हैं. राइट. एंड आई थिंक टू फोनिक्स, तो फोनिक्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए. ABCD करके वो हर स्पेलिंग बच्चा नहीं लर्न कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल. जितना साउंड से हम करा सकते हैं, साइट वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड से नहीं रिलेशन है, तो वो हम बच्चे को खाली उतना सा ही लर्न करने का यू नो तो हम उनका बर्डन कम कर सकते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: हाँ जी, तो उससे क्या रीडिंग बहुत अच्छे से आती है. एंड व्हेन द चिल्ड्रन लिसन टू एनी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई और भाषा हो, जब वो सुनते हैं तो धीरे धीरे उनको समझ आने लगती है. जब समझ आएगी तो फिर वो बोलने की कोशिश करेंगे.
0: बिल्कुल.
1: व्हाट दे लैक इज वोकैबुलरी, तो हम वोकैबुलरी उनकी बिल्ड करते हैं. बच्चे को पानी पीना है, जनरली मदर्स बोलते हैं मम्मम. तो आप ये ऐसे वाले बेबी वर्ड्स अगर आप बच्चों को सिखा रहे हो तो आप बच्चों के लिए ठीक नहीं कर रहे हो.
0: बिल्कुल
1: है ना, उनको बोलना चाहिए वॉटर, वॉन्ट वॉटर. हिंदी तो वो सीख ही रहे हैं, अपने माहौल से सीख ही रहे हैं, अपने
0: एनवायरमेंट
1: में. आप कोई भी भाषा सिखाना चाह रहे हैं तो आप उसके वर्ड्स आप प्रोवाइड करेंगे बच्चों को.
0: करेक्ट. तो लेट देम ग्रो ऑन देम इजीली, एक एफर्टलेसली. जी
1: जी हाँ. और आई थिंक रीडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए. रीडिंग आ गई, समझ आ गया, तो लिखने में तो बच्चा कभी भी लिख लेगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल, सोच ही डेवलप होगी रीडिंग से.
1: जी हाँ, वोकैबुलरी बिल्ड होएगी, सोच डेवलप होएगी. कितना आप जानोगे, वर्ल्ड को जानोगे, पूरी दुनिया जानोगे आप. एंड जब छोटे छोटे वर्ड इनको केजी में, लोअर केजी में सब सिखा लेते हैं, आई टेल द पेरेंट्स होर्डिंग्स वगैरह इनको पढ़ने दीजिए. जब जाते हैं लेट देम रीड, यू नो दे शुड बी एबल टू एसोसिएट जो पढ़ रहे हैं उसका क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट.
0: करेक्ट. और वो क्या वहाँ क्यों है, वो बिलबोर्ड क्यों है. करेक्ट.
1: राइट राइट
0: करेक्ट.
1: मैथ्स हम जब सिखाते हैं तो उनको बोलते हैं कि नहीं आप बाजार जाते हैं बच्चे को, तो ये ना टिप्स हैं पेरेंट्स के लिए कि अगर वो मनी उनको हैंडल करने दें दे विल नो.
0: राइट.
1: अगर आप प्लस माइनस, अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं जानोगे आपको तो कोई भी चीट कर लेगा.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: इस तरह से
0: जी मैं कई बार ये सोचती हूँ, और बहुत हाल ही में मेरा कोई डिस्कशन भी हुआ था कि हम जब छोटे थे, लाइक आवर जनरेशन आई थिंक वाज द लास्ट जनरेशन जिनको घर से बाहर भेजा जाता था कि जाओ 1 किलो टमाटर लेके आओ, भाग के हम साइकिल पे जाते थे और अपनी शायद 1 रुपए की टॉफी के लालच में वो टमाटर लेके आते थे भरी दोपहरी में, आई मुझे याद है. और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता था, बस जाओ ये कहा जाता था. तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सचेंज होता था, चाहे वो सब्जी वाले से, चाहे वो वहां चार खड़े लोगों से, चाहे उनसे जो व्यवहार डेवलप होता है, एंड ऑफकोर्स जो मैथमेटिक्स आप लर्न, जिसकी आपने भी बात की, तो दीज आर सच स्मॉल थिंग्स जो हम अनोइंगली अनकॉन्शियसली जस्ट सेटल्स आपके अंदर और आप सीख जाते हैं. वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अब बिल्कुल यू नो एलियन होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. तो आई एम वेरी श्योर कि इस तरह के स्कूल्स और आपके स्कूल्स जैसे आपके प्री स्कूल्स जैसी जो लर्निंग है, मॉड्यूल्स हैं, उनसे बच्चे सच में वापस प्रैक्टिकल लेवल्स पे आ सकते हैं, वापस उन रूट लेवल प्रैक्टिसेस पे आ सकते हैं जो एक टाइम पे आम होती थी, वो दे वर अ वे ऑफ लिविंग. तो वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैम, इसी एहसास के साथ हम सुनते हैं हमारा अगला गीत, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, फिल्म इम्तिहान.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक नमिता मैम।
1: जी
0: मैम, आज भी आई डोंट वांट टू टेक योर एज, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे लिसनर्स आपकी एज जाने और इंस्पायर हों कि इस एज में भी कोई इतना पैशनेट हो सकता है, कोई इतना डेडिकेटेड हो सकता है टुवर्ड्स देयर कॉज। तो एट दिस एज ऑल्सो व्हेन यू आर 73, आप क्लासरूम टीचिंग उतने ही पैशन से करती हैं और खुद क्लास में जाती हैं, पढ़ाती हैं, तो आपको ये एनर्जी और ये लव फॉर टीचिंग आता कहाँ से? व्हाट इज योर फ्यूल? आई जस्ट वांट टू नो, क्या आपको ट्रिगर करता है, क्या आपको फ्यूल करता है, क्या आपको लुक फॉरवर्ड एवरी डे करने के लिए इंस्पायर करता है, वो अगर आप साझा करना चाहें। क्योंकि हम बहुत सारे इस जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं जो शायद 10 साल के अपने कॉर्पोरेट लाइफ में आफ्टर 10 ईयर्स दे गिव अप बिकॉज दे आर लाइक ब्रेन रॉट हो रहा है, या हम डाई आउट हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज डाई आउट हो जाती हैं और वी फील बर्नड आउट। सो दिस पैशन, द काइंड ऑफ पैशन दैट यू गेट फॉर टीचिंग, आज भी वो कहाँ से आता है? व्हाट इज योर, यू नो, व्हाट इज योर सोर्स, इफ वी कैन टैप इन टू दैट सोर्स?
1: My students give me that energy. I love that age group, you know, the preschoolers. मुझे इतने, मैं उनको देख के मेरा चेहरा खिल जाता है. सब थकान, सब टेंशन अगर कोई होती है, हर चीज दूर हो जाती है. उस वक्त आपको सिर्फ बच्चे दिखते हैं और उनसे जो खुशी मिलती है वो बयान नहीं कर पा सकती हूँ. और किसी और चीज में मिल ही नहीं सकती है. When they come, they hug me, you know. ऐसा दूर दूर नहीं रखती हूँ मैं बच्चों को. आई यू नो दे कम दे हग मी, दे टेल मी मैम आई लव यू. चिल्ड्रन हु पास आउट लाइक यू नो हु ग्रेजुएट फ्रॉम माय क्लास एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास इन ग्रेड वन एंड ऑल, व्हेन दे कम मैम आई एम मिसिंग यू, आई सेड आई एम ऑलवेज हियर. सो लाइक यू नो जब उनको टाइम मिलता है बीच बीच में आकर के, मैम यू नो दे लाइक टू पीप इन माय क्लास, कैन वी कम एंड हग यू, मैम आई लव यू. संडे सैटरडे या कोई छुट्टियां आती हैं, कोई कोई बच्चे आके मुझे मैम वी मिस्ड यू, मैम आई मिस्ड यू, ये मेरे लिए बहुत टॉनिक का काम करता है. और इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज यू नो इतने प्यारी एज होती है ये, इतनी अच्छी एज होती है.
0: बिल्कुल,
1: बहुत. हाँ, सो दिस मी लॉट ऑफ मोटिवेशन एनर्जी. जैसे पेरेंट्स जब आके बोलते हैं कि नहीं मैम हमें घर में कुछ नहीं कराना पड़ता, वो उसको ऑलरेडी आता है, जब स्कूल से आता है हम पूछते हैं तो उसको आता है. लगता है कि हाँ यू रियली नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स, और बच्चे के लिए और कितना हम और कर सकते हैं.
0: बिल्कुल, तो ये जो प्योरिटी है ये आपको भी यंग रखती है, आपको भी हमेशा फूल की तरह खिले रहने की एक इंस्पिरेशन देती है, बिकॉज आई थिंक चिल्ड्रन आर अ गार्डन ऑफ फ्लावर्स. तो मैम, कोई ऐसा इंस्टेंस, अगर कोई ऐसा वाक्या किसी एक बच्चे के साथ, या कोई एक स्पेशल मोमेंट अगर अभी हमसे बात करते करते आपके जहन में आ रहा है, जो आपके लिए बहुत स्पेशल चाइल्ड था, या कोई एक मोमेंट जो आपके साथ रह गया, जो आज भी आप सोचते हैं तो यू नो इट जस्ट आपको मूव कर देता है, अगर कुछ आप साझा करना चाहें.
1: हाँ, एक बच्चा था, मैंने अपनी कैथरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, मेरी सर्जरी हुई थी.
0: हाँ जी.
1: तो मैं उन दिनों क्लास नहीं थी, बट वहां पर एक अपने रूम में थी मैं, एंड उन्होंने मेरे सन से पूछा, डॉटर से पूछा कि व्हाई इज मैम नॉट कमिंग, व्हाई इज मैम, वेयर इज मैम. मैंने कहा मैम इज जस्ट, उनकी सर्जरी हुई है, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है. वो बच्चा घर जाकर के उसने अपने मम्मी को बोला मेरी मैम का ऑपरेशन हुआ है, वो तो ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं. हाँ, उसने अपना पिगी बैंक तोड़ा और नेक्स्ट डे वो पैसे उसकी मदर ने आके मुझे बताया कि मैम ही कॉल्ड मी अप और बोला कि मेरे लिए ना फ्लावर्स लेके आना, मैम को फ्लावर्स देने हैं मुझे. नेक्स्ट डे वो अपना पिगी बैंक का जितना भी पैसा था वो ही ब्रॉट इट टू मी मैम.
0: इमेजिन,
1: तो वो चीजें मैं भूल ही नहीं सकती हूँ.
0: वाओ, सच अ स्पेशल फीलिंग. कितने
1: मासूम,
0: बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत. आगे चलते हैं, आप खुद एक एक्स एमजीडियन हैं, बहुत अच्छी स्कूल से आपकी स्कूलिंग हुई है मैम, तो आपको क्या लगता है कि स्कूलिंग और टीचर्स का जो अंदर इफेक्ट होता है हमारे हमारे कॉन्फिडेंस पे, हमारी वैल्यू पे, हमारी फाउंडेशन पे, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? और इससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं आज, कि स्कूलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे वो उस स्कूलिंग से कॉम्प्रोमाइज ना करें अपने बच्चों के लिए? अगर कुछ मैसेज आप बताना चाहें और अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें, बीइंग एन एक्स एमजीडियन.
1: हर स्कूल में कोई ना कोई जरूर ऐसी टीचर्स होती हैं जो आप इंस्पायर करती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं कि हम उनके जैसे बने. वो कहीं ना कहीं हमारी इंस्पिरेशन बन जाती हैं. एंड पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि अगर टीचर उनके लिए कुछ बोल रही हैं, बच्चे को अगर कभी जरूरत होती है डांटने की भी, जब यू नो डिसिप्लिन जहां आता है, अगर हम डिसिप्लिन नहीं करेंगे, बिकॉज डिसिप्लिन एंड यू नो लव दे शुड गो हैंड इन हैंड.
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना. खाली प्यार प्यार करने से बच्चा, आप अगर सोचें कि बहुत अच्छा एक ह्यूमन बींग आप क्रिएट कर रहे हैं, नहीं.
0: बिल्कुल,
1: डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है. टाइम से आना, टाइम से पढ़ना, हर चीज का एक समय होना चाहिए. तो अगर पेरेंट को टीचर कुछ बोल रही है तो उनको समझना चाहिए कि हाँ, जो ये बता रही है वो एक्सपीरियंस से बता रही है.
0: करेक्ट.
1: इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट ऑल द टीचर्स. आई मीन टीचर बता रही है उनको, आप घर में रह रहे हैं, आप इतना अच्छा शायद नहीं कर, क्योंकि उनका प्रोफेशन है. क्योंकि वो ज्यादा जानती हैं कि हाँ क्या चीज आपके बच्चे के लिए हित करे, क्या चीज बेटर है आपके बच्चे के लिए.
0: राइट.
1: मतलब छोटी छोटी चीजें अगर मैं बोलूं, बिना दरवाजा, कभी पेरेंट्स दिखते हैं, दरवाजा बच्चे के लिए खोल देते हैं, नहीं, हम हिंडर कर रहे हैं उनका ग्रोथ.
0: करेक्ट.
1: बच्चे को अपने आप खोलना, हमें सिखाना चाहिए क्या करना चाहिए. और एक जो आजकल रोकते हैं पेरेंट्स के, नहीं, धूप में मत खिलाइए बच्चों को. धूप से विटामिन डी मिलता है. डॉक्टर्स बोलते हैं विटामिन डी की कमी है, धूप में बिठाओ, विटामिन डी कैप्सूल दो. तो इट इज बेटर कि बच्चा धूप में खेले. हम लोग सब खेले हैं, आप भी खेले हैं, हम भी खेले हैं. धूप तो उतनी थी, गर्मी तो उतनी थी.
0: करेक्ट.
1: जब मई जून में हम लोग नानी के घर जाते थे, कहीं जाते हैं, तो क्या हम घर में बैठे रहते थे एसी में, कूलर्स में? नहीं,
0: बिल्कुल नहीं. बिल्कुल.
1: जहाँ खेत खलियान थे, लोग खेत खलियानों में भी जाते थे, सब करते हैं. तो बच्चे को हमें स्ट्रांग बनाना है, हमें बच्चों को वीक नहीं बनाना है.
0: यस,
1: ये हम पे डिपेंड करता है.
0: वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम, वेरी इंपॉर्टेंट.
1: तो बच्चे को बहुत इतना ज्यादा पैम्पर ना करा जाए कि बच्चा आगे जाके तकलीफ बच्चे को ही मिलेगी.
0: करेक्ट. आप तो आप थोड़ी उसके सर्कमस्टेंसेस के साथ खड़े रहेंगे. जब वो एक्चुअल धूप में जाएगा तो उसको वो धूप सहनी पड़ेगी, जैसे हर इंसान को सहनी पड़ती है.
1: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल.
1: तो खाली धूप का मतलब कई चीजें होती है.
0: बिल्कुल.
1: तो हमें तो स्ट्रांग बनाना है. पेरेंट्स को यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे को स्ट्रांग बनाइए, वीक नहीं बनाइए कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये खेलने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए, उस वजह से करने दीजिए. कभी कोई चीज गिर जाती है, दूध फैल गया बच्चे से, डांटने की जगह उस वक्त हो गया, वो हो गई.
0: करेक्ट.
1: है ना, उसको खराब वो मत करिए, उसके मेमोरीज में के लिए खराब उसको वो मत करिए. उसको ठीक है, हो गया, चलो हम मिलकर के उसको साफ कर देते हैं.
0: करेक्ट.
1: तो एक वो आएगा कि हाँ कोई चीज ऐसे हो गई हम उसको. और हर इंसान गलती करता है.
0: करेक्ट.
1: हम भी करते हैं एज टीचर्स, पेरेंट्स भी करते हैं. तो बच्चे को ये भी सिखाना बहुत जरूरी है कि गलतियां होती हैं, बट दैट इज लाइफ, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स.
0: बिल्कुल.
1: पर वो मिस्टेक हम दोबारा ना करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए.
0: करेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ही खूबसूरत आपने एग्जाम्पल दिया, दूध गिर गया कोई बात नहीं, बट अब उसे ये सिखाएं कि अब इसको साफ हम मिलके करें. और कैसे अगर फ्यूचर में भी आपसे गलतियां होती हैं, चाहे लाइफ में, चाहे ये छोटी मोटी गलतियां, तो गलती हो गई, अब हो गई, बट उसको ठीक कैसे किया जाए, उससे वापस खड़ा कैसे हुआ जाए,
1: तो exactly.
0: वो सिखाना. और सिर्फ मॉली कॉडलिंग नहीं करना, जो आजकल बहुत ही अपेरेंट है, बहुत रैम्पेंट है पेरेंटिंग में. आई होप पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, वो इस बात की इम्पोर्टेंस समझें कि आपके चाइल्ड को रेजिलिएंट बनाने की कितनी जरूरत है, और ये कितना एक फाउंडेशनल एक यू नो एक शख्सियत है एक बच्चे

0: लगते हैं, अचीवमेंट्स लगते हैं, या मिक्स ऑफ बोथ? जी
1: आपको बहुत खुशी होती है जब आपके काम को सराहा जाता है, आपके काम को की वैल्यू समझ के कोई अगर आपके अप्रिशिएट करता है, आई थिंक दैट्स ह्यूमन नेचर, सबको अच्छा लगता है. बट यू यू नो आपके लिए और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक लगता है आपको कि ठीक है अब इससे भी ज्यादा अच्छा हमें करना है. एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. और जब पेरेंट्स आपके भरोसे बच्चे टीचर को भरोसे जब बच्चा छोड़ते हैं, टीचर की पूरी ड्यूटी होती है कि हर चीज वो अपने ऊपर लेके पूरी उसी के टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे का भविष्य को देखते हुए जो कर सके. तो अवार्ड जब मिलता है तो उसे रिकग्निशन है, ठीक है आपने किया, आपको मिला उसका रिवॉर्ड. पर सबसे जैसे मैंने पहले बताया, जब पेरेंट्स खुश होके जब बताते हैं अपने बच्चे के कि नहीं इट इज बिकॉज ऑफ यू, तो वो उससे बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो सकता है. जब बच्चे आपको पहचान करके और वापस से आपको आके यू नो दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू यू नो कीप इन टच विथ यू बड़े होने के बाद में भी, दैट इज नो ये और बहुत बड़े रिवॉर्ड है. तो ये ज्यादा प्रेशियस है. बट यस, जब आपका वर्क रिकग्नाइज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, तो यू फील वेरी नाइस.
0: राइट वेरी लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू मैम जी. तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास के साथ, इन्हीं प्यारी बातों के बीच हम सुनेंगे हमारा अगला रेजिलियंट गीत, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, क्रांति.

0: मैम आपने बच्चों को इंग्लिश और हिंदी फ्लुएंटली बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उनका डिक्शन ठीक किया। तो अब आपके हिसाब से जब एक टीचर से सब्जेक्ट सिखाता है, विजिबली जब एक टीचर उस सब्जेक्ट के साथ साथ वैल्यूज ऑफ लाइफ सिखाता है, क्योंकि पहले जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस, जिससे हम बहुत सारे एक्चुअल वैल्यूज लेसन वाइज सीखते थे और शायद कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो अब्सॉर्ब होते थे। आज के जमाने में कितना डिफरेंस है उसमें कि जब टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट लर्निंग करता है, सब्जेक्ट डिलीवर करता है बच्चे को, बट साथ में वो जो वैल्यू सिस्टम है रीइन्फोर्स करना, उसका खुद पे यकीन डेवलप करना, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उन सब पे जब एक टीचर काम करे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंज कैटलाइज हो सकता है और कितना जरूरी है वो आज के जमाने में, जब हम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे मॉरल साइंस एनी मोर, बट इट इज इम्पोर्टेंट नन द लेस आई थिंक। सो अगर आप इस पे
1: एब्सोल्युटली,
0: हमारे व्यूज दें। जी
1: वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट है,
0: जी
1: बिकॉज कॉन्फिडेंस आपको आगे लाइफ में बहुत वही हेल्प करेगा।
0: राइट
1: इंग्लिश हिंदी मतलब लैंग्वेजेस यहाँ पे फिर आकर के इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएंगी, जो जितना आपका कॉन्फिडेंस आपका इम्पोर्टेंट रहता है। हर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो, तो टीचर शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स डेफिनेटली।
0: राइट राइट
1: हाँ जी, और ये वैल्यूज की जब हम बात करते हैं तो जब मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है कि टीचर को उसमें बुक से पढ़ाने की मॉरल साइंस की जरूरत नहीं है। रोज जो हम चीजें होती हैं उसी में अगर हम रोज बताएं, टीचर्स के पास में बच्चा कोई काम हो गया खत्म, कोई नेक्स्ट पीरियड के लिए वेट करने, तो अगर 5 मिनट भी होते हैं, 2 मिनट भी होते हैं, हम उस वक्त क्यों नहीं उनसे अच्छी बातें कर सकते हैं, क्यों नहीं हम उनसे इन बारे में बातें में इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: ना हम जब उनको बोलते हैं कि हाँ कोई बच्चा सच बोल रहा है, दैट इज वेरी गुड,
0: बिल्कुल
1: डजंट मैटर। जब ये लोग जब डिक्टेशन वगैरह दिया जाता है, कुछ काम दिया जाता है, तो आई ऑलवेज टेल देम कि लाइक नहीं, चीटिंग नहीं करेंगे, डजंट मैटर इफ इट इज रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली ओके,
0: करेक्ट
1: क्योंकि रॉन्ग होएगा तो हमें पता चलेगा कि ठीक है हमको ये नहीं आता है, हम उसको दोबारा लर्न करेंगे।
0: करेक्ट
1: पर अगर चीटिंग, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, तो ये अगर हम यहीं से बिल्ड करेंगे कि नो चीटिंग इज रॉन्ग,
0: राइट
1: है ना, सच बोलना है, डजंट मैटर क्या होएगा, आपको गुस्सा करेगा कोई, कोई बात नहीं है, हम क्योंकि हमने गलती की है तो हमें थोड़ा गुस्सा भी बेर करना पड़ सकता है कभी,
0: राइट
1: और हमें हाँ, तो वो चीज उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस होएगा तो आप लाइफ में सच भी बोलेंगे, राइट।
0: बिल्कुल
1: एंड हाँ, तो ये चीजें तो बहुत जरूरी है, बेझिझक अपनी बात कह सकें वो बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें।
1: पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें अपना।
0: जी,
1: जी
0: बहुत ही सुंदर मैम। अब मैं हमारे आखिरी सवाल और आखिरी सेगमेंट की तरफ जाऊंगी, जहां ऑलरेडी आपने बहुत सारी सीख हमारे लिसनर्स के साथ साझा की है, बहुत सारी बातें हमने ऐसी की हैं जिनसे बहुत सारी चीजों का एक सार समझ आया है, एक तरीका समझ आया है, एक एक रास्ता आपने हमें दिखाया है। इसी के साथ अगर एंड में कोई प्रैक्टिकल मैसेज अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए, जो अभी नए पेरेंट्स हैं या नए टीचर्स हैं जो इस फील्ड में कदम रख रहे हैं, उनके लिए
1: जी
0: अगर आप कोई मैसेज देना चाहें जिससे वो बच्चों को इमोशनली सिक्योर, कॉन्फिडेंट और काइंड चिल्ड्रन बना सकें, तो वो क्या
1: जी
0: होगा?
1: तो आज के पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी, टीचर्स को यही कहना चाहूंगी, स्पेशली पेरेंट्स को, अभी बच्चों को फोन और टीवी से दूर रखें, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दें, फोन अपनी जगह नहीं ले सकते, वो उनकी जगह, पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकते, ना ही एक्सपेंसिव टॉयज उनकी जगह ले सकते हैं, उनके साथ खेलिए, क्योंकि बचपन बार बार में नहीं आएगा, उनको कहानियां सुनाइए, स्टोरी बुक्स खरीद के दीजिए, टॉयज खरीदने की जगह, टैबलेट्स खरीदने की, क्लास 2-3 में मैम आई हैव गॉट अ टैबलेट, माई फादर्स गिव मी अ टैबलेट, नॉट रिक्वायर्ड, तो रॉन्ग थिंग्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो चला गया, इफ इट इज लॉस्ट इट विल नेवर कम बैक अगेन, प्यार की जगह प्यार दीजिए, बट एट द सेम टाइम लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इतना मत पैम्पर कीजिए, क्योंकि सही गलत सब चीज को हम सही माने, है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ना, एंड डोंट से नेगेटिव थिंग्स टू द चिल्ड्रन, वेदर इट्स टीचर्स और पेरेंट्स, डोंट से नेगेटिव थिंग्स टू द चिल्ड्रन और क्रिटिसाइज देम, एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देम,
0: राइट
1: स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देम,
0: राइट
1: बिकॉज अगर हम बार बार मैं बच्चे को बोलूंगी ये बेवकूफ है या वॉट एवर, वो बच्चे के दिमाग में बैठा जाएगा, ये बोलते नहीं मैम ये सुनता ही नहीं है, तो वो नहीं सुनेगा। आप जब बार बार मैं उसको बोलूंगी ये सुनता ही नहीं है, ये बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये नमस्ते नहीं करता है, आप करेंगे वो आपको देख करके जरूर फॉलो करेंगे, आपके बोलने से नहीं करेंगे, पर आपके जो आप जो करेंगे वो उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे वो।
0: Absolutely. बहुत कॉमनली मैं भी ये सुनती हूँ, ये सुनता ही नहीं है, तो हमेशा वंडर करती हूँ कि ये किस तरह की माँ है जो अपने बच्चे के सामने ये बोल रही कि मेरी सुनता नहीं है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं एज अ पेरेंट, तो बहुत दुख होता है
1: उनको। एक्चुअली जो मैं देख रही हूँ बहुत टाइम्स बहुत समय से तो ये देख रही हूँ कि मदर्स चाहती हैं कि नहीं फादर का डर होए, क्यों? जब आपके सामने बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो आप अपने लेवल पे बात करिए,
0: बिल्कुल
1: है ना, फादर अपने लेवल पे बात करेंगे, टीचर अगर को कुछ कहना है नहीं मैं टीचर का डर बेटा आज मैं तुम्हारे टीचर को बोल दूंगी, मैं स्कूल में बोल दूंगी, क्यों
0: क्यों
1: क्यों,
0: बिल्कुल
1: आपके सामने गलत कर रहा है आप उसको चेक करिए, इट इज नॉट रॉन्ग एंड द चाइल्ड इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। जब बड़ा हो जाएगा जब समझ आ जाएगी बच्चा जानेगा कि हाँ मेरे मदर ने मुझे चेक किया,
0: करेक्ट,
1: मैं गलत था, मदर ने मुझे थप्पड़ मारा,
0: करेक्ट,
1: दैट इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप,
0: करेक्ट, वरना गलत बच्चा जी जी
1: गलत नहीं है। अगर कोई चीज के लिए हमें बहुत जोर से डांटना पड़े बच्चा रोए, ठीक है कोई बात नहीं है,
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वो भी एक लर्निंग है, प्रोसेस है,
1: दैट इज ऑल्सो लर्निंग, बिल्कुल
0: राइट राइट,
1: बट क्रिटिसाइज कभी भी ना करें बच्चे को, बच्चे के सामने तो कभी भी ना करें, अगर कोई प्रॉब्लम्स है टीचर और पेरेंट मिलकर के सुलझाएं, है ना, और बहुत जरूरी है कि टीचर से बराबर कांटेक्ट रखें पेरेंट्स, ऐसे नहीं पेरेंट टीचर मीट में गए तो बस, वो नहीं, जब अगर कोई प्रॉब्लम है इमीडिएटली जाएं पेरेंट टीचर से बात करें, टीचर को कोई प्रॉब्लम है टीचर पेरेंट से बात करें, बिकॉज दोनों का मकसद तो एक ही है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पेरेंट चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, टीचर भी चाहती है मेरा बच्चा, दोनों के लिए बच्चा तो उनका अपना है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसके लिए मेरा बच्चा है, टीचर के लिए भी मेरा बच्चा है, तो दोनों एक ही उस पर जब फोकस कर रहे हैं तो बच्चे को तो अच्छा होना ही है जब मिलकर के करेंगे,
0: बिल्कुल, और जब ये इतना क्लियर और यू नो स्मूथ कम्युनिकेशन रहेगा इंस्टेड ऑफ वन पीटीएम मीटिंग जैसे आपने बताया, जी
1: जी हाँ, तो कभी भी कोई दिक्कत होती है साथ बात करें, और जब तीनों मिलकर के करते हैं उस चीज को, बच्चा पेरेंट एंड द चाइल्ड, चाइल्ड टीचर एंड द पेरेंट, तो 100% द चाइल्ड इज गोइंग टू एक्सेल, द चाइल्ड इज गोइंग टू डू वंडर्स, गारंटीड मैं बोलती हूँ ये चीज,
0: राइट,
1: अगर तीनों मिलकर करेंगे हो ही नहीं सकता है कि बच्चा कमजोर हो जाए,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एक कड़ी कमजोर रहेगी इफेक्ट बच्चे पे आएगा,
0: राइट राइट, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं आपके बच्चों से मिल पाती, बिकॉज आई कैन नॉट इमेजिन हाउ अमेजिंग किड्स यू मस्ट हैव रेज्ड मैम, सच अ ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस, इतना इवॉल्व्ड, इतना विजनरी थॉट प्रोसेस है आपका, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी सटीक और इतनी गहरी बातें साझा करने के लिए, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ एंड आई एको ऑल द थॉट, आई विश ये कॉन्वर्जेशन थोड़ी और चला सकती मैं और थोड़ी और बातें कर सकती, बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बट देन समय बलवान है और समय के साथ हमें हमारा शो अब वाइंड अप करना पड़ेगा, तो थैंक यू सो मच नमिता मैम, अगर आपके कोई एंडिंग थॉट्स हैं तो, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू टू हैव दिस विजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम,
1: थैंक यू तनुषा जी, थैंक यू सब व्यूअर्स को, थैंक यू
0: जी,
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी देयर, थैंक यू
0: जी जी, तो दोस्तों नमिता जी से आज बात करके हमने ये एक्सपीरियंस किया कि रोशनी होती कैसी है, एक रोशनी जो दूसरों को इतना रास्ता दिखाए कि उनका रास्ता आसान हो जाए और जीवन बन जाए, जीवन बदल जाए, टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो जिंदगियां गढ़ते हैं, तो दोस्तों मैं हूं आपकी आरजे आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, मिलूंगी आपसे फिर से एक नए सफर के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के संग, नमस्कार।
2: दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक था भिखारी। रेलवे में सफर करते हुए भीख मांगने के दौरान एक बार एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर बढ़िया पैसा मिल जाएगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, अरे यार तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे पाऊं। सेठ बोला, देखो जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं भाई। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुमको बदले में कुछ दे पाऊंगा। तभी स्टेशन आ गया जहां पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचता रहा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे तो पाता नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा, समझ नहीं आ रही बात। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि चलो जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ देगा जरूर। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल उठ गया कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में भला क्या दे देगा दूसरे को। ये बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था वो, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे, जंगली फूल थे। उसने सोचा, अच्छा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। तो उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिन बीते, उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे भीख देते ही रहते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो गए तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उन्हें दिए। इस सेठ को यह बात बड़ी पसंद आई। सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल देगा। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर हो सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक साल गुजर गया।
उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम लोग दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूं कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से बस दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है, मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। हमारे भारतीय संस्कृति में शायद इसीलिए खुद को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, और समझने की बात यह है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तब भी हमें कुछ मिलता है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, यदि लोग गलतियों से सबक लेते हैं तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की। आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया है मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है? हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

मैं बचपन से ही अपने से बड़ी उम्र के लड़कों और लफंगों के साथ रहा। मैं महज 7 साल का ही तो था, लेकिन तकरीबन जवान हो चुके लड़कों से मेरी दोस्ती रही। उनके साथ ही क्रिकेट खेला, अखाड़ों में कुश्ती लड़ी, वर्जिश की। अपने उस्ताद के पैरों और पीठ पर सरसों का तेल मला, कुछ दाव लगाने सीखे और फिर उस्ताद के कहने पर पास के गांव में लगने वाले मेले में आयोजित दंगल में भाग लेने जाता था। उन दिनों 3 रंगों की लंगोट हुआ करती थी, लाल, सफेद और काली। उन 3 रंगों में से मैंने अपने लिए लाल रंग की लंगोट चुनी। लफंगों के साथ जंगल में खूब भटका, ज्यादातर दोपहरें पेड़ों पर गुजारी, कबूतरों के पीछे भागा, तीतर बटेर का पीछा किया, उन्हें कीटनाशक DDT पाउडर खिलाकर मारा, फिर लकड़ी पर सेक के खाया। यही वो दिन थे जब मैंने बीड़ी पीना सीखा, कभी कभी सिगरेट, फिर धीमे धीमे गांव की अंधेरी गलियों में शराब पीना सीखा। देर रात तक गांव की अंधेरी गलियों में बैठकर मैं ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे धुएं के छल्ले बनते हैं, बादलों का धुएं से क्या संबंध है। शायद यहीं से कविताओं ने मेरे भीतर जगह बनानी शुरू की होगी, लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि कविता भी कोई चीज होती है। हालांकि अब भी मुझे नहीं पता कि कविता क्या होती है, लेकिन मैं उसे बार बार लिखकर समझने की कोशिश करता रहता हूं। मैं अब तक वो कविता नहीं लिख पाया हूं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। खैर, मैं असल कहानी पर आता हूं। तो उन दिनों उस नाजुक उम्र में मैंने शराब, सिगरेट और कुश्ती जैसी सारी सख्त चीजें की। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त नहीं की जाना चाहिए थी, लेकिन उम्र हमेशा मुझे अपने से आगे की ओर ही धकेलती रही। मैं उन दिनों जंगल, घास, फूल, कांटे, गायें, बेल, तालाब, कुओं और फसलों की संगत में रहता था। मुझे लगता था एक दिन इनमें से ही कुछ बन जाऊंगा। मैं किसी दिन घास बन जाऊंगा और हवा के साथ रहूंगा। कभी लगता मैं कोई कुआं हो सकता हूं जिसका पानी खेतों में जाएगा। कई बार सोचता था कि हो सकता है मैं बड़ा होकर कोई फूल बन जाऊं जो किसी दिन किसी देवता के सर पर रखा जाऊं, या कोई सुंदर स्त्री के बालों के जूड़े में ठूंस दिया जाऊं। खुले आसमान के नीचे मैं अपने घर की टीन की चादरों पर सोए हुए इन्हीं सारी कल्पनाओं में खोया रहता था। कभी आसमान का तारा बन जाता तो कभी जंगल का कोई कांटा। फिर एक दिन मैंने अपने पुरखों से सुना कि मरे हुए लोगों का पेट भरने और उनकी प्यास बुझाने के लिए कौवे छतों पर आते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था और नाम भी उसका था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की 3 बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर

पर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी, ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा। ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई। वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की 3 बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में खच्चर वाला आ गया दौड़ता हुआ और खच्चर को मरा पड़ा देखकर हाय तौबा मचाने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत ले आया। दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, बड़ा गरीब हूं। किसी तरह इस खच्चर पर माल लादकर और उसके किराए के पैसों से पेट पालता था। अब खच्चर तो मर गया, अब इसका दाम कौन देगा? राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्या करें अब इसका? मंत्री ने कहा, महाराज आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना, देखिए यही है भेड़िया धसान। जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब? राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों, खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब के बारे में हम बात करेंगे। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। हो जाए उनके ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम करके 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने एक्टिंग और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई थी। उनका अपना स्टाइल था। महमूद के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात तो ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की, उनकी एक्टिंग की कॉपी करने की कोशिश की। यहां तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी पात्र की कॉपी करने की कोशिश की। आइए सुने इनकी फिल्म का एक गीत।

साहब की खासियत ये थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोट पोट कर सकते थे, उतने ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुला भी सकते थे। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

महमूद जी अभिनेता मुमताज अली के बेटे थे। यूं तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई काम किए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की ट्रेनिंग भी दी थी। आइए उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

0: हर कलाकार ही की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने कई सालों तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय कॉमेडी से ओतप्रोत किरदारों को करने में ज्यादा मजा आता था, जिसे दर्शकों के बीच भी खासा पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। बड़ी मजेदार बात यह है कि भूत बंगला फिल्म में इनका डांस बेहद मशहूर हुआ। आइए दोस्तों सुने यही गीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम

उदास रहना।

0: 1974 में इन्होंने फिल्म कुमारा बाप का भी निर्देशन किया, जिस फिल्म ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया और बहुत रुलाया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।
1: दुनिया, अरे किधर है रे तू?

0: माजी घासले दाल को फूक डालो ना, नीचे से माचिस की कांडी लाओ क्या, अपने हाथ में खाना बना को मुझे खिलाओ ना। अरे मेरी रानी, अरे चुनिया, अरे नादारी दू, अरे खेतरी, अरे माची मिली, अरे वापस आ, अरे पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट।
1: महमूद ने कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हमजोली में नकल कर दर्शकों को हंसा हंसा कर खूब लोटपोट किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीत में कॉमेडी को जन्म दिया। आइए हो जाए यही गीत।

ಯ ಕಚತುರ ನಾರ ಅಮಚೋ.

0: ఏక పేరైనా గోళా బొల్లా చతుర బొల్లా
1: ఏక చతుర నారక.

एक नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि वे नए लोगों को काम देने का पूरा मौका देते थे। उन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरा। आइए सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

0: नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

0: पर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे।
0: सच भाई,

ಮಾಮಾ ಸರಿಗಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ನಿ ಪಾಪ ಮಾಮಾ ಓ ಮಾಮಾ.

0: 어마어마.
1: महमूद ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को, खास करके बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को आईएस जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते।

0: अरमान।
1: महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आइए दोस्तों, इनकी ही फिल्म का एक और फड़कता हुआ गीत सुनते हैं।
0: ओ, हो, हो, हो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी जी की फिल्म का ये गीत।

हेमा मालिनी जी की शादी बॉलीवुड के मैचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल।

सुषमा मालिनी जी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। रुपहले पर्दे पर हेमा ने पहली बार एक डांसर के रूप में एंट्री ली। एक तेलुगु फिल्म में हेमा ने एक डांस में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म निर्माताओं को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस तरह 4 साल के संघर्ष के बाद हेमा साउथ इंडिया फिल्मों में हिट नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें वो दिन भी देखना पड़ा जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहां तक कह दिया कि उनमें स्टार अपील है ही नहीं। चलिए दोस्तों, उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

हेमा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया और कहा कि आप में स्टार अपील है ही नहीं। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें

हिमा की खूबसूरती और डांस टैलेंट ने हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में एंट्री दी। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों को उसकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। आइए दोस्तों सुने उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया इसी नाम का ये गीत।

धीरे धीरे हेमा का अट्रैक्शन बढ़ता गया और हिंदी फिल्म दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूचियों में सबसे ऊपर आ गया। लगभग 30 साल तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू सभी बाकी अभिनेत्रियों पर हावी रहा। आइए सुने उनकी फिल्म का गीत।

हेमा जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता और गीता, प्रेम नगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा वगैरह वगैरह। पेश है उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

हेमा मालिनी 1999 में राजनीति में उतर गईं, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। वो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी फिल्म का एक और की

0: दोस्तों हिमा को वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी। पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: हंसो मत, बोलो

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार, आदाब और एक बेहद हसीन और खूबसूरत शाम आप सबके नाम। मैं हूं आरती रॉय, 90.8 FM के सुरमई से आसमान पर आप सुन रहे हैं रेडियो SN और रेडियो तांतिया भील। और शुरू हो चुका है आपके दिलों की धड़कनों को छूने वाला सफर, अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, कभी कभी दिन भर की थकन के बाद जब हम अकेले बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज अधूरी सी है। वो अधूरापन और कुछ नहीं बल्कि खुद से और दिलों के जज्बातों से मिलने का ना एक बहाना होता है। हम अक्सर दुनिया की भीड़ में इतना शोर सुनते हैं कि दिल की वो मासूम सी धीमी सी आवाज कहीं दब जाती है। आज की शाम हम उसी धीमी आवाज को सुनेंगे मौसीकी के सुरों में और बेहतरीन लफ्जों के साए में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सिलसिला। दोस्तों, जरा गौर फरमाइए इन लफ्जों पर। आते ही एक तरहेदार ने दिल छीन लिया, आते ही एक तरहेदार ने, तरहेदार मतलब एक सजीले सलीकेदार, लाइक गॉर्जियस, यू नो। आते ही एक तरहेदार ने दिल छीन लिया, दिल रूबा बन के दिलदार ने दिल छीन लिया, बांकी चितवन के छिपे प्यार ने दिल छीन लिया, दे के धोखा किसी अय्यार ने दिल छीन लिया। अय्यार मीन्स जादूगर, छलिया। आंखों में जादू, बातों में टोना, आंखों में जादू, बातों में टोना, दिया कैसा चरखा सवेरे सवेरे,

Chiar ca minți. Gomadia. Dosto, कुछ याद आया, मुझे तो बखूबी याद आया। बचपन में जब रेडियो सुना करती थी, रेडियो तो जब तब बजता ही रहता था। कभी किसी भाई का पसंदीदा प्रोग्राम आ रहा होता था, तो कभी किसी बहन का। मैं घर में सबसे छोटी थी, तो मैं सभी सुनती रहती थी। तब भी मैं जब ये सुन रही होती थी, तो उस नन्ही सी जान को भी ये तब बहुत मन भाया। पंकज मलिक की आवाज में सुबह सुबह जब ये बजता था, तो स्कूल के लिए तैयार होते होते भी मैं ठिठक कर सुनने लग जाती थी। ये कौन आज आया सवेरे।

हो जाते हैं। जैसे कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे। मेरा नन्ना सा आशिक मिजाज दिल झूम ही उठता था, जैसे ये जहानत मुझे विरसे में मिली हो, कि कठिन अल्फाज भी मैं जोड़ तोड़ के समझ जाती थी। नहीं तो आज की किसी 4-5 साल की बच्ची को ये बात समझ में आए? तो सुनिए मेरे बचपन की एक याद पंकज मलिक की खूबसूरत आवाज में। ये फिल्म 1940 की है दोस्तों, मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूं। तो इस फिल्म का नाम था नर्तकी, जिसमें उन्होंने रोल भी किया और इसमें म्यूजिक भी दिया और गाया भी। इसे लिखा था आरजू लखनवी ने। ये उस जमाने की नामतरीन हिट फिल्मों में से एक थी। तो सुनिए फिर पंकज मलिक की आवाज में ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे।

दोस्तों, आज सिलसिला कुछ अलग ही रौ में बह चला है। अगला नगमा भी किसी शाहकार से कम नहीं, जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं, औरों को खुशी मुझको फकत दर्द और रंजो गम, औरों को खुशी मुझको फकत दर्द और रंजो गम, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। और बहुत मकबूल मिसरा, हिस्से में सबके आई हैं रंगीन बहारें, हिस्से में सबके आई हैं रंगीन बहारें, बदबख्तियां लेकिन मुझे शीशे में उतारे। पीते हैं लोग रोज शबे मुसर्रतों की, मैं हूं कि सदा खूने जिगर मैंने पिया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। कुछ याद आया, किस दर्द ने आवाज का लिबास पहना है, जब बात दर्द और सुरीलेपन की हो तो जहन में एक ही नाम गूंजता है, शहंशाह मौसीकी कुंदनलाल सहगल साहब। सहगल वो जादुई फनकार थे जिन्हें सब अपना गुरु मानते थे, चाहे रफी साहब हों, लता दी हों या किशोर कुमार। बिना किसी क्लासिकल तालीम के भी उनकी आवाज में वो कशिश थी जो सीधे रूह को छूती थी। साल 1944 में न्यू थिएटर्स की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माय सिस्टर। इस फिल्म में सहगल साहब पर एक गाना फिल्माया गया जिसके बोल पंडित भूषण ने लिखे थे और जिसे धुनों से सजाया था महान संगीतकार पंकज मलिक जी ने। इस नगमे में टूटे हुए दिल की वो लाचारी है जो अपनी तकदीर लिखने वाले खुदा से भी सवाल करती है। सहगल साहब की मखमली लेकिन दमदार आवाज में गूंजता ये दर्द आज भी उतना ही पुरकशिश है। तो फिर चलिए बिना और देर किए सुनते हैं साल 1944 का ये अमर नगमा सहगल साहब की आवाज में। ए कातिबे तकदीर, मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, तू मुझसे खफा है, अरे क्या मैंने किया है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

दोस्तों एक और हीरा चुन कर लाई हूँ आपके लिए। आप भी सोचते होंगे कि मुझे ये क्या हो गया है, क्या वाकई? पर मुझे यकीन है कि आप जरूर सुन भी रहे हैं और लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि एक और हीरा। रुकिए, मैं उनकी मशहूर गजल का मिसरा सुनाती हूँ। फिर वही दानिस्ता ठोकर खाइए, फिर वही दानिस्ता मतलब जानबूझकर, फिर वही दानिस्ता ठोकर खाइए, फिर मेरी आगोश में आ जाइए, फिर मेरी आगोश में गिर जाइए। ये हवा सागर ये हल्की चांदनी, ये हवा सागर ये हल्की चांदनी, जी में आता है यहीं मर जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मिसरे सागर निजामी की मशहूर गजल में से लिए गए हैं, इसके बोल हैं

और इसको गाया था, याद आया दोस्तों, मास्टर मदन ने। हिंदुस्तान म्यूजिक हिस्ट्री का वो अजीम सितारा जो सिर्फ 14 साल की उम्र में ही तमाम बुलंदियों को छूकर कहीं छिप गया। मास्टर मदन का जन्म 28 दिसंबर 1927 को पंजाब के जलंधर जिले के खानखाना गांव में हुआ था। उन्होंने महज 3.5 साल की उम्र में अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस शिमला में दी थी। जब आम बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते, वो शास्त्रीय रागों के आलाप ले रहे थे। महज 8 साल की उम्र में वो ऑल इंडिया रेडियो के एक बेहद मकबूल और रेगुलर गायक बन चुके थे। बड़े बड़े दिग्गज जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब भी उनकी गायकी के कायल थे। अपनी छोटी सी जिंदगी में उनकी सिर्फ 8 रिकॉर्डिंग्स ही हैं। उनकी मकबूलियत से जलकर किसी ने उन्हें धोखे से कुछ मिलाकर दूध में पिला दिया था और 14 साल की उम्र में ये सितारा इसी आसमान से गायब हो गया था। तो आइए सुनते हैं ये अजीम शाहकार मास्टर मदन की आवाज में, यू न रह रह कर हमें तरसाइए, आइए आइए आ जाइए।

दोस्तों, अब जब इस दौर की बात चल ही निकली है तो उस दौर में बहुत सी गुलुकारां भी थी, जैसे बेगम अख्तर, जोहरा बाई अम्बाले वाली और कानन देवी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पहली सिंगिंग सुपरस्टार थी। उनकी सुरीली और खनकती आवाज उस वक्त रेडियो पर सबसे ज्यादा गूंजती थी। अगर हम फीमेल प्लेबैक सिंगर्स की बात करते हैं तो उसकी नींव रखने वाली कानन देवी ही थी। वो एक मकबूल अदाकारा और गुलुकारा थी। इसके अलावा उस दौर में सीएच आत्मा और केसी डे भी थे। केसी डे जो कि एसडी बर्मन के गुरु थे और मन्ना डे साहब के सगे चाचा थे। वे ब्लाइंड थे। लेकिन उनकी बुलंद और रूहानी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। उन्होंने पंकज मलिक और सहगल साहब के साथ कई फिल्मों में काम भी किया था। तो दोस्तों, आइए केसी डे की आवाज में उनकी गाई हुई ये पुकार सुनते हैं, जो फिल्म धूप छांव से ली गई है, जो कि 1935 में रिलीज हुई थी। पंडित सुदर्शन ने बोल लिखे और आरसी बोराल ने म्यूजिक दिया। ये नगमा उन्हीं पर ही पिक्चराइज भी है। तो आइए सुनते हैं केसी डे की आवाज में, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल।

0: गला कितना प्यारा है,
1: गला कितना प्यारा है।
0: तुमने ऐसा गाना कभी सुना भाई?
1: और लीजिए।
0: कैसी दर्द भरी आवाज,
1: क्या दर्द भरी आवाज।
0: चलो फिर कल आएंगे।
1: और लीजिए।
2: मतलब की

0: दोस्तों, 1930 और 40 के दौर में एक और दमदार और भारी क्लासिकल आवाज थी, जोहराबाई अंबाले वाली की। उनकी तान और नज़ाकत ने रेडियो पर धूम मचा दी थी। उनकी आवाज में कुछ अलग किस्म की झनकार सी थी। आइए सुनते हैं उनकी बहुत मशहूर फिल्म रतन से लिया गया ये नगमा, जो कि 1944 में रिलीज हुई थी। इस नगमे को लिखा था डीएन मदहोक ने और इसके मौसिकार थे नौशाद साहब। ये गाने में वो अदाकारा भी थी और उनके साथ मशहूर हीरो करण दीवान थे। तो सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा नगमा जोहराबाई अंबाले वाली की आवाज में।
1: अखियां मिला के जिया भरमा के

दोस्तों, एक और बड़े नामचीन गुलूकार हुए 1940 में, जिनका नाम था सीएच आत्मा। ये 1940 के दशक की बात हो रही है। हालांकि इनकी मकबूलियत 1940 के दशक के आखिर में हुई, जब 1947 में सहगल साहब का इंतकाल हुआ, तो देश ने सीएच आत्मा के रूप में सहगल की परछाई को पाया। क्योंकि सहगल साहब के जाने के बाद जिस गायक ने उनके दर्द और गायकी को की विरासत को जिंदा रखा, वे यही थे। सीएच आत्मा की एक मशहूर गजल है, प्रीतम आन मिलो, जो कि सबसे मकबूल गैर फिल्मी गजल है, जिसके मौसेकार थे ओपी नैयर साहब और लिखा था सरोज मोहनी नैयर ने। दुनिया सुहानी रात रसीली, उस पर ये रुत मतवाली, ऐसे में कोई कैसे जिए जब सुनी हो दिल की थर। गजल सुनिए। तुम बिन सोना जीवन मेरा प्रीत हुई बेरान, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। सीएच आत्मा की आवाज में सुनिए दोस्तों।

दोस्तों, 1940 के दशक की बात हो रही है, तो हम सुरैया की बात ना करें तो बात कुछ अधूरी सी रह जाएगी। उनके बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, जैसे वो पहली सिंगिंग सुपरस्टार थी जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग के दौर में भी किसी और से अपनी फिल्मों में गाना नहीं गवाया। वो खुद ही स्क्रीन पर एक्टिंग करती और अपनी आवाज़ देती थी। फिर उन्होंने महज 16-17 साल की उम्र में उस जमाने के संगीतकार और गीतकार और बहुत मकबूल गुलूकार पंकज मलिक और शहनशाह संगीत KL सहगल के साथ शाहजहां और परवाना जैसी फिल्मों में गाने गाए। 1947 के पार्टीशन में जहां नूरजहां और खुर्शीद जैसी बड़ी सिंगर्स पाकिस्तान चली गई, तो सुरैया ने हिंदुस्तान में ही बस जाने का फैसला किया था। उनके गाए हुए तमाम गीतों और गज़लों में से मैं आपके लिए लेकर आई हूं मिर्ज़ा गालिब की लिखी वो अमर गज़ल, जिसे गाकर सुरैया ने इतिहास रच दिया और जिसे सुनने के बाद पंडित नेहरू ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया था कि सुरैया, तुमने तो मिर्ज़ा गालिब की रूह को ज़िंदा कर दिया। 1954 में आई इस फिल्म में उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। तो प्रोग्राम की ये आखिरी गज़ल है, सुनते हैं। मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर ए जज़्बाए दिल, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर ए जज्बाए दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिनाए न बने। एक और मिसरा सुनिए। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर, कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। इश्क पर जोर नहीं है, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, की लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। दोस्तों, जब आप 1954 की फिल्म मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल सुनेंगे तो गौर कीजिएगा, सुरैया की आवाज़ में शास्त्रीय संगीत का कोई दिखावा नहीं। उनकी गायकी बिल्कुल सहज, मखमली और सीधे दिल में उतर जाने वाली है, इसलिए शायद पर्दे पर मोती बेगम का किरदार निभाते हुए जब उन्होंने इस गज़ल को गाया तो जैसे इतिहास रच दिया। आपकी नज़र है ये मशहूर गज़ल।

तो दोस्तों, सुरैया के इस मखमली और रूहानी आवाज के साथ सुरों का ये कारवां यहीं लंगर डालता है। लफ्जों के इस सफर में आज हमने गुजरे जमाने की उन महान रूहों को याद किया जिनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये शाम की चुनिंदा गजलें और नगमे आपको जरूर पसंद आए होंगे और आपके दिल को कहीं छू गए होंगे। आखिर हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ गाने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि सीधे दिलों को जोड़ने का जरिया है। तभी तो इसका नाम अल्फाज से एहसास तक है। सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो फिर यादों का ये खूबसूरत समा यहीं थमता है और मैं आपकी दोस्त और होस्ट आरती रॉय आज के इस प्रोग्राम से आपसे लेती हूँ विदा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है विद्यार्थी।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल और डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर देवाशीष, अनुजा और बच्चे, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज जो उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM को। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता है। किसान साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तलहनी फसलों के ऊपर। तो तलहनी फसलों का अगर नाम आया है तो हमारा जो झाबुआ जिला है उसमें अधिकतर हम देखते हैं हमारे यहाँ का किसान जो है मूंगफली की, सोयाबीन की और तिल्ली की खेती करता है। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मूंगफली का हम तेल निकालते हैं, साथ ही हम उसको स्नैक्स में भी खा रहे हैं, बाजारों में छोटे छोटे पैकेट्स में सिंगदाने हमको मिलते हैं, हम उसको रोस्टेड करके भी खाते हैं, साथ ही हम मूंगफली का बटर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मूंगफली से बनी हुई चीज़ों का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आज हम जानेंगे कैसे हम मूंगफली की अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं और कौन सा बीज हमें इस्तेमाल करना चाहिए और मूंगफली की खेती में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए आदि जानकारियों को जानेंगे। तो किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं।
2: हमारे देश में तिलहन की खेती की विशेष भूमिका है क्योंकि हमारे रोजमर्रा के खान पान में खाने वाले तेल का इस्तेमाल खूब होता है। और तिलहनी फसलों की बात जहां तक आती है, हमारे देश में मुख्य तौर पर मूंगफली, सोयाबीन, तिल आदि तिलहनी फसलों की खेती होती है। इनमें मूंगफली की क्या खास भूमिका है, आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि मूंगफली का तेल जहां तेल के रूप में इस्तेमाल होता है, वहीं इसके दाने जो हैं वो नमकीन के रूप में खाए जाते हैं। और साथ ही आपको तो पता ही होगा कि आजकल मूंगफली के बटर की मांग भी खूब बढ़ने लगी है। तो ऐसे में मूंगफली की खेती से किसानों को क्या फायदा हो सकता है, इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किसान क्या करें ताकि उनकी मूंगफली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इन सभी पहलुओं पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ गुजरात से बेहतर जगह और भला क्या हो सकती है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे किसान भी मौजूद हैं जिनसे हम ये पूरी बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करें हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर राधाकृष्णन, साथ ही हमारे साथ है राष्ट्रीय कृषि सलाहकार श्री एस के दलाल, इनके साथ ही विशेष मेहमान डॉक्टर एस डी सावलिया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि सहायक तकनीकी अधिकारी हैं, साथ ही डॉक्टर आर ए जाट वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान और डॉक्टर रिंकू डे वरिष्ठ वैज्ञानिक है सूक्ष्म जीव विज्ञान की। और साथ ही बहुत सारे किसान जैसा कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप सभी का स्वागत है अपनी तरफ से और इन सभी विशेषज्ञों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बिल्कुल, और इसी तालियों की गूंज के साथ आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
3: हमारे देश में तिलहन की 7 बड़ी फसलें हैं और मूंगफली का इनमें प्रमुख स्थान है। खाना बनाने में मूंगफली के तेल का खूब इस्तेमाल किया जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। एक अनुमान के अनुसार सरकार को हर साल करीब 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल आयात के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। मूंगफली समेत दूसरी तिलहनी फसलों की उपज में बढ़ोतरी उपज और मांग के अंतर को पा सकती है। सरकार और वैज्ञानिक अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने इस बार मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार बोनस भी दे रही है। दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिक ज्यादा उपज वाले बीज तैयार कर रहे हैं, साथ ही वो किसानों से वैज्ञानिक विधि से मूंगफली की खेती करने पर जोर दे रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार और वैज्ञानिकों की ये कोशिशें रंग लाएंगी और मूंगफली भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभाएगी।
2: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या वजह है कि अनाज के उत्पादन में हमने जो सफलता हासिल की है, तिलहन के मामले में वो बात अभी तक नहीं हो पाई है, क्या वजह है इसकी?
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: तिलहन, जहां तक मूंगफली का बात है, वो रेनफेड है जो बारिश के ऊपर निर्भर है। करीब 80% ग्राउंडनट जो है बारिश की वजह हेल्प से ही उगाया जाते हैं। जो बारिश का जो कमियां आते हैं, जो टाइम पर नहीं आते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम, जो बारिश कम होने का, ये मेजर कारण है। इसके अलावा कुछ कीट वगैरह भी होते हैं जिसका नियंत्रण का अभी अच्छे तकनीक अवेलेबल है। बाकी जो मेजर प्रॉब्लम जो है वो ड्राउट का है, जो कम पानी होने का होता है।
2: बिल्कुल दलाल जी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ये खाद्य तेल आयात जो है, इसे लेकर सरकार को करोड़ों खर्च करना पड़ता है। ऐसे में केंद्रीय कृषि विभाग जो है वो क्या कदम उठा रहा है ताकि जो घरेलू तेल उत्पादन है उसे बढ़ाया जा सके?
5: आपने बिल्कुल सही सवाल किया। भारत के अंदर हम खाद्यान्न तेल जो आयात करते हैं वो उसके ऊपर भारत सरकार का करीब करीब 73,000 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है। हमारी जो पैदावार है, जो तिलहन की फसलों से होता है, उससे जो हम अपने घरेलू तरीके से जो पैदा कर सकते हैं तेल, वो करीब करीब आधा होता है, 50% के करीब हम यहाँ करते हैं और 50% हमको आयात करना पड़ता है। करीब 14-15 के आंकड़ों के मुताबिक 17 KG हर एक इंसान जो है पर कैपिटा कंजम्पशन है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि WHO के मुताबिक 10 KG काफ़ी होता है। तो हमारे यहाँ तेल का जो खपत है बहुत ज़्यादा है, जिसको हम इस माध्यम के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि लोग तेल कम खाएं, ये स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं मूँगफली, जैसे हमने 5,000 करोड़ की पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया है। टोटल हम करीब करीब जो तिलन

0: जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप को, उनके कंट्रोल मेजर्स के लिए भी बहुत सारी नई तकनीकें डेवलप की गई
1: हैं। कीड़े मकोड़ों और रोग बीमारियों के रोकथाम पर आगे बात करेंगे। डॉक्टर जाट से यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो मूंगफली का जो उत्पादन है उसके लिए जो आपने बताया कि जो वैज्ञानिक विधि है वो अगर अपनाया जाए तो वो बेहतर है, तो जो प्रचलित विधि है और जो वैज्ञानिक विधि है इनमें कितना अंतर है?
2: इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारा उसमें पोषक तत्व प्रबंधन। जैसे कि हम किसानों को सजेस्ट करते हैं कि वो 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश दें, लेकिन आमतौर पे किसान क्या करता है कि वो बहुत कम मात्रा के अंदर पोषक तत्व डालता है। साथ ही जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि राइजोबियम, जो क्योंकि ये मूंगफली फसल है तो उसमें राइजोबियम जो बायोफर्टिलाइजर है वो लगाना आवश्यक है, लेकिन किसान या तो लगाता नहीं है या अगर बायोफर्टिलाइजर वो लगाता भी है तो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। तो इसकी वजह से मूंगफली की फसल में पोषक तत्वों की कमी के कारण उपज में काफ़ी कमी आती है। दूसरा, फिर हम उनको बताते हैं कि जैसे खरपतवार की काफ़ी समस्या है, क्योंकि मूंगफली की जो फसल है उसकी ऊंचाई काफ़ी कम रहती है तो इसकी वजह से इसमें खरपतवार की काफ़ी समस्या रहती है। तो हम किसानों को हमारा रिकमेंडेशन है कि भी जो जब वो बुआई करता उस समय पेंडी मेथालिन नामक खरपतवार नाशी आता है उसकी 900 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर उसकी मात्रा हम बताते हैं, लेकिन कई किसान हैं जो वो नहीं लगाते, इसकी वजह से शुरू में ही खरपतवार आ जाते हैं। फिर बाद में हमारा रिकमेंडेशन है कि बुआई के 20 और 40 दिन बाद वो खरपतवार निकाले, या तो जैसे मजदूर लगा के निकाले या इंटरकल्चरिंग करें, लेकिन कई बार किसान वो भी नहीं कर पाता है क्योंकि आजकल मजदूरों की काफ़ी कमी हो रही है, तो उसकी वजह से भी हम मूंगफली की उपज में काफ़ी कमी आती है। तो ये कुछ जो इसके अलावा मूंगफली में एक बड़ा जो मुद्दा है वो है पौध संख्या पर हेक्टर की।
1: अब अच्छा, इसमें तो उसके बारे में हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से जो उत्पादकता है और उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर सावलिया से यहाँ पर मैं जान लूं कि जैसे कि बातचीत में कई बार ये बात आई है जो कीड़े मकोड़े हैं उससे काफी फसल को नुकसान हो जाता है, ऐसे में किस तरह की वैज्ञानिक विधियां हैं जो किसानों को अपनानी चाहिए?
3: ज्यादातर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आप जो पंचामृत पंचगव्य करके जीवामृत है, ऐसी जो घरेलू उत्पादन हो सकता है, जो गायों की पालन पोषण के साथ साथ उसको दुगना फायदा होता है, दूध भी मिलता है, अपने चारे का भी सही तरह से इस्तेमाल करता है, गोबर मिलता है, तो अपनी जो जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको भी वो मेंटेन कर सकता है और खुद अपने हाथों से पंचामृत बना के वो अपने खेत में छिड़काव करने से कीड़े मकोड़े भी कीट आते हैं नुकसान करने वाले उसकी संख्या भी कम कर सकते हैं, उससे नुकसान भी कम कर सकते हैं और जो ये सब जीवामृत है वो सब वातावरण के लिए अनुकूल है और हेल्थ के लिए अनुकूल है, पर्यावरण को सुरक्षित रखता है और जो कुदरती परोपजीवी परभक्षी कीट है लेडीबर्ड बीटल है, क्राइसोपा है और जो दूसरे कई है उसको भी नुकसान नहीं करता और पूरी मात्रा में उसकी संख्या रहने देते हैं और ताकि दवाइयां का छिड़काव कम हो और किसान को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो।
1: तो इसके उपाय हम आगे आपसे और भी जानेंगे। दलाल जी से इस बीच हम जान लेते हैं कि यहाँ बात हो रही है कि जो मूंगफली का उत्पादन है हमने देखा बातचीत में कि उसमें चुनौतियां काफी है, लेकिन अगर वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाए तो इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है, तो किसानों को दलाल जी तभी प्रोत्साहित किया जा सकता है किसी भी खेती से ज्यादा जोड़ने के लिए अगर उसे उसमें फायदा नजर आए, तो किसानों की आय दुगनी करने की जो बात हो रही है उस दिशा में उस नजरिए से अगर देखा जाए तो मूंगफली की जो खेती है वो कितना फायदा पहुंचा सकती है किसानों को?
4: देखिए, जैसे राधाकृष्णन साहब ने बताया कि मूंगफली तीसरे नंबर की फसल है, जो तिलहन की फसलों के अंदर हम सबसे पहले सोयाबीन लेते हैं जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है देश में, दूसरे नंबर पे रेप एंड मस्टर्ड आता है, तीसरे नंबर मूंगफली आता है, इसका एरिया भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है, कंट्री एज ए होल देखते हुए मूंगफली की फसल को आपको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार मिनी किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, हमने 17-18 में करीब 16.11 लाख सीड मिनी किट जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम बांटेंगे किसानों को, ताकि इन मिनी किट के अंदर हम जो है कि

0: किसान को जो सबसे 10 साल से कम उम्र वाली जो नई ये होती हैं आपकी वैरायटीज होती हैं वो हम देते हैं ताकि उनको पॉपुलराइज किया जा सके, ताकि ज़्यादा उपज देने वाली जो जो किस्में हैं उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन अगर अगर आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी तो उत्पादन ऑटोमेटिकली उसके जो है बढ़ जाता है। जैसे कि अब जहाँ तक उत्पादन का हिसाब है उसके अंदर उत्पादन गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है देश में, दो नंबर पे राजस्थान आता है, लेकिन उत्पादकता के अंदर राजस्थान ज़्यादा उत्पादकता देता है। तो इसलिए हम वो ये सीड मिनी किट जो है पॉपुलराइज करने के लिए बांटते हैं। दूसरा, हम ICR के करीब 515 जो हमारे KVKs हैं उनके थ्रू फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि नई जो जो टेक्नोलॉजी है, नई जो जो बातें बताई जाती हैं काश्तकार को
1: जी,
0: वो अडॉप्ट करे और नई तकनीक के साथ अगर वो खेती करेगा तो पैदावार उसकी बढ़ती है
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये
1: पैदावार बढ़ेगी तो फायदा भी होगा, मुनाफा भी होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन, हमें ये बताएं कि बात सिर्फ खेती और उत्पादन बढ़ाने की नहीं है, आय भी प्राप्त करने की है ज्यादा से ज्यादा, तो मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या निदेशालय की तरफ से, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय की तरफ से इसकी भी जानकारी किसानों को दी जाती है कि वो किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकें?
2: वैल्यू एडिशन पर ये निदेशालय बहुत कम काम कर रहे हैं अभी। जैसे जो जो टेबल प्रोडक्ट्स है
1: जी,
2: लेकिन हम दूसरे जो डायरेक्शन में जो काम कर रहे हैं, जो मूल्यवर्धित वैरायटीयां डेवलप करें
1: जी,
2: जैसे जो हाई ओलिक एसिड वाला, जो ओलिक एसिड जो है जैसे ओलिव ऑयल का जो क्वालिटी है वो ओलिक एसिड से आता है, हम ऐसे किस्म में और डेवलप करने में अभी लगे हुए हैं जिसके ओलिक एसिड कंटेंट उसकी बराबर हो जो ओलिव ऑयल का
1: जी,
2: तो उसी उसमें काफी कामयाबी अभी हुआ है, वो वैरायटी अभी आ जाएगा बहुत ही कम समय में। और दूसरा है जो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो वैरायटीज चाहिए
1: जी,
2: जैसे बड़े दाने का हो या यूनिफॉर्म कर्नल का हो, उसी टाइप का किस्में विकसित करने में भी हम काफी कामयाबी हुआ है, अब उसी डायरेक्शन पर हम काम कर रहे हैं।
3: किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना, हमारी सरकार भी मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यों में लगी हुई है। साथ ही हम अपने व्यवसाय इसको व्यवसाय के तौर पर भी कर सकते हैं और इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है और हम क्या कर सकते हैं ये जानेंगे। उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मूंगफली से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: अगर किस्मों की बात करते हैं तो हमारे निदेशालय से जो वैरायटीज है गिरनार 2, ये वैरायटी उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए निकाली गई है। इसी प्रकार से इसी निदेशालय से एक दूसरी वैरायटी है गिरनार 3, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए निकाली गई है। फिर अगर गुजरात की बात करें तो जो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से GG20 वैरायटी है। इसके अलावा एक और अभी नई वैरायटी आई है GJG22। इस वैरायटी के अंदर जो कोलर रोट और स्टेम रोट की समस्या है तो इसमें काफ़ी सहनशीलता इस वैरायटी में। इसके अलावा फिर अगर एक स्पेनिश जो ग्रुप है बंच ग्रुप, उसके अंदर TG37A वैरायटी है ट्रॉम्बे की, तो वो खरीफ और समर दोनों ऋतु में उगाया जा सकता है। फिर ऐसे ही एक और वैरायटी है GJG31, ये भी स्पेनिश ग्रुप वैरायटी है और ये भी किसानों में काफी प्रचलित हो रही है।
2: जी ठीक है डॉक्टर दे, अब आप मुझे ये बताएं और हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को बताएं कि खाद उर्वरक को लेकर के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को।
3: जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मूंगफली एक लिग्यूम क्रॉप है, तो ये जो लिग्यूम क्रॉप है इसमें राइजोबियम का बहुत बड़ा रोल रहता है
2: जी।
3: राइजोबियम की तरह और भी कुछ सूक्ष्म जीव है जिनका पौधे के न्यूट्रिशन के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसी तरह राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है और इसी तरह से कुछ फॉस्फेट सॉल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फॉस्फोरस की उपलब्धि को बढ़ाता है पौधे के लिए। तो हमारा यही रोल है कि हम पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचाए। तो इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है जैसे यूरिया है और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, DAP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, इसके साथ साथ अगर हम पौधे को नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराना चाहते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन है, तो इसके लिए राइजोबियम का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग इस निदेशालय में कुछ जैविक खातर या बायो फर्टिलाइजर बनाया है जो पौधे को नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है।
2: राइजोबियम कितनी आती है?
3: इनकी लागत बहुत कम है, एक पैकेट बायो फर्टिलाइजर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 रुपये होती है और लागत के हिसाब से बहुत ही कम कीमत पे ये उपलब्ध होता है, लेकिन इसका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि राइजोबियम और फॉस्फेट सॉल्यूबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो बायोफर्टिलाइजर के पैकेट के द्वारा या लिक्विड बायोफर्टिलाइजर के द्वारा किसानों तक पहुंचाए जिससे उनका लाभ वो ले सकें।
2: जी बिल्कुल, ये तो खाद उर्वरकों की बात हुई डॉक्टर सावलिया। अब कीड़े मकौड़े उनके रोकथाम और निदान की बात करें तो वहाँ भी लागत की बात आ जाती है। रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से कई नुकसान होते हैं, लागत भी ज्यादा होती है, ऐसे में क्या उपाय आप सुझाएंगे किसानों को?
4: मूंगफली में जो फफूंदी रोग आते हैं ज्यादातर वो स्टेम रोट करके और कोलर रोट करके आता है, उसमें उसके कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा करके एक दूसरा फफूंद आता है जो किसान का मित्र है। अगर सोने से पहले सीड को ट्रीट किया जाता है उसे और बाद में 30-35 दिन का पाक होता है, जब फसल होती है तब ट्राइकोडर्मा या तो इरंडी के खल के साथ या तो जो डीकम्पोस्ट फर्टिलाइजर FIMA फर्टिलाइजर है उसके साथ मिक्स करके जब उपलब्ध मात्रा में पानी हो जमीन में उसी समय दिया जाए और बाद में तो उसका हम रोग की मात्रा कम कर सकते हैं और उसकी वजह से जो किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सब जो ट्राइकोडर्मा वो सब आता है उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, 50 या 100 रुपए के करीब 1 kg आता है और 1 एकड़ 2 kg 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है।
2: बिल्कुल, तो कम कीमत में कम लागत में अच्छा उत्पादन हासिल करने के कुछ आप लोगों ने यहाँ पर विशेष सलाह दी है, उपाय सुझाए हैं। हमें किसानों के पास जाना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग मूंगफली की खेती करते हैं, किसी तरह की समस्या या चुनौती आप लोग के सामने होती है तो उसका निदान, उसका हल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर विशेषज्ञ मेहमान मौजूद है उसका हल देने के लिए। तो कौन सवाल पूछना चाहेंगे आप में से? जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और पूछे अपना सवाल।
5: मेरा नाम नारायण जी है, मैं गांव का रहने वाला किसान हूं और वर्षा ऋतु में हमारा मुख्य पाक मूंगफली है और मैं यहाँ 4 साल से सजीव खेती कर रहा हूँ, गाय आधारित सजीव खेती करता हूँ, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत वो हमारे खेत पे ही तैयार करते हैं और नीम का ऑयल और नीम का अर्क, ऐसे वो कोई कीटनाशक आता है और जब हम मूंगफली बोते हैं पावनी में तो उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है। मैं कई सालों से राष्ट्रीय मगफली संशोधन केंद्र से और कृषि यूनिवर्सिटी जूनागढ़ से जुड़ा हुआ हूँ, वो ये सभी लोग हैं उसका मार्गदर्शन के नीचे ही मैं खेती करता हूँ और मेरे गांव के सभी किसान भाइयों को उसका मार्गदर्शन देता हूँ। परेशानी में ये हम जे पाक तैयार करते हैं, मेरे पास भी है सजीव खेती का पाक, पर अभी कोई लेने के लिए कोई ये भी उसको क्या रिसर्च करने है कि भाई ये पेस्टिसाइड के रासायनिक खातर दवा वाला नहीं है, वो मैं अनुरोध करता हूँ कि ये यहाँ और किसानों को वो परीक्षण कराए और सरकारी तौर पर उसके खरीदी करे।
2: ठीक है, राधा कृष्ण जी क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे?
6: ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस आते हैं उसको पूर्ण रूप से उसका जो रिटर्न मिलना है तो उसका सर्टिफिकेशन का जरूरत है। अभी सर्टिफिकेशन का एजेंसीज तो वैसे कम है और फार्मर को इसके बारे में जानकारी का भी थोड़ा कमी है, तो सर्टिफाइंग एजेंसीज अगर बढ़ जाते हैं और इसका थोड़ा और इसका पॉपुलराइजेशन का जरूरत है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती अभी पिकअप हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आया है, उसके साथ साथ ये भी इम्प्रूव होगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे
2: जरूर। जी चलिए, कुछ और सवाल यहाँ पर? जी
7: मेरा नाम जंतीलाल वेकरिया है, हूँ भरवाड़ा गांव में रहवासी हूँ। मगफली उत्पादन में मेरी बड़ी समस्या है उकसुक का रोग। उकसुक का रोग आ गया बाद उसके इलाज अच्छी नहीं मिलते के उत्पादन के बहुत ज्यादा घाटी पड़ते, तो उकसुक का रोग के लिए क्या नया उपाय है ये हम जानता मांगते हैं।
8: उकसुक का रोग मुख्यतः फफूंद से आता है, उसके लिए एस्पजिलस नाइजर करके फफूंद है जो काली देखने में काली होती है, उसकी शुरुआत बीज से ही होती है। वो पहले से किसान भाइयों को ही ख्याल रखना पड़ेगा, जब आप पूरा हार्वेस्ट करते हो तब जो पोड जो थ्रेसर से थ्रेस करते हो उसी टाइम पोड टूट जाता है, तो वो फफूंद है वो हवा में भी रहती है और जमीन में भी रहती है। उसके बीज है वो उस टाइम अगर जो डैमेज पोड है जो भी उसका जो छिलका टूट गया उसी में वो फफूंद घुस जाती है, आपको देखने से पता नहीं चलेगा। वो आप उस वैसे बीज की आप बुआई करोगे तो वो सड़ जाएगा। दूसरा कि आप जो बीज है वो तो बारिश के समय ही सीधा मार्केट से खरीदते हो, आप गवर्नमेंट एजेंसी से या तो खुद गवर्नमेंट एजेंसी से खरीदो या खुद का बीज रखो, और खुद का बीज रखने में भी आपको तकेदारी रखनी पड़ेगी। छान के अच्छी क्वालिटी के बीज रखो और पूरा उसको पहले सूखने दो, 9% भेज से कम भेज होनी चाहिए, 9% के करीबी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भेज है और आपने गोडाउन में डाल दिया तो उसमें फफूंद आ सकती है। दूसरा, जहाँ आपने संग्रह किया है वो जगह में बिने भेज वाली मीन्स बिना मॉइस्चर होना नहीं चाहिए और अच्छी तरह से उसको कीड़े भी नहीं लगना चाहिए, उसको सही तरह से रखना है और टाइम टू टाइम उसको फ्यूमिगेशन करना है। और बाद में अच्छी तरह से छीलने के टाइम अगर आप ज़्यादा भेज दे देते हो और मॉइस्चर ज़्यादा देते हो तो भी हवा में से वो लग जाता है, तो उसको कम से कम भेज दे के छिले और अच्छे जो सोइंग के लिए सीड अलग करते हो, हैंड पिकिंग करते हो तो उसमें जो भी सीड आपको डिसकलर मिले, दूसरा कलर वाला भी मिले तो उसको भी निकाल दो, टूटे हुए सीड को भी निकाल दो। उसका अगर टेस्ट जो मीन्स वो लाल कलर वाला जो छाल बोलते हैं वो भी अगर थोड़ा सा डैमेज हो गया तो उसको निकाल दो और अच्छे अच्छे क्वालिटी के सीड ही चुन के रखो और सेम साइज के रखो ताकि।
2: चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। जी पूछिए।
9: મેંદડા તાલુકાના બરવાડા ગામથી હું ખેડૂત બોલ રહ્યો હું. અમારા ગામની અંદર, સૌરાષ્ટ્રની અંદર, જૂનાગઢ જિલ્લાની અંદર બહુ મૂંડા છે, જીવાત આતી હે, તો એ પણ બળ ડોડવા ખાઈ જાય, મગફળી કા અંદર દાણા ખાઈ જાય, તો એને માટે મારે કયું સંશોધન કરવું, કઈ દવા વાપરવી, એનો ઈલાજ શું? અમારે ગઈ સાલ બહુ માંડવીમાં મોટા નુકસાન હો ગયા, કોઈ ઉત્પાદન નહીં મળ્યા, સારા પણ બિગડ ગયા, સારા પણ ખાધા જવા નો રહ્યા, તો એના માટે હું જાણવા માગું કે આને માટે શું કરવાનું.
2: ક્યા વજહ હે ઇસકી ઓર ક્યા નિદાન?
8: મૂંગફલી મેં જો બતા રહે વો ઉસમે હિન્દી મેં ગિટાર બોલતે હે, ગુજરાતી મેં મુંડા બોલતે હે ઉસકો, તો વો જીવાત હે વો પૂરે સાલ તક જમીન મેં રહેતી હે, એક ફીટ સે જ્યાદા રહેતી હે, ઉસકા જો જીવન ચક્ર હે પૂરે સાલ, એક સાલ લગતા હે જીવન ચક્ર પૂરા કરને મેં, ઓર જબ પહેલી બારિશ હોતી હે તો પહેલી બારિશ કે બાદ હી ઉસકા જો પુખ્ત હે વો જમીન સે બહાર આતા હે, ઓર જો ખેત કે અગલ બગલ મેં જો પૌધે પેડ હે, ખેજડી હૈ, પીછે નીમ હૈ, બેર હૈ, ઓર દૂસરા જો પેડ હૈ ઉસકે ઉપર વો ઉસકા પુખ્ત હૈ, વો રાત ભર રહેતા હૈ, ચાર પાંચ દિન રહેતા હૈ, ઉસકે પૌધે પત્તિયાં ખાતા હૈ, ઓર વહાં પ્રજનન વો મેટિંગ કરને કે બાદ ચાર પાંચ દિન કે બાદ વો અર્લી સુબહ 5 થી 8 બજે કે બીચ ખેત મેં જાતા હૈ, ઓર 15-20 સેન્ટીમીટર ગહેરાઈ તક વો અપને ઈંડે છોડ દેતા હૈ, એક એક એક એક કરકે કભી એક સાથ દેતા હૈ.
2: ઉપાય ક્યા હૈ, ક્યા ક્યા નિદાન હૈ ઇસ સમસ્યા કા?
8: સમસ્યા કા નિદાન કે લિયે બારિશ હોને કે બાદ તુરંત 3 દિન તક ખેત કે અગલ બગલ વાળે પેડ પૌધો કો દવા છિંટકાવ કરે, ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70.5 SL કરકે આતા હૈ, વો 1.5 ml પ્રતિ લિટર, યા તો કાર્બોક્સિલ વો આતા હૈ, ઉસી કો સ્પ્રે યા મોનોક્રોટોફોસ ઉસકો આપકો સ્પ્રે કરના પડેગા, ઓર શામ કે સમય વો લેમ્પ જલા કે, શામ કે સમય લેમ્પ જલા કે ઉસકે નીચે એક બડા સા બર્તન રખ કે ઉસમે પાણી ભર કે કેરોસીન યા મિટ્ટી કા તેલ જો કે કેરોસીન બોલતે હૈ ઉસી કો ડાલ કે રખના પડેગા, તાકી વો જો જીવ હૈ વો રાત કો લાઇટ કો આકર્ષિત હોતા હૈ ઓર ઉસમે આકે ગિર કે મર જાયેગા, ઓર સભી કિસાનો કો યે સાથ સાથ મિલ કે કરના પડેગા, એક દો કરેગા તો ઉસકા કંટ્રોલ નહીં હૈ, ઓર દૂસરા ઉસકા એક ફેરોમોન આતા હૈ, વો હર 15 સ્ક્વેર મીટર કે બીચ આપકો ઉસકો લગાના હૈ, તાકી વો આકર્ષિત હો કે વહાં આયે ઓર ઓર ઉસમે ઉસે હમ માર સકતે.
2: ઠીક હૈ, તો બડે પૈમાને પર જબ નુકસાન હો રહા હૈ તો બહેતર હૈ કે સભી કિસાન મિલ કે ઇસકા ઉપાય કરે. કુછ ઓર સવાલ ઇધર આપ લોગ જો બેઠે હૈ કુછ કરના ચાહેંગે બતાયે અપને બારે મેં, જબ આપ મૂંગફલી કી ખેતી કરતે હૈ તો ઇસસે ક્યા આપ લોગો કો લાભ હોતા હૈ, ક્યા ઓર સવાલ પૂછના ચાહેંગે?
10: મેરા નામ સમીર વગાસિયા હૈ. હમ જો મૂંગફલી કી ખેતી કરતે હૈ ઉસકી જો લાગત આતી હૈ ઉસકા સમર્થન મૂલ્ય હમકો નહીં મિલતા, સરકાર જો યોજનાએ ચલાતી હૈ ભાવાંતર કી ઉસકા લાભ કિસાનો કો કમ ઓર વ્યાપારી કો જ્યાદા મિલતા હૈ, ઇસકા ક્યા કારણ હૈ?
2: દલાલ જી, યહાં પર આપસે જરૂર મેં યે જાનના ચાહુંગી કે સરકાર ને અભી સમર્થન મૂલ્ય બઢાયા ભી હૈ ઓર હમને દેખા હૈ કે દલહન કો કિસ તરહ સે સરકાર ને બઢાવા દિયા હૈ, વહાં પે ભી સમર્થન મૂલ્ય બઢાને કે સાથ સાથ બોનસ ભી દિયા હૈ. આપકો લગતા હૈ કે ઇસ તરહ કે ઉપાય તિલહની ફસલો કી જો ખેતી હૈ ઉસકો બઢાવા દેગી?
11: જ્યાં તક સમર્થન મૂલ્ય કા સવાલ હૈ, ભારત સરકાર હરેક જો ફસલ હોતી હૈ ઉસકા ન્યૂનતમ સમર્થન મૂલ્ય નિકાલતી હૈ, ઉસમે વૈજ્ઞાનિક જાતે હૈ ઓર જો CPC હમારી હૈ કોસ્ટ પ્રાઇસેસ વાલે વો ઉસકા મૂલ્યાંકન કરતે હૈ, કિંમત નિકાલતે હૈ, ઉસકે બેસિસ કે ઉપર હમ લોગ જો MSP ઉસકી ડિટરમિન કરતે હૈ. અભી ઇસ બાર હમને જો બોનસ કો મિલા કે 4450 રૂપિયા ઇસકા MSP રખા હૈ. યે આપ જો બાત કહે રહે હૈ, યે કિસાન કહે રહે હૈ, યે બિલકુલ સહી હૈ. જબ ફસલ જ્યાદા આ જાતી હૈ તો જો જો ટ્રેડર હૈ વો મૂલ્ય ગિરા દેતા હૈ, તો ઉસ કેસ કે અંદર ભારત સરકાર ને કુછ એક એજન્સીઝ નેફેડ ઓર યે જો હૈ સ્ટેટ વાલો સ્ટેટ કો ભી ચાહીએ કે ઇસકે અંદર જરા સહયોગ દે ઓર સમર્થન મૂલ્ય કે ઉપર વો ખરીદારી કરે.
2: ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણ, બતાએ હમે કુછ એસે ઉપાય જિસસે કિસાનો કો ઓર જ્યાદા પ્રોત્સાહિત કિયા જા સકતા હૈ મૂંગફલી કી ખેતી કે લિયે.
6: યે જહાં તક પ્રોક્યોરમેન્ટ ઓર પ્રાઇસિંગ કા હૈ વો પોલિસી ઇશ્યુઝ હૈ, ઓર જો પ્રોક્યોરમેન્ટ હૈ સ્ટેટ ઓર નફેડ વગેરા કરતે હૈ કુછ કાફી હદ તક, લેકિન જો પ્રોડ્યુસ જ્યાદા હોતે હૈ ઉસ ટાઈમ પર ખાસ કરકે યે પ્રોબ્લેમ હોતે હૈ, ઓર જો હાઈલી રેમ્યુનરેટિવ જો એગ્રીકલ્ચર હૈ ઉસમે એક ઓપ્શન યે હૈ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કા.

0: कुछ हद तक गुजरात में चलते हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया में है या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई ग्राउंडनट बनाना है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, चॉकलेट इंडस्ट्री हो, पीनट बटर हो, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करे फार्मर्स के साथ, फार्मर को अच्छा रिम्यूनरेशन भी मिलेगा, वो जो जो अच्छा फसल भी आ जाएगा और जो इंडस्ट्री का नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगा।
1: तो अगर निर्यात के लिए किसान मूंगफली का उत्पादन करना चाहे तो जाहिर है उसकी गुणवत्ता पर उसको खास ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखे अच्छी गुणवत्ता के लिए?
0: इसमें मैडम दो चीजें हैं, एक तो जो फील्ड में जो उगाते हैं उस टाइम, क्योंकि हमारा मेजर ट्रेड बैरियर है अफ्लाटॉक्सिन का, जो पहले बताए गए थे। अफ्लाटॉक्सिन का दो स्टेज में उसका प्रॉब्लम होता है, एक जो जब फसल उगाते हैं, दूसरा उसके बाद वो स्टोरिंग और प्रोसेस में। तो फसल उगाते हैं उसके लिए जो अच्छा एग्रीकल्चर, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो पॉपुलराइज भी कर रहे हैं, वो करने से इसका जो मात्रा बहुत ही कम होता है या नील भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो स्टोरेज है, जैसे इसका ड्राइंग है, प्रोसेसिंग है, जैसे इसका शेलिंग का वेटिंग, वेट शेलिंग, ड्राई शेलिंग, उसी चीज़ों पर इसका फर्क पड़ता है। ये एक कॉम्पोजिट चीज है जो इसको फार्मर को और खेती को अलग कर सकते हैं और इंडस्ट्री को अलग कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये खेती और इंडस्ट्री मिलकर करना है। इसलिए मैंने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कोई कंपनी करते हैं तो ये दोनों चीजें साथ में ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर जाट, हमें बताएं, आप पौध संख्या को मेंटेन रखने की बात बता रहे थे, उस जानकारी को आप पूरी कीजिए, कैसे जो किसान है वो जो पौध संख्या है उसको बरकरार रख सकते हैं।
2: जी, जैसा कि मूंगफली में तीन प्रकार की जो किस्में होती है, एक होती है फैलने वाली, दूसरी अर्थ फैलने वाली, और तीसरी होती है बंच टाइप गुच्छे वाली। तो इसमें जो फैलने वाली है उसके अंदर हमारा जो रिकमेंडेशन है कि उसके अंदर जो 60 जो स्पेसिंग है 60x10 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से इसको इसमें बुआई करनी है। दूसरा है अर्ध फैलने वाली किस्में, तो उसकी 45x10 के हिसाब से बुआई करनी है, और उसकी पौध संख्या होनी चाहिए 2,66,000। और जो गुच्छे वाली है उसकी 30x10, उस हिसाब से 3,33,000 पौध संख्या पर हेक्टर में होनी चाहिए। लेकिन इस मूंगफली के अंदर एक तो क्या है कि जर्मिनेशन की समस्या है। आमतौर पे फील्ड में हम देखते हैं कि 75% से 80% ही जर्मिनेशन होता है जो बीज डालते हैं, तो उसकी वजह से जो पौध संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। दूसरा, मूंगफली के अंदर जो कॉलर रोट आता है उसकी वजह से काफी प्लांट्स मर जाते हैं, तो उसकी वजह से और भी पौध संख्या कम हो जाती है। फिर इसके अंदर मूंगफली में जो बीज की साइज है वो काफी वेरी करती है।
1: अच्छा,
2: तो उससे अगर मान लो अगर बीज की साइज छोटी है तो सीड रेट कम हो जाएगी।
1: अच्छा,
2: और अगर बीज उसी वैरायटी का जो अगर दाना बड़ा है तो उसकी सीड रेट बढ़ जाएगी। तो किसान को चाहिए कि जो सीड साइज और जर्मिनेशन परसेंटेज कितना, ये दो बात को ध्यान में रखते हुए बीज की दर निर्धारित करें।
1: अच्छा,
2: तो अगर बुआई से पहले 5-7 दिन पहले आपके बीज में से थोड़े से बीज लेके और उसको जो न्यूज़पेपर होता है उसमें डाल के थोड़ा पानी डालें, और उसको आपको 48 या 60 घंटे के अंदर उसमें कितना जर्मिनेशन परसेंटेज आपको पता चल जाएगा, तो उस जर्मिनेशन के परसेंटेज के हिसाब से और सीड साइज के हिसाब से आप बीज दर का निर्धारित करके उचित जो पौध संख्या है वो खेत में रख सकते हैं। और अगर उचित पौध संख्या होगी तो उसी अनुपात में आपको उपज भी ज्यादा मिलेगी।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो मूंगफली के किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागत की हम बात करते हैं, खाद उर्वरक डालने की बात करते हैं, तो अंधाधुंध न दे करके जिसकी जरूरत हो उतनी ही मात्रा में हम उसका इस्तेमाल करें। इस दृष्टि से अगर देखें तो मूंगफली के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या बनवाना चाहिए, कितना जरूरी है?
3: हाँ जी, बिल्कुल बनवाना चाहिए, क्योंकि सॉयल हेल्थ कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मूंगफली एक तिलहन फसल है
1: जी,
3: और इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए राइजोबियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है
1: जी।
3: तो जैसे जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनकी तुलना में इसमें नाइट्रोजन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। जनरली 25 किलो नाइट्रोजन 50 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम दें तो हम काफी मात्रा में नाइट्रोजन खाद की उसका कंजम्पशन कम कर सकते हैं। तो सॉयल हेल्थ कार्ड हमने यहाँ पे भी काफी लोगों को, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दिया है, और हमारी संस्थान की वजह से काफी जो आसपास के गांव हैं उनके फार्मर्स को हमने सॉयल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किया है गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से। और इसमें से जो फार्मर्स हैं उनको फायदा भी हुआ है, उनको पता चल रहा है कि उनकी जो उनका जो फार्म है, उनके जो खेत हैं, उसकी फर्टिलिटी लेवल क्या है। और हमें, हम ये भी बता रहे हैं कि आपको नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी है, फास्फोरस की मात्रा कम देनी है, और इतनी खाद देने से ही आपके लिए सफिशिएंट है। तो इस हिसाब से भी फार्मर्स को पता चल रहा है कि हमें कितना खाद देना है, और उससे ज़्यादा हम नहीं दे तो हम जो हमारी खाद की पूर्ति भी कम कर सकते हैं और हमारी काफी सेविंग भी हो सकती है। तो ये दोनों तरफ से फार्मर्स
1: ये बात लागू होती है। ठीक है राधा कृष्ण जी, ये बताएं हमें कि बीज की बात अक्सर आई है, कई तरह की समस्याओं के निदान के तौर पर देखा हमने कि बीज अच्छी गुणवत्ता का हो, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देते हैं किसानों को, बीज कहाँ से प्राप्त करें और बीज का जब चुनाव करें तो किन बातों का ध्यान वो रखें?
0: बीज जो है जहाँ तक संभावना है, शक्यता है, आप जो स्टेट का बीज का एजेंसी से खरीदिए, एक। दूसरा, अगर एक बार आप अच्छे वैरायटी का लिया है, आप उसको आगे सीड के लिए जो रखना है उसको प्योरिटी से, उसके साथ दूसरे मिलावट ना हो, उस हिसाब से करिए और आगे उसको रखिए। ये जो मार्केट में जो आते हैं जो अलग अलग कंपनियों का, उस सीड का जो है हमारे पास उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, ये कहाँ से बनाया है, क्या बना है, कैसे होगा, इसके बारे में मैं पता नहीं है। तो जब आप कुछ सीड कंपनियों का भी चलता होगा उसमें अच्छा भी चलता होगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा जो आपके जो सीड जो सर्टिफिकेशन एजेंसी, जो बीज निगम है या यूनिवर्सिटी है, वहीं से खास करके सीड अपना खरीदिए ताकि आपको अच्छा सीड हमेशा मिले।
1: और किसान क्या बीज उत्पादन पर भी यहाँ पर करते हैं, गुजरात के जो किसान है
0: यहाँ करते हैं, और उस पर हमने काफी तालीम भी दिया है किसानों को। हर साल हम तो 2-3 बैच को मिनिमम तो करते हैं, अच्छा सीड कैसे बनाएं और इसको कैसे स्टोर करें, इसका हम ट्रेनिंग भी देते हैं।
4: किसान साथियों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर ट्रेनिंग्स के माध्यम से भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कैसे नया बीज बनाया जा सकता है। साथ ही आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, और इन जानकारियों का सिलसिला आगे चलता रहेगा। उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, हम सुन रहे थे मूंगफली की खेती को लेकर, मूंगफली की खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों, चर्चा के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और मूंगफली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को।
1: चलती हूँ और अपना नाम बताएं और पूछे अपना सवाल।
2: कपिल वेकरिया मारू नाम। हवे सौथी वधारे प्रश्न मोटो ए है अफ्लाटोक्सिन जे फूग बराबर आपने जे मार्केटिंग मा सौथी वधारे नड़े है, तो एक फूग क्यारे आवे, केटलो समय मांडवी सुकोवी, आते ए बधी खेडूतोने खरेखर एटली बधी जाण नथी, तो ए खेडूतोने जाण करे, एक ये प्रश्न है।
1: ठीक है, तो कौन जवाब देना चाहेंगे आप में से?
3: वो किसान जानना चाहता है कि जो अफ्लाटोक्सिन का प्रॉब्लम है, वो अफ्लाटोक्सिन क्या है, वो कैसे आती है, कब आती है और उसको मैनेज कैसे करना है। मैं तो बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि अफ्लाटोक्सिन एक एस्परजिलस फ्लेवस करके एक फफूंद आती है, उसकी वजह से लगता है। वो फफूंद जब लगता लग जाती है तो बीज में वो एक जहर बना देती है, और जो खाने के लिए, उसके लग जाने के बाद खाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो वो न आए इसीलिए आपको पहले से ही जो आप खरपतवार करते हैं या तो इंटरकल्चरिंग करते हैं, तभी से किसानों को ख्याल रखना पड़ेगा कि जो पॉड है, मीन्स मूंगफली का जो पॉड है, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। वो जमीन में से भी आ सकती है और हवा में से भी वो फफूंद आ सकती है, तो पॉड डैमेज नहीं होना चाहिए। हार्वेस्टिंग के टाइम भी पॉड डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज हुआ तो उसको तुरंत ही अलग करके मार्केट में बेच देना है, और फफूंद हार्वेस्टिंग के बाद।
1: आपका कहना है कि जो दाने हैं मूंगफली के, उसमें किसी तरह का नुकसान उसे नहीं होना चाहिए।
3: देखने से, देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें फफूंद लग गया है।
1: अच्छा,
3: बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर वो जब लग जाता है तो वो अपने आप ही वो पॉइजन शुरू कर देता है।
1: ठीक,
3: तो उसको आने ही नहीं देना। या तो जब आप स्टोर करो, तो पहले से मैंने बता दिया था कि जो 9% से कम नमी होनी चाहिए, तभी आप उसको स्टोर कर सकते। तब तक आपको फील्ड में उसको सुखाना है, और सुखाने के टाइम जो गोडाउन है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वो सब ख्याल रखना है। और बीज
1: बचाव ही जो है वो बेहतर उपाय है। चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। कि एक सवाल आप भी पूछना चाहते हैं?
4: हाँ, मूंगफली की खेती में हमने मूंगफली पाकते समय सफेद फूग आती है, उसका क्या कारण होता है, उसका क्या इलाज है?
3: जो पाकने के समय आप बता रहे, वो पाकने के समय जब मूंगफली में ड्रॉट, पानी की कमी आ जाती है,

0: और वो उसकी फफूंदे वो जमीन में ही रहती है या तो बीज से आती है, जो ड्रॉट ड्राई स्पेल मार देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ये जो फफूंद है वो ऑक्सीजन लविंग, उसको अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिला और ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो वो बढ़ सकती है, क्योंकि किसान हमारे यहाँ सौराष्ट्र के किसान ज़्यादातर इंटरकल्चरिंग करते हैं और मैंने देखा है कि कभी कभी तो 62 डेज तक इंटरकल्चरिंग करते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि 50 दिन के बाद मूंगफली में इंटरकल्चरिंग न करें तो अच्छा है, और जब ड्राई स्पेल आता है तो फैला के पानी दे दे, और जैसे जमीन दबी रहेगी वैसे कम आएगी, और सोइंग के बाद आप उसे प्लेंकर चला के जमीन को दबा दे।
1: ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर जाट से मैं जानना चाहूंगी, जैसे बातचीत में बात आ रही है कि जो मूंगफली है उसमें उचित नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ऐसे में सिंचाई को लेकर हमें जरूर बताएं किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अंतराल होना चाहिए, या फिर जल की जैसी उपलब्धता है इन क्षेत्रों में जहां पर मूंगफली की खेती होती है, ऐसे में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है?
2: जी, वैसे तो मूंगफली एक सूखा सहन करने वाली फसल है, लेकिन फिर भी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए हमें कुछ ऐसी फसल अवस्थाएं हैं उस समय पे पानी की कमी नहीं आनी चाहिए
1: जी।
2: तो शुरू में तो जैसे फसल की बुआई है उस समय पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि उसका जो अंकुरण अच्छे से हो और हमें पौध संख्या सही मात्रा में मिले
1: जी।
2: फिर उसके बाद में से फूल बनते हैं, फिर सुइयां बनते समय, फली बनते समय और दाना बनते समय, ये ऐसी अवस्थाएं हैं जब जमीन के अंदर जो मॉइस्चर है नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जिससे कि हमें ज्यादा उपज मिले। फिर जैसे इसमें ड्राई स्पेल जब बीच में सूखा आ जाता है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से हम अगर इसमें इरिगेशन देते हैं तो कम पानी में हम ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर इरिगेशन कर सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल। चलिए यहाँ पे कुछ और सवाल ले लेते हैं किसान भाइयों से, कुछ और पूछना चाहेंगे आप सवाल? जी आपने बताया था आपके पास और भी सवाल है, तो बता पूछिए अपना दूसरा सवाल।
3: જે આપણે આગળ વાત થઈ થોડી વાર પહેલા કે તેલ આપણે આયાત કરવું પડે છે બહારથી, અને અહીંયા મગફળીનો એરિયો ઘટતો જાય છે, એની પાછળના કારણો એવા કંઈક મને દેખાય છે કે ખાતર અને જંતુનાશક દવા બધું બહુ મોંઘું મળે છે, તો એના માટે સરકારને બે સોલ્યુશન કરવાની જરૂર છે, એક તો જે ગમે એ દુકાન માંડીને બેસી જાય, ગમે એ પ્રોડક્ટ લઈને બેસી જાય છે એ બંધ કરાવવું જોઈએ, અને જે એગ્રીકલ્ચરની અંદર ભણેલા વિદ્યાર્થીઓ જે અત્યારે એમનેમ રખડે છે, બેકાર બેઠા છે, એને લાયસન્સ આપી અને વ્યવસ્થિત દવાઓ પેસ્ટિસાઇડ જે મળે છે માર્કેટમાં, જે ખાતરો મળે છે એ બોગસ કંપનીના ન હોવા જોઈએ, એવું બધું સરકારે થોડુંક ધ્યાન રાખવું જરૂરી દેખાય છે મને।
0: इनका सवाल था कि जो हमारे गवर्नमेंट बता रहे, सभी एजेंसियां बता रहे कि हमारा उत्पादन कम हो रहा है, लागत ज्यादा लग रही है, तो उसकी वजह एक है कि जो जिसके पास नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर का, वो लोग दुकान मांड के मीन्स को शॉप खड़ा करके पेस्टिसाइड बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, और किसानों को कोई मिलती जुलती दवाइयाँ दे रहे हैं,
1: ठीक है,
0: तो उसकी वजह से जो किसानों को लागत ज़्यादा आ जाती है, तो उसका सुझाव है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा वो सुझाव लगाए कि जो बीएससी एजी है और जिसको नॉलेज है उसी को लाइसेंस मिले।
1: तो इन्होंने जो सवाल पूछा है डॉक्टर राधाकृष्णन, उसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप?
4: ये जो एग्रीकल्चर इनपुट जो है खास करके केमिकल्स, वो जो है इसका एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसमें कई अच्छे कंपनियां भी है, नए कंपनियां भी है, जो लेस पॉपुलर कंपनियां भी है। अब इस पर जो फार्मर को ये जो मिलते हैं ज़्यादातर ये खरीदी होते हैं जो इनपुट ट्रेड डीलर जो बोलते हैं उसके बेसिस पर है
1: जी।
4: अभी उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इनपुट डीलर जानबूझ के भी कर सकते हैं या दूसरा उनका अनजान होने के वजह से भी, तो अभी उसके लिए काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में इनपुट डीलर्स के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया है जो छुट्टी के दिन चलते हैं, जो इसके पूरा जानकारी देते हैं। इसके अलावा अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो इनपुट डीलर्स को इसको ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन ये जो खरीदी है इसमें एक और चीज़ भी है, किसान का जो क्रेडिट है उसे रिलेटेड भी है, तो अच्छा। उसमें भी इनको जो कुछ प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ट्रेडर जो बोलते हैं वो उसको खरीदना पड़ते हैं कई लोगों को, लेकिन इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने का काफी श्रम चल रहे हैं, और दूसरा इसमें कुछ पॉलिसी चेंज भी जहां तक मैं जानता हूं वो सरकार लाने वाला है।
1: जी बिल्कुल, तो सरकारी प्रयासों के बारे में हमें जरूर यहाँ पे दलाल जी बताएं, और साथ ही जो राष्ट्रीय तिलहन मिशन है सरकार का, ये जो बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इसके तहत किसानों को किस तरह की सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके बारे में भी हमें बताएं।
5: भारत में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम शुरू किया गया, NMOP शुरू किया गया 14-15 में, उससे पहले 13-14 का तिलन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने किसानों की मदद से 32.75 मिलियन टन तिलहन फसलों की प्रोडक्शन हमारी हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। उसके बाद जैसा कि राधाकृष्णन साहब ने बताया था कि ये एक, क्योंकि एक शुष्क एक कृषि के अंदर उगाने वाली फसल है, तो ये बहुत ज़्यादा उस पर बारिश पे डिपेंडेंट रहती है। 13-14 के बाद 14-15-15-16 में बारिश कम रही और टाइम से नहीं आई, इसकी वजह से इसका एरिया घट गया, जो कि 28 मिलियन टन हेक्टर से वो गिर के 25-26 के करीब आ गया। उधर प्रोडक्टिविटी भी गिर गई, क्योंकि सूखा पड़ा तो प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता है वो कम हुई, जो कि 1168 से गिर के ये 968 आ गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारा घट के 25.25 मिलियन टन रहा। इसको रिकवर करने के लिए अभी 16-17 में हमारा फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जबकि हमारी उम्मीद है कि 32.10 मिलियन टन प्रोडक्शन होने की संभावना है।
1: जी।
5: एरिया हालांकि उतना ही है 26, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई है, जो कि 1225 किलो पर हेक्टर हो गई है। इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे जो तिलहन की फसलों में उत्पादन है वो थोड़ा बढ़ा है।
1: जी।
5: इसके अलावा जो किसानों को मदद देने के लिए हम सरकार ने डेमोस्ट्रेशन जो है जो हमने चलाए हुए हैं इनपुट से लेके, क्योंकि जैसा कि अभी सभी और विशेषज्ञ बता रहे थे, सीड एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी फसल के लिए, तो एक अच्छी किस्म की फसल का बीज होना बहुत जरूरी है, तो इसकी वितरण पे और इसकी प्रोडक्शन के ऊपर ये हमारे इस NMOP प्रोग्राम के अंडर हम इसके अंदर असिस्टेंस देते हैं, सीड एजेंसीज को बढ़ावा देते हैं, ताकि अच्छी किस्म की फसलों का बीज चेन के अंदर आ सके और किसानों को उपलब्ध हो सके। इनपुट के अंदर हम और इनको प्लांट प्रोटेक्शन की जो दवाइयां हैं, जैसा कि अभी कितने किसान पूछ रहे थे कि उनकी फसल के अंदर बीमारी लगती है, उसको उसका समाधान के लिए हम उसके लिए उसको अनुसंधान अनुदान देते हैं। इसके अलावा मैकेनाइजेशन के लिए हम लोग इरिगेशन के लिए पावर जो स्प्रे वगैरह पंप हैं उसके लिए भी अनुदान दिया जाता है। इन
1: ठीक है, यानी कि कई रूप में जो सरकार है वो मदद पहुंचाती है किसानों तक, ताकि वो जो मूंगफली की खेती या अन्य तिलहनी फसलों की खेती की तरफ उनका रुझान बढ़े।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो, टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, 90.8 FM।
7: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने मूंगफली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, छावा की आवाज। खेत से मेरा लगाव, खेती से मेरा उत्थान, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, किस्मत पर नहीं परिश्रम पर चलता हूँ, प्रकृति के साथ रोज जो उठता बैठता हूँ, खेतों में बोता हूँ, खेतों से उपजाता हूँ, खेत से मेरा लगाव, खेती से मेरा उत्थान, इसीलिए तो अन्नदाता मैं कहलाता हूँ।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो, टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, 90.8 FM।
7: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान भाइयों खेती बाड़ी कार्यक्रम में, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 की ऐप के माध्यम से भी आप खेती बाड़ी कार्यक्रम को सुन सकते हैं, साथ ही आपके सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9425413603 पर। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम हर रोज एक नए विषय पर आपको जानकारी देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक लेकर आते हैं, और साथ ही हम हमारे जो किसान हमसे जो आते हैं आग्रह करते हैं उस पर हम कोशिश करते हैं कि उनके जो समस्याएं हैं उन पर हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने हमारे एक किसान ने कड़कनाथ के ऊपर हमें कुछ जानकारियों के लिए हमें आग्रह किया था, इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में हम कड़कनाथ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज कर हूँ वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भिल 90.8 FM झाबवा की आवाज खेती संबंधी बहुत सी जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है, आज भी हम बात करने वाले हैं खेती संबंधी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो आज हम आपसे मिलवाते हैं झाबवा ब्लॉक के कलीपुरा गांव के रीता मेड़ा से, जो कि अपने गांव में अपने एक छोटे से घर में उन्होंने कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और आजीविका को चलाने के लिए कड़कनाथ पालन शुरू किया। अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ मुर्गियां हैं और अभी वो मुर्गियों के अंडों को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाती है। आपको मिलवाते हैं रीता जी से, उससे पहले आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना, आइए सुनते हैं अब रीता जी से, जो कि झावा ब्लॉक के अंतरवेला के पास स्थित कलीपुरा गांव की रहने वाली है। उन्होंने अपनी आजीविका को सशक्त बनाने के लिए कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ है। और आइए जानते हैं कैसे वो उन मुर्गियों का देखभाल करती है, उनके लिए क्या खाना पानी देती है और क्या उनके लिए कौन कौन सी सावधानियाँ वो बरतती है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
1: नाम क्या है?
2: रीता।
1: अच्छा अच्छा, ये कड़कनाथ आप पालती हैं?
2: हाँ।
1: कैसे पाले जाते हैं?
2: मैं इसको सुबह में पानी देती हूँ।
1: हाँ।
2: और खाना देती हूँ।
1: हाँ।
2: और चावल भी बना के देती हूँ इसको।
1: अच्छा अच्छा, इसको कहाँ से भी इनके वो आए थे बच्चे?
2: बच्चे झाबुआ से आए।
1: झाबुआ से? कितने बच्चे आपने पाले थे शुरुआत?
2: मैंने शुरुआत में तो 50 पाले।
1: अब कितने हो गए उनके?
2: अब तो उनके हो गए, ये तो बहुत सारे हो गए, गिन नहीं पाते ये। अच्छा। बड़े बड़े तो
1: कहाँ पे बेचते हैं इसको?
2: ये इधर टेम्पल लेने आया था।
1: अच्छा, कितने का जाता है?
2: 18,000 का तो ले गए थे वो।
1: अच्छा अच्छा,
2: 18,000।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वर्तमान सरकार हमारी सहूलियत के लिए अनेकों योजनाएं हमारे लिए लेकर आती रहती है और इसकी अधिकतर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है। हाँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। योजनाओं को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को।
3: खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में करीब 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आगे आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
4: जैसे कि ये कहा जाता है कि पूरे भारत में भी हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हमारे जो जिला है उधम सिंह नगर उत्तराखंड, उसका कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काशीपुर में स्थित है। जहाँ तक इनके उद्देश्यों की बात है, उसके उद्देश्य ये होते हैं कि जो भी तकनीकी जो शोध संस्थान द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, ICAR के द्वारा जो विकसित की जाती है, उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। हम अपने यहाँ किसानों के प्रक्षेत्र पर भी और कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनका आयोजन करते हैं। यहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि कृषि में जो नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हैं। इसके अतिरिक्त हम कृषकों के प्रक्षेत्र पर जाकर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। उनको ये बताया जाता है कि जो भी नवीनतम तकनीकी है वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है, उन्हें हम वहाँ हम करके दिखाते हैं। हम इसमें कुछ कृषकों का चयन करते हैं और उन्हें करके बताते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे बुआई करनी है और कैसे इसकी कटाई करनी है और कैसी ये तकनीक जो है उनके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे प्रक्षेत्र पर जो भी हमारे पास लगभग 20 हेक्टेयर का फॉर्म है, इस फॉर्म पर हम लोग उन्नतशील प्रजातियों के जैसे गेहूं के, धान के, सब्जियों के और लेग्यूम्स के, दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के बीज बनाते हैं और हम उनको उचित रेट पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी ये उन्नतशील हमारे पास सब्जियों की पौध होती है या उन्नतशील फल पौध होती है हमारी, वो भी हम किसानों को समय के अनुसार और उनकी ऐसे एज पर देयर नीड्स उनको हम किसानों को हम देते हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह से किसान भी आते हैं जो डिमांड भी करते हैं कि सर हमको फलानी वैरायटी का ये बीज चाहिए, तो वो हम बीज को हम अपने बनाकर किसानों को देते हैं। इस तरह से हम अपने जो उद्देश्य हैं उसका हम कार्य कर रहे हैं।
3: केवीके ने अपने आयामों में समय के साथ इजाफा किया है। आज किसान केवीके से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहे हैं बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवीके अब किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि केवीके का लक्ष्य है कृषि में समृद्ध दायरे को बढ़ाना।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं कड़कनाथ पालन को लेकर कुछ और विशेषज्ञों की राय। कैसे कड़कनाथ पालन हम कर सकते हैं, कहां से हमें लेना चाहिए, और कड़कनाथ पालन में हमें कितना खर्चा लगता है, और कड़कनाथ पालन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कड़कनाथ पालन कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या खाना हमें देना चाहिए, क्या दवाई हमें उन्हें देना चाहिए, और कैसे रखना चाहिए कड़कनाथ मुर्गी का ख्याल, जानेंगे इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को।
5: ये आवाज है झाबुआ की, और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
0: आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
6: खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में। यही वजह है कि किसान खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालन करके दोहरा लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ, शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियां, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 mg होता है। प्रोटीन की मात्रा 20-24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसका नाम है RB ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है।
7: इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5-6 महीने लगते हैं, तो 5.5-6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं, और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक। पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं, जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों को भी अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है ताकि मुर्गियां बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियां खा सके, खुले में खा सके, और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं जिससे अंडा भी हेल्दी होता है।
6: कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे, खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो।
7: कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें, अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया जरूर रखें, जहां आपके बड़े बच्चे बड़े होते रहेंगे उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहें, ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें, जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी उतना ही ज्यादा आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की।
6: राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह, अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके।
7: युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए, खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है, 100% बच्चों का देखरेख करनी पड़ती है, वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है, उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है, अगर करें 100% करें।
6: राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है।
5: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
0: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। मुर्गी पालन से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए जानते हैं अरविंद भाई से, कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों को लेकर सचेत होना चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
2: तो आपको इस ये बिजनेस आप कर रहे हो, आपको क्या ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो आपको मतलब ऐसा लगा कि हमको मतलब किसानों को सचेत रहना चाहिए इस चीज को करने से पहले, क्या क्या चीजें जरूरी होती है ये पालने के लिए और क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है कि हम इसको अच्छे से पाले और अच्छे स्तर पे इसको ले जा सके।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: देखो मेरा ये सुझाव है कि जैसे 100 मुर्गे पालें पहले, अभी 100 मुर्गे पालने से अपने को अनुभव हो जाएगा
2: बिल्कुल
3: कि अपने को फायदा कितना हो रहा, घाटा कितना हो रहा,
2: बिल्कुल
3: कितने बिक रहे हैं
2: बिल्कुल
3: है ना,
2: बिल्कुल
3: और कितना खा रहे हैं,
2: कितना खा रहे हैं
3: वो सब अनुमान लग जाएगा।
2: हाँ।
3: तो उसके पहले अपने को ये फॉर्म बनाना पड़ेगा,
2: फार्म बनाना पड़ेगा
3: उसको
2: बिल्कुल,
3: और थोड़ा ऊंचाई में रहना है चाहिए वो।
2: अच्छा, ऊंचाई में होना चाहिए
3: कम से कम 13-14 फीट।
2: बिल्कुल,
3: उससे क्या है कि गर्मी नहीं लगेगी उसको।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और फिर उसके पहले बनने के बाद फिर ये लकड़ी का भूसा रहता ना,
2: छुरी को
3: डाल देने के नीचे
2: बिल्कुल,
3: और इसके बाद लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी
2: बिल्कुल, इनको लाइट की जरूरत रहती है,
3: लाइट बहुत गर्मी उसको चाहिए।
2: अच्छा, गर्मी ज्यादा चाहिए।
3: हाँ। और ठंडक में गर्मी और गर्मी में ठंडक होनी चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना है।
2: वातानुकूलित उनके हिसाब से रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
3: और क्या है कि इनको मतलब ज्यादा हवा में नहीं छोड़ने का।
2: अच्छा,
3: क्या है कि वायरस आ जाए,
2: वायरस आने के डर,
3: और जो बाहर जो फार्म है वहाँ पे मतलब बाहरी व्यक्ति को भी अंदर नहीं जाने देने का।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: क्या है इससे अगर आए तो वो क्या है, ये जो दरवाजा है ना, दरवाजे के पास में चूना लगा के रखना चाहिए।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: तो चूने से क्या है कि वो सारे जो कीटाणु रहते हैं ना,
2: अच्छा अच्छा,
3: चप्पल से
2: सारे
3: वो उसको ऊर्जा के कारण वो नीचे गिर जाते हैं और चूने में गिर जाते हैं, मर जाएंगे।
2: बहुत ही अच्छी बात बताई आपने अरविंद भाई हमको कि किस तरीके से हमें चूना सामने रख के किस तरीके से इनका बचाव कर सकते
3: हैं। और अपन एक ये भी बात है कि जैसे लाइट,
2: अच्छा लाइट,
3: लाइट को मतलब लगातार जलाना चाहिए उसको।
2: बिल्कुल, लगातार उसको जलाते रहना चाहिए।
3: हाँ, जैसे गर्मी में वो वाले बल्ब ले आओ।
2: बिल्कुल,
3: वो छोटे वाले।
2: हाँ।
1: किसान भाइयों, अरविंद भाई ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया, कैसे हमें उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं उन्हें देनी चाहिए, साथ ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक नए आदमी को फॉर्म में जाने से पहले हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से लाइट का उपयोग होना चाहिए, कैसा वातावरण कड़कनाथ मुर्गियों के लिए अनुकूलित होता है, साथ ही अन्य जानकारियों को भी हमने जाना।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे थे कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को, कैसे हमें सचेत रहना चाहिए, हमें किस समय पर किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आदि जानकारियों को आपने जाना। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए सुनते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत।

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका। आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टाइमटेबल 90.8 एफएम के साथ। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे अरविंद भाई की कलीपुरा के सफल किसान की दास्तां। आइए सुनते हैं एक और सफल किसान की दास्तां।
1: अच्छा। मुनाफा कितना हुआ?
2: मुर्गी पालन का व्यवसाय मैंने इसलिए अपनाया, जैसे आप देख सकते हैं, आप हमारे ये पास ये जमीन है मेरे दादाजी के लिए हुई, तो दादाजी को मुर्गी पालन का बहुत शौक था। पर जब दादाजी मुर्गियां लेके आते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारणवश, तो मैंने देखा कि हम लोग पढ़े लिखे क्यों ना इनको बचाया जाए, तो मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स किया। तब पता लगा हम क्या गलतियां कर रहे हैं और फिर वहां से शुरू किया। तो जब मैंने उसी कोर्स के दौरान मैंने कड़कनाथ ब्रीड के बारे में पढ़ा, तो ये बड़ी नई ब्रीड लगी, बड़ी एक्साइटिंग ब्रीड लगी। सो हम लोग जाके फिर शुरुआत में 5 मुर्गियां 2 मुर्गियां लेके आए और एक छोटे से कमरे पालना शुरू किया और करते करते वो 40 हो गई और उनको देख के लोग डिमांड करने लगे, तो डिमांड करते करते इसको एज अ व्यवसाय कर लिया एंड हम लोग मुनाफा कमाने लगे।
3: बड़े पैमाने पर मुर्गी उत्पादों का निर्यात करता है। 2020-21 के दौरान ही 2.5 लाख टन से ऊपर के उत्पाद दूसरे देशों को भेजे गए। इससे 435 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई। अगर आप भी खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, तो मुर्गी पालन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। मुर्गी पालन न सिर्फ आसान है बल्कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होती।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और ये जल्दी ही आमदनी भी देनी

0: शुरू कर देता है। साथ ही लाभ भी अच्छा है और लगातार आमदनी होती रहती है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना कम रहेगी। हमारे देश में खुले आसमान के नीचे भी मुर्गी पालन का रिवाज है, लेकिन इस विधि में अंडा उत्पादन कम और पक्षियों के बीमार पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए बेहतर है कि इन्हें आवास में ही पाला जाए। मुर्गी पालन के लिए आपको हैचरी से एक दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1,000 चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छे मुनाफे के लिए 4 किस्में प्रमुख हैं। इनके नाम हैं बैबकॉक, हाईलाइन, बोवंस और लोमैन। बैबकॉक की 80-85% किस्में भारत में पाई जाती हैं।
1: ने एक मुर्गी से एक हैचिंग पीरियड बोलता है, लेइंग पीरियड बोलता है, उसी लेइंग पीरियड में कम से कम 200-250 अंडा निकाल सकते हैं। अगर 200-250 अंडा एक मुर्गी निकालते हैं तो हमने ये देखा गया है जो 200 मुर्गी से कम सालाना 4-5 लाख रुपया उनकी इंसान की आमदनी होती है। तो अगर 4-5 लाख रुपया साल में आमदनी होती है तो लगभग आप देख लीजिए उनसे कितना महीने में कितना अंडा आ रहा है। और ये जो आमदनी होती है ये रोज का आमदनी है।
0: कौन सी किस्म आपको चुननी है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस उद्देश्य से मुर्गी पालन कर रहे हैं। अंडा उत्पादन के लिए अलग किस्में चुननी होंगी और मांस उत्पादन के लिए अलग। अंडे देने वाली मुर्गी 20 हफ्ते में ही आमदनी देना शुरू कर देती है। 20 हफ्तों तक करीब 200 रुपए प्रति मुर्गी की लागत आएगी। इसके बाद करीब 250 रुपए हर रोज का खर्च एक मुर्गी पर करना होगा। आप घर पर दाना तैयार करके लागत 20% तक घटा सकते हैं।
2: देखा जाए तो अभी हम बहुत अच्छे मुनाफे में है। हमारे पास जो अभी हम जैसे हमारा साइकिल कैसे चलती है वो है कि हम बच्चे पालते हैं, बच्चे में से जो मुर्गियां होती है मुर्गी हम रखते हैं अंडे की प्रोडक्शन के लिए और मुर्गा बेच देते हैं। मुर्गा तो जल्दी निकल जाता है तो हम क्या करते हैं लोगों को हम इसी बहाने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से मुर्गियां खरीदते हैं, मुर्गी हमारी खुद की रहती है, मुर्गियां खरीदते हैं और हर महीने मुर्गा बेच देते हैं। तो हम हर महीने पूरे हिंदुस्तान से कम 200-500 मुर्गे मंगा के बेचते रहते हैं पूरी दिल्ली NCR में। तो ऐसे हमारा मुनाफा भी बढ़ता रहता है, हमारी मुर्गी की प्रोडक्शन भी चलती रहती है और दूसरे किसान भाइयों की भी हम मदद कर देते हैं।
0: सर्दियों में अंडे की खपत ज्यादा होती है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, इसलिए चूजे ऐसे समय पर खरीदें जिससे सर्दियों के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा अंडे मिल सकें।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी प्रकृति में हमेशा से बदलाव आते रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण फसलों में और जीव जंतुओं में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कैसे हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बदलते वातावरण में कैसे हम हमारे पशुओं को, हमारे चूजों को वातानुकूलित रख सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखकर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं।
0: मुर्गी पालन के लिए आपको चूजे हैचरी से लेने होंगे। वहां से सिर्फ एक दिन के चूजे दिए जाते हैं। 6 हफ्तों तक इन्हें अलग आवास में रखेंगे। ये आवास चारों तरफ से बंद हो ताकि बाहर की हवा अंदर न जाने पाए। 6 हफ्ते बाद ग्रोअर स्टेज शुरू हो जाएगी। अब चूजों को दूसरे आवास में ले जाएंगे। याद रहे कि हर मुर्गी को 1-1.5 वर्ग फुट की जगह चाहिए, यानी अगर आप 1,000 मुर्गियां पाल रहे हैं तो 1,000-1,500 वर्ग फुट के आवास की जरूरत पड़ेगी। सर्दियों में खिड़कियों को बोरों से ढक कर रखना होगा और अंदर का तापमान बढ़ाने के लिए उपाय करने होंगे, जबकि गर्मियों में उन्हें अधिक तापमान से बचाने के लिए पंखे या कूलर का इंतजाम करना होगा। गर्मियों में दाने की खपत काफी कम हो जाती है उसे बढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे या 5 बजे से ही दाना खिलाना शुरू करते हैं। उसके बाद 1-2 बजे तक दाना न दें। गर्मियों में पानी ज्यादा पिलाएं। बरसात के मौसम में खिड़की के बाहर प्लास्टिक की शीट लगा दें, ताकि बारिश का पानी अंदर न जाने पाए। आवास में लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी की बिछावन करनी होगी। ध्यान रहे, बिछावन को गीला होने पर तुरंत बाहर निकाल दें। गीला बिछावन मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। अंडों के लिए आवास में बक्से जरूर रखें। हर 10 अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 1 बक्से की जरूरत होगी। मुर्गी इसी में जाकर अंडा देगी। मुर्गी की 3 स्टेज होती है, चूजे, ग्रोअर स्टेज और परिपक्व मुर्गी। तीनों के लिए अलग अलग तरह के दाने की जरूरत होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के दाने में कम से कम 17% प्रोटीन और 27-28% कैलोरी होनी चाहिए। साथ ही 3-4% कैल्शियम भी हो, वरना अंडों के छिलके बहुत पतले रह जाएंगे।
1: जो भी किसान भाई मुर्गी को पालेंगे उसको बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करके पाले। और मुर्गी के लिए सारे टीका उपलब्ध है, सारे के सारे मुर्गी को सब टीका लगा सकते हैं और वो सरकारी में भी उपलब्ध है और बाहर से भी खरीद सकते हैं। वो खरीद के सारे टीका लगा लीजिए। मान लीजिए आपकी छोटे उम्र से गांबोरो लगा लीजिए, रानीखेत लगा लीजिए, उसमें रानीखेत दो बार लगाते हैं, और उसमें हमने फाउल कॉलेरा लगा लीजिए, फाउल टाइफाइड लगा लीजिए, जो सारे बीमारी। और हमने जो किसान को बोलते हैं, आप देसी के साथ जो विदेशी वैरायटी का जो क्रॉस होता है उसको पालिए, तो उसके रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होती है।
0: मुर्गियों में आमतौर पर रानीखेत, ब्रुसेल संक्रामक रोग और मैरेक्स जैसी बीमारियां लग सकती हैं। कभी कभी फाउल पॉक्स भी लग जाती है। आजकल रेबिल इन्फ्लुएंजा की भी शिकायत मिलने लगी है। सभी बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये टीके 2-3 बार लगाने होंगे। टीके सही वक्त पर लगवाएंगे तो बीमारी का खतरा नहीं होगा। वैसे हैचरी से मैरेक्स और रानीखेत का टीका लगाकर ही आता है। हाँ, कुछ हैचरी सिर्फ मैरेक्स का ही टीका लगाकर देती हैं। ऐसी स्थिति में रानीखेत का टीका 2-3 दिन बाद आपको अपने फार्म पर लगवाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 1 अंडे पर 50 पैसे से 1 रुपए तक का फायदा मिलता है। इस हिसाब से 1000 मुर्गियों से हर महीने 20,000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। हाँ, आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी।
5: के पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालकों को लोन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
0: सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है। इसमें कुक्कुट पालन के लिए भी कई घटक शामिल किए गए हैं। खासकर ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास और नवाचार कुक्कुट उत्पादकता परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के जरिए मुर्गी का आवास, आहार, दवाई और जरूरी यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार पशुधन स्वास्थ्य और व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंतर्गत अलग अलग बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस काम के लिए जिला प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
4: आपनू रेडियो, आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM, झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज आपने मुर्गी पालन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। मुर्गी पालन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां आती है, साथ ही हमें मुर्गियों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें कौन कौन से टीके लगाने चाहिए, समय समय पर क्या खाना पानी देना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अगर आप कड़कनाथ मुर्गी लेना चाहते हैं या कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे लेना चाहते हैं, तो आप कल्लीपुरा के अरविंद जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 8770939905। किसान साथियों, आप उन्हें कॉल करके या फिर उनके घर जाकर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
4: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। दोस्तों यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बना रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM के साथ।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं ममता जी गांधीधाम से, और उनके साथ हैं प्रीतन जी बड़ौदा से और दीपक बड़ौदा से। ये तीनों क्लासमेट्स हैं, जीवन साधना स्कूल में साथ पढ़ते थे, और आइए स्वागत करते हैं तीनों का।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू।
0: तो ममता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, आपका परिचय दीजिए और आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं?
3: मेरा नाम ममता रानी एस चक्रवर्ती है। मैं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में जॉब करती थी। 30 अप्रैल 2025 को मैं रिटायर हुई और मैं गांधीधाम कच्छ में रहती हूँ।
0: तो दोस्तों, आपने सुन लिया, गांधीधाम कच्छ में रहती हैं ममता जी। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मेरा दूसरा सवाल आपसे, ममता जी, स्कूल टाइम के दौरान आपका सबसे सुनहरा पल, खुशी का पल कह सकते हैं, वो कौन सा था?
1: वैसे तो स्कूल में हर पल ही खुशी का था, लेकिन हाँ, मेरा एक दोस्त रितिन जो स्कूल के पीछे ही रहता था, स्कूल से छुट्टी होती थी हम वहीं पे जाते थे, उनकी मम्मी हमको प्रसाद फ्रूट खिलाती थी, और वहाँ की वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पे आस पास हम लोग पकड़ पड़े खेलते थे।
0: ओह नाइस, प्रीतम जी कुछ ऐड ऑन करेंगे?
2: हाँ, वो समय एक बहुत वो समय वहाँ बहुत बढ़िया था, और हम लोग सब इतने एंजॉय करते थे, और साथ में पूरी पूरी ग्रुप रहती थी, इसके लिए और एंजॉय होता था। स्कूल छूटने के बाद भी घर पे भी सब लोग इकट्ठे होते थे, तो वो एक अलग ही समय था हमारे लिए।
0: जी दीपक जी,
3: वो तो एकदम अनफॉरगेटेबल बोलते ना टाइम था, और ऐसा होता था स्कूल जरा जल्दी छूटे तो प्रीतम के घर पे जाके मस्ती करे और बाद में घर जाए।
0: तो दोस्तों, सुना आपने, तीन दोस्त लोग कितने मिलजुल के एंजॉय करते थे लाइफ को, और स्कूल कंपाउंड स्कूल के बिल्कुल पीछे प्रीतम जी का घर था, वहां पर इकट्ठे होके लोग खेलते थे, मजेदार पल रहा होगा डेफिनेटली। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक खूबसूरत सा नगमा।

0: ममता जी, आपके सबसे फेवरेट शिक्षक वो कौन थे और क्यों?
1: वैसे तो सब टीचर्स ही मेरे फेवरेट थे, बट उसमें से शारदा मैडम मुझे ज्यादा पसंद थी। वो SST पढ़ाती थी और वो बहुत अच्छे गाने गाती थी। गानों का तो मुझे वैसे ही शौक है।
0: तो ले आइए उनको आज के कलाकार प्रोग्राम में हमारे यहाँ।
1: वो शायद US में है।
0: ओ, नहीं, US में भी हमारा तो प्रोग्राम सभी जगह जाता है ना, तो कोई इशू नहीं है।
1: कोशिश करूंगी।
0: जरूर से। कोई कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो बताइए, प्रीतन जी, दीपक जी।
2: हमारे स्कूलिंग में कैसा था कि दो तीन सर ऐसे थे कि एक पटेल सर थे जो हमारे गुजराती सिखाते थे
0: जी,
2: और जिसने गलती से वो आके क्या करते, पहले एक फुटपट्टी दे दो बोलेगा, किसी को भी एक स्केल देने को बोलेगा, यानी जो गलत आंसर दिया उसको स्केल से मार पड़े। लेकिन सबसे तकलीफ की बात क्या होती, जिसने स्केल दिया उसी को आखिर में मार तो पड़ता था स्केल लौटाने के पहले।
0: और ये स्केल के मार तो मैं भी काफी खाया हुआ हूँ, तो उसका दर्द काफी रहता है। वो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ही।
3: सबको मार का प्रसाद मिला है।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगला एक खूबसूरत सा नगमा।

हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: ममता जी, फर्ज करो कि आपको कोई एक जीन मिल जाए और तीन इच्छाएं आपको पूरी करने के लिए कहेंगे, तो आप क्या, कौन से इच्छाएं आप पूरा करना चाहोगी?
1: सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं हूँ इंक्लूडिंग मी, तो सबको अच्छी सेहत दे। दूसरी इच्छा मेरी ये होगी कि मुझे इतना धन दौलत दे ताकि जरूरतमंद को मैं मदद कर सकूं। और तीसरा है, मेरे करीबी लोग, रिश्तेदार, दोस्त जो भी है, उनके लिए मैं अच्छी दुआ मांगू, उनकी सब इच्छाएं पूरी।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, तीन इच्छाएं आपने पूरी कर दी, बहुत अच्छी बात।
2: उसमें सभी कवर हो गए।
0: हाँ, सब कवर हो गए, सही कह रहे हैं आप।
3: मैं तो बोलूंगा ईश्वर सबको एक ही बुद्धि दे।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: स्कूली शिक्षा के दौरान आपका मजेदार पल कौन सा था, जो एक बिल्कुल मजेदार, जो आपके आपको हमेशा उसके वो चीज याद आती है तो आपको हमेशा यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट? ममता जी,
1: मजेदार पल वो था कि जब मेरा दोस्त दीपक मजेदार जोक्स और किस्से सुनाता था ताकि पूरे क्लास का माहौल खुशनुमा हो जाता था।
2: वो आज भी ऐसा ही है।
1: हाँ, वैसा ही रहेगा और भगवान करे वैसा ही रहे।
2: हाँ, यस,
3: आप लोग की कृपा है, आप लोग के आशीर्वाद है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आशीर्वाद बहुत जरूरी होती है।
3: तो और इतना स्नेह है।
0: तो दोस्तों, आपने सुना ये तीनों की मित्रता कितनी स्टेबल है, तो सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: आप अपने स्कूल वालों को कोई भी गीत समर्पित करना चाहेंगी?
1: जरूर। वैसे तो ये दो दोस्तों का सॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए समर्पित करती हूँ।

0: वाह क्या बात है, लो गा के ही सुना दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: मैग्निफिशिंग ममता,
0: यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: ममता जी, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए।
1: हाँ जी बोलिए।
0: आपका पसंदीदा गायक?
1: किशोर कुमार।
0: पसंदीदा रंग?
1: सैंडल।
0: पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस?
1: अक्षय कुमार एंड माधुरी दीक्षित।
0: पसंदीदा पुस्तक?
1: Means I used to like comics, Laurel and Hardy, Titan.
2: कौन सा?
0: Laurel and Hardy.
1: Laurel and Hardy.
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: ममता जी, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है मगर पूछना जरूरी है। अगर कोई दुश्मन आप पर एक किताब लिखना चाहे तो उसका शीर्षक क्या होगा?
1: प्यारा दुश्मन।
0: प्यारा दुश्मन, अरे वाह क्या बात है। तो ये दोनों में से कोई एक तो दुश्मन तो नहीं है ना?
1: नहीं, सब मेरे प्यारे दोस्त हैं।
2: वो तो उसने साइलेंटली बता दिया।
0: प्रीतम जी को कुछ ऐड ऑन करना है?
3: नहीं, ये शीर्षक तो उसने बहुत अच्छा सुन लिया है, प्यारा दुश्मन
0: जी।
3: लेकिन मैं वही बोलता हूँ, हम किसी से कम नहीं, वो धुन तो रहना ही चाहिए हर, चाहे वो कोई भी आए, लेकिन हम किसी से कम नहीं का फॉर्मूला रहने से वी आर ऑलवेज सेफ, हम हमेशा सेफ रहेंगे और कॉशियस रहेंगे लाइफ में।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों सुनते हैं एक खिलखिलाता हुआ गीत।
4: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
5: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
4: नहीं।
5: थोड़ा भी नहीं?
4: नहीं।
5: झूठा भी नहीं?
4: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

0: ममता जी, ऐसा कौन सा गीत है जो आपका पर्सनालिटी को सूट करता है?
1: मैं 60 की हो गई हूँ नितिन, लेकिन टिल डेट आई एम चुलबुली, तो उस हिसाब से मुझे ना गाना पसंद है, चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफी या
0: ओ नाइस,
1: आगे नहीं आता बट दैट इज माय फेवरेट।
0: ओके भाई, आप दोनों को कुछ ऐड ऑन करना है?

0: मैं तो ऐसा सोचा कि वो हमको क्या खिलाने वाली, उसकी बात बोली। ये तो बोलते मुझे पसंद है, यानी अपन को लेके जाने का है, समझ गया प्रिंसेस।
1: हाँ
2: अभी बॉल, अभी बॉल मैदान में आ गया भाई।
0: ममता बहुत खुशी है तूने ज्वाइन किया, ये बहुत अच्छा बात है, बहुत मजा आ गया। हम काफी टाइम से सोच के गए कि ममता ने को ऐड करो, ऐड करो, ममता को प्रोग्राम में लाओ, तो कुछ प्रोग्राम में जान आएगा।
2: जी बिल्कुल।
0: अभी अभी तक तो हम लोग वेंटिलेटर पे थे। गुड गुड।
3: तो दोस्तों सुनते हैं एक खूबसूरत सा नगमा।

0: ममता जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: श्रोताओं को ये मैसेज देना चाहूंगी, अच्छा काम करो, सबको मदद करो, खुश रहो, दुआएं लो और दुआएं दो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो।
0: बिल्कुल। और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में आप दोनों कुछ ऐड करना चाहेंगे?
2: मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा हम अपने लिए चाहते हो आपके लिए चाहो।
0: जी प्रीतम जी,
3: और आखिर में कर भला सो भला, आप अच्छा भला करोगे तो रिटर्न भी वही आएगा आपके पास।

0: तो आप तीनों हमारे प्रोग्राम में आए। ममता जी, ये प्रोग्राम आपका था और आपने आपने दोनों फ्रेंड्स को इनवाइट किया ये प्रोग्राम में, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करते हुए, आप तीनों से बात करते हुए बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अवर प्रोग्राम, और हमारे इस प्रोग्राम को आप ज़रूर प्रमोट करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव्स में। इसके अलावा हमारे पास दूसरा एक प्रोग्राम है जो आज के कलाकार चल रहा है, जिसमें हम नए सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर रहेगा हमारे रेडियो चैनल के लिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
2: थैंक यू
1: नितिन जी। थैंक यू।
0: थैंक यू
2: फॉर इनवाइटिंग मी।
0: थैंक यू। थैंक यू।
3: खूब खूब आभार।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। लीजिए दोस्तों, हाजिर हैं सीमा मैम, आज की प्रतिभा, आज की टैलेंट, आज की सिंगर। हम सीमा मैम के बारे में जानेंगे, सीमा जी से बातचीत करेंगे, कौन है वो, भला क्या करती है वो, कहाँ है वो, और फिर उनके संगीत का आनंद उठाएंगे। तो सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। और हमारी जो आज के कलाकार की फैमिली है ना, उनसे थोड़ी सी बात कीजिए, वो एंक्शस हैं। They wish to know about you. Who are you? Okay. कौन हो आप, कहाँ हो, क्या करती हो आप, थोड़ा बताइए ना।
1: ठीक है, मैं मुंबई में रहती हूँ और I'm an HR professional और been working for the last 17 to 18 years और अभी फिलहाल it's more on flexibility kind of work from home COVID से, but also into a different industry like social media, वो भी handle करती हूँ मैं।
0: Okay.
1: And yeah.
0: Please go on, बोलिए ना।
1: हाँ, and also singing has been a beautiful journey in my life, and it just came into my life ऐसे ही। ऐसा कुछ ये नहीं था कि मुझे सीखना है, but that has become a very important aspect of my life now.
0: Cool. बहुत सुंदर। तो दोस्तों, मैं सीमा जी को थोड़ा सा छेड़ना चाहूंगा आप सब लोगों की इजाजत से। सीमा जी, पहले तो मुझे यह बताओ, एचआर का क्या मतलब, ह्यूमन रिलेशंस या ह्यूमन रिसोर्सेज?
1: इट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो रिक्रूटमेंट में है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वो स्पेशलाइजेशन है।
0: ओह माय गॉड, यू पीपल आर डेंजरस, बिकॉज़ आई आल्सो हैव बीन वर्किंग इन इंडस्ट्री फॉर 35 इयर्स, एंड देन ऑफ कोर्स जिस लेवल तक मैं गया वहां पर रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि विद इन 10 डेज मेरे को 80 रिक्रूटमेंट्स करने का टास्क मिला था, 80। सो ऑफ कोर्स जो एचआर मैनेजर थे उनके साथ मेरा बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन रहा इमीडिएटली। सो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स यू अंडरस्टैंड, एंड बहुत सारे लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि रिज्यूमे इज, एंड देन वर्चुअल टॉकिंग, सो मेनी थिंग्स।
1: जी, अभी तो वर्चुअल टॉकिंग इंटरव्यू होते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो वी हैड टू वेट फॉर द कैंडिडेट्स टू कम, फिर वो आते थे, फिर वी हैड टू मेक देम कंफर्टेबल, तो वो एक अलग चीज होती थी तभी।
0: Sure.
1: अभी तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी, इट्स लिटिल डिफरेंट राइट नाउ, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। जी,
0: राइट। चलो दोस्तों, ऐसा करते हैं, मुझे बड़े सारे सवाल आ रहे हैं जो आप सब लोगों के लिए, मतलब जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत काम के रहेंगे, और सीमा जी क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो वो हमें हेल्प भी कर पाएंगी और हम लोग मजे भी करेंगे। लेकिन ठहरिए थोड़ा सा, पहले सीमा जी की संगीत को सुने फिर आगे बढ़े। तो लीजिए, पेश करता हूं वो गीत जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किए, आइए ना।

0: क्या शुरुआत है सीमा जी, अमेजिंग, थैंक यू, बड़ा मजा आया साहब। अच्छा सीमा जी, जो बात मेरे दिमाग में आ रही थी वो ये थी कि जमाना बदल गया है। हम आपके संगीत के बारे में और आपकी पर्सनालिटी के बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए, थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए, जमाना बदल गया है, डिजिटलाइज हो गया है, बहुत मॉडर्न हो गया है, बहुत बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करके, टेक्निकल एजुकेशन लेके, क्वालिफिकेशन लेके जॉब में आ रहे हैं, दे आर एस्पायरिंग टू बिकम गुड प्रोफेशनल्स। वहां पर रिज्यूमेज हमेशा से काम में आते रहे हैं और रिज्यूमे इज द फर्स्ट थिंग अ कैंडिडेट एक्चुअली सेंड्स टू अ कंपनी। अब मौसम बदल गया है तो बात डिजिटलाइज्ड हो गई है। आई एम ऑल्सो फीलिंग बिकॉज किसी जमाने में छोटे मोटे डिजिटलाइज्ड इंटरव्यूज मैंने किए, उस वक्त तो टीम व्यूअर वगैरह पे बातचीत हो जाती थी, बहुत हुआ तो स्काइपी पे हो गई। लेकिन आज के लिए मैंने कुछ एक जगह दो जगह देखा कि वर्चुअल रिज्यूमीज बनाने की बात करते हैं, दैट यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन बैकग्राउंड एंड देन यू टेल अबाउट योरसेल्फ, और वो वीडियो आप कंपनी में भेज दो या तो मैनेजर को या एचआर पर्सनल को। क्या यही हो रहा है सीमा जी?
1: वेल इफ इट इज लोकल तो वो उतना नहीं हो रहा है, बट देर आर पीपल हु डू सेंड वर्चुअल इंटरव्यूज। बट जो हम चाहते हैं कि अगर हम लोग एक फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल इंटरव्यूज होते हैं, तो फर्स्ट लेवल अगर हम लाइक वॉइस चैट या यू नो वीडियो कॉलिंग करें या व्हाट्सएप भी ले या टीम्स में ले लें, तो वो अच्छा होता है बिकॉज वी गेट अ सेंस ऑफ द पर्सन कि कैसे बात करते हैं, और तभी वो इतना टेक्निकल इंटरव्यू नहीं रहता है।
0: करेक्ट।
1: बट इट इज बेसिकली जो एटीट्यूड है, जो की पर्सनालिटी है, वो फिट होती है कि नहीं रोल में, तो वो हम गेज करते हैं और वहां से फिल्टर करके, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट पीपल्स टाइम आल्सो, क्योंकि इतने लंबे से लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहां पे फर्स्ट इंटरव्यू लेवल का वो फिल्ट्रेशन हो जाता है, एंड देन वंस वी फील कि सब यू नो ऑल द थिंग्स आर इन प्लेस, फिर हम उनको इनवाइट करते हैं टू मीट अस पर्सनली। बट जो मीटिंग पर्सनली होता है वो एक, दैट्स अ डिफरेंट, यू नो दैट्स एक्चुअली अ सीरियस वन टू वन टॉक। So we still prefer the old fashioned way of you know having the person come in front of us, kyunki tabhi hum unka jo interview karte hain is basically about the attitude, their you know their behavior and the way they are, aur fir baad mein technical interviews hote hain.
0: Sure, I perfectly understand that. Bas mera puchne ka uddeshya Seema ji ye tha, purpose ye tha ki कुछ कॉलेजेस में मैं भी जाता हूं तो वहां पर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम अपना रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करें, एंड देन वर्चुअल की बात आ जाती है, तो मैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप रिज्यूमे तो ऑन पेपर बनाइए ही, बट साइमल्टेनियसली आप एक वीडियो फॉर्मेट भी, मतलब आप समझो 2 मिनट का 1 मिनट का, सो दैट वो व्हाट्सएप के ऊपर भेजा जा सके, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज समझनी है, आपका एटीट्यूड समझना है, आप कैसे बात करते हो, कैसे प्रोनंसिएशन है, डिक्शन कैसा है, तो एक फर्स्ट हैंड इम्प्रेशन बनता है ना
1: जी।
0: उसके बाद ऑफ कोर्स आप लोग उनको भाई आप एक स्क्रीनिंग कर लेते हो, उसके बाद ऑफ कोर्स आपको जो जो, जो भी कैंडिडेट थोड़ा ठीक लगता है कि यार इसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, ही वाज यू नो अप्रोचिंग द कैमरा इन अ राइट वे, तो उसको बुलाओ, बात करते हैं
1: जी।
0: तो ठीक है, मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो दिस फर्स्ट यू नो इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों
1: बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज मेनी पीपल डू दैट, तो इट्स रियली गुड, आई मीन, और फिर उनकी जो बोलने का जो फ्लुएंसी होती है वो भी पता चलता है। एंड सपोज अ पर्सन हु इज इनटू बिजनेस डेवलपमेंट, सो दैट इज वन ऑफ सेल्स में है, मार्केटिंग में है, तो वो एक टेक्निक और यू नो दैट काइंड ऑफ फ्लुएंसी वो पता चलता है, सो इट हेल्प्स एक्चुअली इन फिल्टरिंग अ लॉट ऑफ रेज्यूमेस लाइक दैट।
0: लेकिन सीमा मुझे यहाँ पर ये बताइए ना, अगर किसी कैंडिडेट ने आपको अपनी वर्चुअल रिज्यूम में भेज दिया, मतलब वीडियो है ना
1: जी,
0: आप नाराज तो नहीं होते हो ना?
1: नहीं नाराज क्यों?
0: नहीं नहीं, आपको लगता होगा यार
1: नहीं
0: ऑडेसिटी ऑफ द कैंडिडेट कि भाई यार अच्छा मेरे को वर्चुअल रिज्यूम ही भेज दिया यार, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना
1: इंप्रेस करने के लिए? नहीं,
0: क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैम, क्योंकि कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर हमने वर्चुअल रिज्यूम भी बना के भेज दिया तो एचआर वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे? वो कहेंगे अच्छा कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रहा है बच्चा, ऐसा करके। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं होता।
1: नहीं, क्योंकि आजकल बहुत लिंक्डइन में जो है फैसिलिटी भी है जहाँ पे वर्चुअल कॉल कर सकते हैं इमिजिएटली, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे भी अप्रोच करते हैं, सो विच मेक्स लाइफ अ लिटिल मोर इजी फॉर
0: करेक्ट
1: रिक्रूटर्स ऑल्सो,
0: करेक्ट,
1: यू
0: इजी
1: नो
0: के साथ साथ,
1: सो
0: इजी के साथ साथ बेटर भी तो होगी ना सीमा, कि आपको
1: जी
0: कैंडिडेट
1: एब्सोल्युटली
0: इमीडिएटली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चांस देखने को मिल रहा है, उसकी बात सुनने को
1: जी
0: मिल रही है। आफ्टरऑल
1: यस
0: डिजिटलाइजेशन का यूसेज हम कब करेंगे, दैट्स द पॉइंट।
1: एब्सोल्युटली
0: बहुत बढ़िया,
1: एब्सोल्युटली
0: बहुत बढ़िया, एक बहुत ही प्यारी गाइडेंस सारे बच्चों के लिए जो भी हमारा प्रोग्राम आज सुन रहे होंगे, उनको बहुत क्लैरिटी आई होगी, चाहे छोटे लेवल की पोजीशन हो चाहे बहुत बड़े लेवल की पोजीशन हो। वर्चुअल रिज्यूमीज वर्क। चलिए
1: यस
0: बहुत ही प्यारे से गीत सुनवाता हूं सीमा जी ने हम हमारे लिए बहुत मेहनत की और रिकॉर्ड किए, आइए दोस्तों उनका लुत्फ उठाएं और फिर वापस आए सीमा जी के पास।

0: तो आपके संगीत को समझने के लिए तो सबसे सबसे इजी क्वेश्चन तो पहले ये आएगा, नंबर वन एंड देन नंबर टू. नंबर वन इज कि आपने अपनी संगीत की, अपनी गायकी की, अपने इस पैशन की शुरुआत कब करी? एमेच्योर या ट्रेंड, वो सब ठीक है, बट गायकी कब शुरू करी पहले तो ये बताइए. नंबर टू, किस तरीके का संगीत पसंद करती हैं आप? आई मीन टू से क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, भजन, यू नो सूफी, यू नो अनप्लग्ड, किस तरीके का म्यूजिक आपको ज्यादा पसंद है? सो आई आस्क्ड टू क्वेश्चंस, बताइए ना.
1: सो द फर्स्ट क्वेश्चन लेट मी आंसर यू कि मैंने शुरू की 2004 में. ओके
0: ओके.
1: सो मेनी मेनी इयर्स अगो एंड या इट जस्ट एक्सीडेंटली केम इनटू माय लाइफ. और एक्चुअली गाने की रुचि थी, म्यूजिक की बहुत रुचि है. ओके एंड इट वाज नॉट अबाउट सिंगिंग बट लिसनिंग टू म्यूजिक. लाइक आई एम अ फैनेटिक, पैशन ऑफ लिसनिंग टू एनी काइंड ऑफ म्यूजिक. तो इट जस्ट हैपन कि 2004 में मेरी एक वेरी करीबी दोस्त है, फ्रेंड, उन्होंने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट वी यू नो ज्वाइन अ एकेडमी, अ क्लास. तो आई सेड ओके हम जाएंगे एंड वी स्टार्टेड अ क्लास टुगेदर, श्रुति संधानास एकेडमी करके हैं. और हम लोग वहां पे रजिस्टर करके वी केम एंड देन वी सॉ द काइंड ऑफ क्लासेस विच वर हैपनिंग एंड स्टफ लाइक दैट. एंड देन द होल जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 2004 और इट कंटिन्यूज स्टिल टुडे. द सेम फ्रेंड ऑफ माइंड, मी एंड हर, वी कंटिन्यू टू लर्न म्यूजिक.
0: आपने कहा एकेडमी, डज दिस मीन कि आपने क्लासिकल सिंगिंग को प्रॉपरली सीखा?
1: जी नहीं. सो दिस इज लाइट हिंदुस्तानी म्यूजिक विच इज बीइंग टॉट. और जस्ट एज वी लर्न द म्यूजिक, तो क्या होती है, अगर हम, ये मेरा मानना है कि वंस वी एंटर, बिकॉज एट द एज दैट वी स्टार्टेड, ओके, जब हम डायरेक्टली क्लासिकल में एंटर होते हैं, वो थोड़ी सी झिझक होती है कि वी वोंट बी एबल टू डू दिस. तो दैट वाज माय काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि ये बहुत ही इंटेंस है, ये बहुत ही, ये राग सीखना ये है बहुत इंटेंस है. सो बट व्हेन वी टुक दिस अप्रोच फ्रॉम दिस एकेडमी, दे पर टीचिंग अस, लाइक मेरे गुरु हैं उमेश विपिन सर, उमेश विपिन खरे,
0: जी
1: और उन्होंने यू नो ही स्टार्टेड अस विद लाइट हिंदुस्तान क्लासिक, लाइक फिल्म म्यूजिक विच वर ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स हैं, गजल्स हैं ऐसे. तो वो हमारी जो संगीत की रुचि थी वो यू नो ही सॉर्ट ऑफ एनहेंस्ड इट.
0: ऑलराइट, सो दिस वे
1: सॉरी.
0: एक्चुअली इट हैज स्टार्टेड विद योर म्यूजिक. ओके, देन
1: जी
0: सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक?
1: यस. सो आई लाइक ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स. आई लाइक हिंदी म्यूजिक, आई लाइक इंस्ट्रूमेंटल, आई लाइक लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक. जो पंडित भीमसेन जोशी हैं, पंडित जसराज हैं, आई लाइक कोक स्टूडियो म्यूजिक. तो इट्स अ वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स एंड म्यूजिक दैट आई लाइक, इंस्ट्रूमेंटल आई लव. तो
0: सीमा जी प्लीज यार, बहुत जेनरिक आंसर हो गया. थोड़ा सा म्यूजिक बताइए ना जो एकदम कहीं दूर बजता हो, आपके कानों में पड़ जाए और आप बस खो जाते हो. ऐसा कोई तो म्यूजिक होता है ना, जैसे सूफी है या भजन है, मतलब आई मीन बी स्लाइटली मोर स्पेसिफिक.
1: सूफी, सूफी, यस,
0: सूफी. ऑलराइट,
1: आई लव सूफी म्यूजिक. यस, आई लव
0: दैट्स अ
1: सूफी
0: पॉइंट,
1: मोर.
0: दैट्स अ पॉइंट. पॉइंट ये
1: जी जी
0: होता है कि देखो मैम, पॉइंट इज कि हम लोग भी म्यूजिक में ही है और हमको सब म्यूजिक, ऑफ कोर्स कोई भी म्यूजिक अच्छा ही होता है, फिर वो चाहे झरने की कलकल हो, चाहे रात में पत्तियों का खड़खड़ाना हो, सभी बहुत सुंदर है.
1: जी
0: लेकिन फिर
1: जी
0: भी होता है ना, कुछ एक संगीत है, कुछ एक गीत है जो बस दिल को छू के निकल जाते हैं और बस मे भी
1: जी
0: बरबस हम रो पड़ते हैं कई बार, तो होता है ये.
1: जी डेफिनेटली. और एक्चुअली मुझे लगता है सूफी गाने में वो एक जो एक रस, वो भक्ति का रस होता है या डिविनिटी का रस होता है या वो स्पिरिचुअल यू नो दैट कनेक्ट का जो रस होता है. सो दैट इज समथिंग विच टचेस मी. सो व्हेन आई लिसन टू सूफी म्यूजिक.
0: दैट इज वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. बड़ी बिल्कुल अपने बिल्कुल ही कोर जो बात होती है ना वही कही है आपने, कि जो वो एक भक्ति का रस होता है, यू नो दे डोंट टेक एनी नेम एज सच. लेकिन यू नो सीमा, ज्यादा अच्छी बात मुझे सूफी में क्या लगती, दे आर मस्त, मतलब उनको किसी की परवाह नहीं है. मस्त होके गा रहे हैं, आई मीन दे आर इनटू देयर गॉड, बस खत्म होगी दुनिया, दे डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी, झूम के गा रहे हैं, दैट्स सो ब्यूटीफुल। चलिए दोस्तों हम भी थोड़ा सा झूमे, देखे ना सीमा मैम ने इतने बढ़िया गीत हमारे लिए रिकॉर्ड किए हैं, सो लेट्स एंजॉय, क्लोज योर आईज, एंजॉय दिस म्यूजिक।

0: अमेजिंग, ब्यूटीफुल, बहुत खूब,
1: थैंक यू।
0: चलो थोड़ा सा आपको पर्सनली और समझते हैं। आपकी म्यूजिक की बात हो गई, हम लोग ने ह्यूमन रिसोर्सेज की भी टेक्निकल बात कर ली। नाउ अबाउट यू, नंबर वन, अपने पूरी जिंदगी के सबसे अच्छे अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में बताइए। कोई ऐसी उपलब्धि जिसको आप आज भी याद करती हो ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हो, मतलब बहुत मजेदार कोई ऐसी अकॉम्प्लिशमेंट बचपन से लेकर आज तक कोई भी।
1: ओके, बचपन से आई बीन वेरी एडवेंचरस, तो आई बीन स्पोर्ट्स प्लेयर, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, एंड यस, एंड आल्सो आई एम अ फिटनेस फ्रीक, सो ये सब है। लेकिन एक इच्छा बहुत थी मेरे मन में कि आई नीडेड टू डू स्काई डाइविंग।
0: ओप्स, ओके,
1: सो जी, यस एग्जैक्टली, ओप्स,
0: डिफिकल्ट बकेट लिस्ट है यार आपकी।
1: स्काई डाइविंग, और ये मेरे मन में एक्चुअली थी, बट आई नेवर थॉट आई विल एवर गेट टू दैट पॉइंट। बट अबाउट आई थिंक 6-7 इयर्स अगो इट जस्ट एक्सीडेंटली हैपेंड कि एक चांस मिला, एंड वी वर थ्री लेडीज एक्चुअली हु वेंट एंड टुक दिस डाइव, और इट वॉज द मोस्ट मोस्ट एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। एब्सोल्यूटली, इट्स लाइक यू नो, आप फियर कॉन्कर करते हो एंड यू आर जस्ट लेटिंग गो, जो भी हो जाए हो जाए, यू नो दैट काइंड ऑफ एक्सिलरेटेड फीलिंग जो होती है। बट टिल वी गॉट ऑन टू दैट मोमेंट इट वॉज लाइक प्रिटी फियरफुल, बट इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। यस,
0: थोड़ा सा और हमें डराइए सीमा जी, मजा आएगा। जब आप प्लेन से कूदे तो जो हवा का थर्स्ट होता है ना आपके बालों में, आपके गालों में, आपकी बॉडी पर जो हवा का थर्स्ट आता है, वो कैसा फील हुआ था? मतलब वाज इट इमेंस, बहुत ज्यादा था, आपको ऐसा लग रहा था कि इट्स पेनफुल, इट मे टेक यू समवेयर एल्स, कैसा था? जस्ट हमें बताइए ना, वी विश टू लिव दैट मोमेंट।
1: सी एक्चुअली द फर्स्ट थ्रस्ट इज, फर्स्ट थिंग इज योर you know, you have your eye goggles, your mouth is open and you are trying to breathe, okay? Because you are just at that, you know, immediate level, atmospheric wo jo level hai, so wahan pe you are trying to adjust your breathing and your body. So it's just a split second jo ek fear hoti hai, but beyond that, I think it was just, your mind just goes blank.
0: Ooh.
1: So it is just a blank feeling, and within a few seconds, then when you come to a level where you are able to breathe, so tab tak aapko actually kuch pata hi nahi chalta hai when you reach that level.
0: Oh.
1: And then, yeah, and then you are able to actually calm your mind and, you know, very calmly look around. So I mean, it is just bahut hi jaldi, bahut hi quick ho jata hai wo jo instantly hum log jab jump karte hain na, so that is a very very fine line of what do you say, going totally blank.
0: Okay,
1: I was just, but it's very exhilarating.
0: My goodness.
1: You should try something.
0: Are yaar, exhilarating bolne se na samajh nahi aa raha. I was just trying to put myself in your shoes when you had been trying to jump out of the plane.
1: Yes.
0: To itna niche, oh my god. Aur uske baad theek hai, aapke goggle shoggle and all kind of gear you are wearing, and then maybe the guide is also there too.
1: But this is a tandem, huh? Mere saath koi tha.
0: Achha.
1: So I had yes, it was not only single, kyunki wo chhota नहीं
0: है, of course, that's why.
1: Unless you are trained, so एक tandem, ये तो tandem skydiving था।
0: अरे यार फिर भी, oh my goodness, I mean just looking down thousands and thousands
1: you
0: of feet
1: like a
0: नीचे,
1: bird, yes,
0: you know, पता
1: you
0: नहीं,
1: like, you feel like a bird.
0: फिर वो वाली बात आ जाती है भगवान से मिलने की, कि भगवान हमारे पास आए या हम भगवान के पास गए।
1: जी जी, वो उस मोमेंट में होता है जब आप वो लीव लेते हो, यू डू नॉट नो वेदर आप जल्दी पहुंच जाएंगे ऊपर या भगवान आपको।
0: Oh my God.
1: But no, God,
0: देखो सीमा, ऐसा ना, मेरे को तो पैराग्लाइडिंग का जरूर एक्सपीरियंस है, बट स्काई डाइविंग आई डोंट नो, मेबी समडे,
1: यू शुड, यस,
0: ठीक है, लेट मी जस्ट नोट इट डाउन इन माय बकेट लिस्ट। ओके, करते हैं इसको,
1: यस।
0: चलो दोस्तों, मुझे बताइएगा अगर आप लोगों में से भी किसी ने स्काई डाइविंग कर रखी है मेरे साथ शेयर कीजिए, हम आपके मोमेंट्स जीना चाहेंगे। चलिए तब तक सीमा जी की गायकी को जीते हैं, उन्होंने जो गाया है उसको फील करते हैं। आंखें बंद कीजिए, डाइव कीजिए उनके संगीत में, आइए सुनते हैं।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो चलिए सीमा जी आगे बढ़ते हुए मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताइए। चलिए, हु आर योर फ्रेंड्स, आई मीन टू से आपके बहुत बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या शायद नहीं होंगे क्योंकि आप एचआर पर्सनल हैं। तो अपने किसी दो प्यारे से दोस्तों के बारे में बताइए। टू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर फ्रेंड्स यू आर हैविंग, मैं सब लोगों से करबद्ध क्षमा मांगता हूं कि मैं दो लोगों को चुनने के लिए बोल रहा हूं, विच कुड बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर सीमा जी, बट स्टिल व्हाई आर दीज गाइज योर गुड फ्रेंड्स, टेल मी।
1: ओके, सो लेट मी टॉक to you about a very dear and close friend jo who I said ki wo instrumental rahi hain to start my singing journey. So unka naam Varsha hai.
0: Okay.
1: और सो वी स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ सिंगिंग टुगेदर, और हम ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अलग पर्सनालिटीज के हैं, तो वेरी वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज, बट when we are together we complement each other's personalities and there's a lot I've learned from her and there's a lot that she has absorbed from me. So and we travel together, we also work together, and beyond it's like more like an extended family. So aur ye jo dosti hai is like we know the limits of our friendship, you know, though we are so close but we also know our boundaries. तो दो स्पेस भी रहता है एक दूसरे के, यू नो, फ्रेंडशिप में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज वी नो ईच अदर फॉर द लास्ट, आई मीन आई नो हर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 25 टू 30 इयर्स नाउ। सो जी सो एंड वी लर्न म्यूजिक टुगेदर, वी ट्रैवल टुगेदर, वी एंजॉय आवर मोमेंट्स टुगेदर। सो या शी इज वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स एंड आई हैव अनदर फ्रेंड हु इज बीन माई वेरी मेरे, आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स समीर जी, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और एंड सो आई हैव अनदर फ्रेंड हु इंट्रोड्यूस्ड मी इनटू स्पिरिचुअलिज्म, जो मेरी दिस वाज आल्सो अबाउट 20-25 इयर्स अगो जब मैंने फर्स्ट रेकी का क्लास किया था। सो आई एम अ रेकी हीलर एंड रेकी हीलिंग फॉर माई सेल्फ विच आई एंटर्ड दिस कोर्स एंड देन माई होल spiritual journey started after you know, और यहाँ पे ये मिले थे हमें, उनका नाम रूबी है, रूबी मदान करके, and she is an IIM person and I was so much in awe of her personality at that time. तभी मैं काम नहीं कर रही थी, I wasn't working, I started working late. और she used to be working in Dubai and she was a marketing person and she's still my mentor and guider, or there's almost about 15 to 16 years of difference between her and me.
0: Yes.
1: So
0: हाँ ठीक है,
1: amazing.
0: उम्र कोई बार नहीं होती यार, है ना?
1: Absolutely.
0: अभी लेट मी टेल यू दिस, मैंने एक दिव्य दर्शन का प्रोग्राम बनाया और एक आज के कलाकार का प्रोग्राम बनाया जैसे आपका हो रहा है, ये बॉम्बे में ही है, मीना मैम, मीना अय्यर, आई थिंक, यस,
1: शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन,
0: रियली।
1: तो हम एक ही एकेडमी में हैं और हम लोग, हमारा एक ग्रुप भी है संगीत का, तो हम साथ में भी गाते हैं।
0: शी इज अ
1: वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सन,
0: या शी इज इनटू स्पिरिचुअलिटी एज वेल, है ना? तो उम्र कोई बार नहीं होती, मैं ये कह रहा था। नाउ कुछ दो तीन प्रोग्राम बन गए उनके साथ, उनकी बुक आ गई शिवनंदन लहरी, तो आई एडमिट टू दैट, नाउ शी हैज बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उम्र का कुछ लगता ही नहीं है, वो शी कीप्स ऑन आस्किंग मी थिंग्स एंड आई कीप ऑन आस्किंग हर कि मैम बताओ ये करो वो करो, एक भजन दे दो, एक गजल दे दो। उम्र का ऐसा कुछ होता नहीं है यार, बहुत ये सब ना हमारे दिमाग में है, डेवलपमेंट हो गया है, अब हम बड़े हो गए हैं, हम बहुत सारी चीजें सीख गए हैं। सो
1: इट्स व्हेन यू कनेक्ट विद अ पर्सन एंड यू नो दैट यू नो योर इंटरेस्ट, या दैट्स व्हाट, तो जो इंटरेस्ट सिमिलर हैं, लाइक माइंडेड होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि यू नो हम उम्र में होने चाहिए, बट आई थिंक इट इज जस्ट अ कनेक्ट व्हिच हैपेंस।
0: ब्यूटीफुल
1: जी,
0: वाओ। तो चलिए दोस्तों, सीरियसली मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, माँ सरस्वती का, आई एम ब्लेस्ड। आप सब लोग मेरे से जलते होंगे, आई अंडरस्टैंड। लेकिन चलो क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से बात करता हूं एंड मेरी सबसे दोस्ती होती है, बहुत मजा आता है। तो दोस्तों, आइसोलेटेड आइलैंड्स बनकर मत रहिए, टॉक टू पीपल। हमारा परिवार इसीलिए है यार, ग्रुप बना हुआ है, टॉक टू अस। और मोर ओवर मैंने कई बार कहा है, मेरा रेडियो स्टेशन है ही इसलिए कि लोग बात करें, मैं नहीं, आप लोग बात कीजिए। सो प्लीज कम ओवर, टॉक टू एवरीबॉडी। बहुत खूब, चलिए अभी तो संगीत का माहौल है, शाम का वक्त है, मेडिटेट करते हैं सीमा जी के गाए हुए इन गीतों पर, उसके बाद सीमा जी से फिर बात करेंगे।